FM 103.7 MHz पर यह आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। आज रविवार है, शक संवत 1948, आषाढ़ मास की 7वीं तिथि, तदनुसार 28 जून 2026। इस समय सुबह के 8:55 होने वाले हैं। हमारी आज की सभा अब प्रारंभ होती है।

एफएम एंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। सुबह के 8:57 हुए हैं। आइए सुनते हैं हमारे केंद्र से आज और प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा और उनका प्रसारण समय। श्रोताओं, दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस का प्रसारण होगा सुबह 9:10 पर और कार्यक्रम वंदना आप सुनिए सुबह 9:20 पर। 9:40 का समय रहेगा झलकी में कार्यक्रम में आज सफरनामा का, और उसके पश्चात इसी कार्यक्रम में फिल्मी गजलें भी सुनाई जाएंगी। गाने नए तराने नए, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 10:30 पर। मन की बात, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र की जनता से संवाद, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 10:55 पर।

युववाणी कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 5 बजे। और श्रोताओं, हम आपको बता दें कि आज कार्यक्रम खेती बाड़ी का प्रसारण शाम 4:30 पर किया जाएगा। कार्यक्रम बालवाड़ी सुनिए 5:30 पर और फिल्म संगीत का आनंद लीजिए शाम 6:05 पर। शाम 7 बजे सुनिए आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में अंतर्गत आज लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान लंदन में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल। तो श्रोताओं, ये तो था हमारे कार्यक्रम जो आज प्रसारित होंगे और उनका प्रसारण समय। उम्मीद है आपने आज कार्यक्रम नोट कर लिए होंगे और सुबह के 9 बजने वाले हैं। आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। आइए सुनते हैं हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिसका प्रसारण हम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से कर रहे हैं।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम को लेकर लोगों में उत्साह का माहौल। पचपदरा रिफाइनरी के 4 जुलाई को प्रस्तावित प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां जोर शोर से जारी। मुख्यमंत्री समीक्षा के लिए आज रिफाइनरी जाएंगे। पल्स पोलियो रविवार पर आज प्रदेश भर में

0: एक करोड़ बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाने का लक्ष्य और मौसम में बदलाव के बीच तापमान में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। कृषि विभाग ने खरीफ बुआई के लिए तेज बारिश का इंतजार करने की सलाह दी। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुनने को लेकर हर बार की तरह लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। जगह जगह कार्यक्रम के सामूहिक प्रसारण की व्यवस्था की गई है। प्रदेश भाजपा की ओर से पार्टी कार्यालयों और अन्य स्थानों पर कार्यक्रम का सजीव प्रसारण रखा गया है। प्रधानमंत्री आज सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमीनी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशेल्स की 3 दिन की यात्रा पर कल दोपहर विक्टोरिया पहुंचे। हवाई अड्डे पर राष्ट्रपति हरमीनी ने उनका स्वागत किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने सेशेल्स को हिंद महासागर में भारत का एक अहम समुद्री साझेदार और करीबी दोस्त बताते हुए कहा कि उन्हें इस यात्रा से अच्छे नतीजों की उम्मीद है। प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे रिश्ते और मजबूत होंगे। बालोतरा में पचपदरा स्थित राजस्थान रिफाइनरी के 4 जुलाई को प्रस्तावित प्रधानमंत्री दौरे को लेकर तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। इंतजामों की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज रिफाइनरी पहुंचेंगे और कार्यक्रम स्थल तथा रिफाइनरी का निरीक्षण करेंगे। हमारे बालोतरा संवाददाता ने बताया कि कार्यक्रम की सुचारू व्यवस्था और किसी भी अप्रिय स्थिति को टालने के लिए जिला प्रशासन के साथ HPCL भी अलर्ट मोड पर बना हुआ है।
1: प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम को अंतिम रूप देने की दृष्टि से मुख्यमंत्री का यह दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रिफाइनरी परिसर में प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा, आगंतुकों के प्रवेश पास, प्रोटोकॉल तथा अन्य व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है ताकि कार्यक्रम का सफल एवं सुचारू संचालन किया जा सके। गौरतलब रहे कि रिफाइनरी का लोकार्पण पहले 21 अप्रैल को होना था, लेकिन उद्घाटन से एक दिन पहले एक यूनिट में आग लगने की वजह से वो कार्यक्रम टल गया था। करीब 90,000 करोड़ की लागत से निर्मित ये BS6 मानक की अत्याधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी प्रदेश की सबसे बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं में से एक है। बंसीलाल चौधरी, आकाशवाणी समाचार, बालोतरा।
0: वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा 2026 आज प्रदेश भर के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 269 पदों के चयन पर सुबह 11 बजे से 1 बजे तक एक पारी में ये परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा के सफल, सुचारू और पारदर्शी संचालन के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। केंद्रों पर CCTV निगरानी, वीडियोग्राफी, बायोमेट्रिक सत्यापन और मेटल डिटेक्टर जांच के साथ ही आवश्यक पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। आज पल्स पोलियो रविवार है। देश को पोलियो मुक्त बनाए रखने के लिए 3 दिन के इस राष्ट्रीय अभियान के तहत 5 साल तक के सभी बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाई जाएगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार राज्य के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों, आंगनबाड़ी केंद्रों सहित 59,000 से अधिक पोलियो बूथों पर ये दवा पिलाई जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक डॉ जोगाराम ने बताया कि इस अभियान में मोबाइल और ट्रांजिट टीमें, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और सार्वजनिक तथा अन्य आवागमन स्थलों पर भी बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की दवा देंगे। टीकाकरण परियोजना निदेशक डॉक्टर रघुराज सिंह ने बताया कि अभियान के तहत प्रदेश के 1 करोड़ से अधिक बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया है।
2: इस अभियान के अंतर्गत हमने 1.04 करोड़ बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा है और इसके लिए राजस्थान प्रदेश के अंदर हमने 60,000 के करीब बूथ बनाए हैं जहां पर कि हम बच्चों को दवा पिलाएंगे। किसी कारण अगर दवा पीने से बच्चे छूटे तो फिर हम दूसरे दिन और तीसरे दिन घर घर जाकर भी उन बच्चों को ढूंढ करके उनको भी हम ड्रॉप्स पिलाएंगे जिससे कि हमारे सभी बच्चे सुरक्षित रहें। मैं उम्मीद करता हूं सभी अभिभावकों से कि वो सभी अपने बच्चों को ये ड्रॉप्स आवश्यक रूप से पिलाएं।
0: गौरतलब है कि भारत में साल 1995 में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की गई थी। बीते 15 वर्षों में देश भर में कोई भी पोलियो का नया केस सामने नहीं आया है। 27 मार्च 2014 को भारत को पल्स पोलियो मुक्त प्रमाण पत्र मिल चुका है। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सरिस्का बाघ अभयारण्य में बाघों के पुनर्स्थापन के 18 वर्ष पूरे होने पर देशवासियों और प्रकृति प्रेमियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री यादव ने कहा कि सरिस्का कभी बाघ पूरी तरह विलुप्त हो गए थे लेकिन अब वहां 53 बाघों का निवास है। उन्होंने इसे प्रकृति के पुनरुद्धार, वैज्ञानिक संरक्षण और सामूहिक संकल्प का एक प्रेरणादायक उदाहरण बताया। इस बीच केंद्रीय मंत्री आज इस संबंध में अलवर में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। कार्यक्रम में बाघों के पुनर्स्थापन में योगदान और उल्लेखनीय सेवा देने वाले वनकर्मी, एनजीओ और पर्यावरण कार्यकर्ता भी शामिल हो रहे हैं। और अब मौसम। प्रदेश में मॉनसून पूर्व की बारिश और मौसम में बदलाव के बीच तापमान में उतार चढ़ाव का सिलसिला बना हुआ है। राज्य भर में कई स्थानों पर हल्की बारिश के बीच किसानों ने खेतों में खरीफ फसलों की बुवाई की तैयारियां शुरू कर दी हैं। कृषि विभाग ने किसानों को बुवाई के लिए कुछ अच्छी बारिशों का इंतजार करने की सलाह दी है जिससे जमीन में नमी बनी रहे। कृषि विज्ञान केंद्र जैसलमेर के प्रभारी दीपक चतुर्वेदी ने बताया कि किसानों को जल्दबाजी में बुवाई से बचना चाहिए।
3: तब हमने जब बिजाई करनी है तो उसमें ध्यान रखना है कम से कम हमारी एक या दो अच्छी बरसात हो जाए तो उसमें क्या है कि हमारे जो जमीन की हीट निकल जाएगी, वरना अगर जमीन गर्म रहेगी तो हम कोई भी बिजाई कर देते हैं तो उससे हमारे जो बीज है उसके बीज की पैदावार कम होने का, बीज खराब होने के ना चांस बने रहेंगे। तो किसान भाई ये ध्यान रखें कि जब तक बरसात अच्छी नहीं हो, अगर देसी भाषा में कहें तो 5-6 उंगल बरसात नहीं हो तब तक ना किसानों को अब क्या बिजाई की तरफ नहीं जाना चाहिए।
0: इस बीच मॉनसून की गतिविधियां आगे बढ़ गई हैं। मौसम विभाग ने पूर्वी भारत के कई भागों में आज तेज बारिश तथा कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने दक्षिण और मध्य भारत के राज्यों में भी अगले 2 दिन में तेज बारिश की संभावना जताई है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बिजली कड़कने और तेज हवा का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने मीडिया पर प्रसारित हो रही उन खबरों का खंडन किया है जिनमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 6 सैनिकों की शहादत को हाल ही में सार्वजनिक रूप से स्वीकार किए जाने को तथ्यात्मक रूप से गलत बताया गया है। मंत्रालय ने बताया कि तत्कालीन सैन्य संचालन महानिदेशक ने पिछले वर्ष 11 मई को आधिकारिक प्रेस वार्ता में 6 शहीदों को श्रद्धांजलि दी थी। गौरतलब है कि देश के लिए सर्वोच्च न्यौछावर करने वाले इन 6 जवानों में झुंझुनू जिले के मेहरादासी गांव के सुरेंद्र मोगा भी शामिल हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम को लेकर लोगों में उत्साह का माहौल। पचपदरा रिफाइनरी के 4 जुलाई को प्रस्तावित प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां जोर शोर से जारी। मुख्यमंत्री समीक्षा के लिए आज रिफाइनरी जाएंगे। पल्स पोलियो रविवार पर आज प्रदेश भर में 1 करोड़ बच्चों को पोलियोरोधी दवा पिलाने का लक्ष्य। और मौसम में आए बदलाव के बीच तापमान में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। कृषि विभाग ने खरीफ बुआई के लिए तेज बारिश के इंतजार करने की सलाह दी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
4: FM 103.7 MHz पर आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। सुबह के 9:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस।

श्री राम के युवराज पद पाने की पूर्व संध्या अयोध्या में बधावे बज रहे हैं और अंतःपुर में रानी कैकेयी को भवन में बैठी राजा दशरथ की गुहार सुन रही हैं। हे सुनैनी, मैं कल प्रातःकाल ही राम को युवराज पद दे रहा हूं, तुम मंगल साज सजो। कपटयुक्त प्रेम दिखाते हुए मुंह मोड़कर हंसती रानी कैकेयी बोली, कभी आपने दो वरदान देने को कहा था, किंतु अब तो उनके मिलने में भी संदेह है। निष्कलुष हृदय राजा ने अपनी तरह से रानी का मर्म समझा, हंसकर बोले, वे दोनों वर तो थाती की तरह तुमने संजो रखे हैं, कभी मांगा ही नहीं। रघुकुल में तो सदा से यही रीत चली आई है कि प्राण भले ही चले जाए पर वचन नहीं जाता। कैकेयी ने वर मांगे, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए भरत को राज तिलक का, दूसरा वर भी हे नाथ मैं हाथ जोड़कर मांगती हूं, तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से राम 14 वर्षों तक वन में निवास करें।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे दैनिक कार्यक्रम रामचरित मानस, FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। सुबह के 9:20 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम वंदना। वंदना कार्यक्रम में आज कलाकार हैं हरिओम शरण।

युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 01582401 पर फोन कर

आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से सुनिए फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश प्रत्येक गुरुवार और प्रत्येक शनिवार को रात 8 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक गुरुवार को दिन में 12 बजे से दिन के 1 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 015-82-240-168। वैसे तो ये प्रोग्राम सभी श्रोताओं के लिए है, लेकिन हम स्थानीय नागौर जिले के श्रोताओं को प्राथमिकता देते हैं। तो हो जाइए तैयार अपनी फरमाइश हमें भेजने के लिए और कीजिए फोन हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो फरमाइश।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना FM एंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी नागौर का चिलमी चैनल है। सुबह के 9:40 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम झलकी, जिसमें आज है विषय सफ़रनामा।

0: श्रुति मुझको दे दे,
1: भैया
0: दे दे, श्रुति श्रुति मेरे को दे दे, मैं कह रहा हूँ श्रुति।
1: ओ मम्मी,
0: श्रुति
1: ये भाई मुझे नक्शा नहीं देखने दे रहा है।
0: आधा घंटा हो गया तुझे भारत के नक्शे में जागते हुए, अब तो मुझे देखने दे।
1: नहीं बस पूरब के शहर देखने दो ना थोड़ा सा बस।
0: अरे तू क्या घर बैठे बैठे ही पूरा भारत का भ्रमण कर लेगी?
2: पूरब के शहर देखने दो,
0: कहाँ दिखते हैं इसमें शहर? यहाँ हाँ। तो सिर्फ नाम लिखे हैं शहरों के।
1: तो आप क्या देख लोगे इसमें, मुझे दो ना।
0: अरे श्रुति देख देख, मैप फट जाएगा।
3: अरे रे क्या करते हो योगी, दे दो ना उसे।
0: अरे मम्मी ये जाने कब से नक्शे पर उंगलियां घुमा रही है, देखो बेचारे नक्शे पर से नाम मिटने लगे हैं शहरों के।
1: मम्मी
0: और अगर ये थोड़ी देर यूं ही उंगलियां घुमाती रही तो शहर के राज्य के राज्य मिट जाएंगे भारत के नक्शे से, फिर हम कहाँ जाएंगे घूमने?
3: योगी क्यों तंग करता है बेचारी को।
0: मम्मी एक बात बताओ, हम लोगों ने छुट्टियों में कहाँ जाना तय किया था?
3: शिमला या नैनीताल,
0: मतलब उत्तर में ना। अब इसे देखो ये पूरब के शहर देख रही है।
1: मम्मी मैं तो वो अगली छुट्टियों के लिए
0: अगली छुट्टियों के लिए

0: अरे पहले एक भ्रमण तो पूरा कर ले, वरना पता चलेगा कि पहले वाले की भी छुट्टी। लो लो, बज गई घंटी।
1: ठहरो, मैं देखती हूँ।
2: अरे आंटी जी, ये लो कपड़े, गिन लो, पूरे 25 हैं, हाँ नहीं तो।
1: तू तो गिन कर लाई है ना, फिर पूरे ही होंगे।
2: नहीं आंटी, मैं गिन के लाई तो क्या, आप भी जरा हाथ बाहर निकाल लो ने, फिर नहीं कहना कोई फटा जला दूसरा कपड़ा आ गया तो। हाँ नहीं तो, वो नहीं है ताजी की वाइफ, कहती है तूने मेरे दो कपड़े कम कर दिए हैं, जैसे मैं धोबिन नहीं कोई चोर हूँ। हाँ नहीं तो।
1: अब पांचों उंगलियां तो एक जैसी नहीं होती ना, फिर भी तू कहती है तो गिन लेती हूँ। हाँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7।
2: अरे सू, आत करो छो, अच्छी तरह से गिन लेना, मैं तुम्हारे माटे जल्दी जल्दी तैयार करके लाई। वो तुम्हारा बाहर जाने का प्रोग्राम था ना।
1: 22, 23, 24। अरे ये तो 24 ही है।
2: अरे आंटी बहन, आपको गिनती तो बराबर आती है ना, फिर पर्दे का कपड़ा तो आपको दिखा ही नहीं, जिसमें कपड़े लपेट कर लाई। हाँ नहीं तो।
1: अरे हाँ, ये पर्दा गिनना तो भूल ही गई, पूरे 25।
2: कोई बात नहीं, घाई घाई में आदमी का दिमाग ऐसे ही हो जाता है ना। तो तुम्हारे बाहर घूमने की तैयारी पूरी हो गई, कब जाना है?
1: अरे कहाँ, मैं तो तंग आ गई इनके रोज रोज के झांसों से, कभी कुछ तो कभी कुछ, रोज नया बहाना तैयार। इधर ये बच्चे अपने पापा को तो कुछ नहीं कहेंगे, बस मुझे ताने देते रहेंगे।
2: क्यों? आप तो कहती थी कि आपके हस्बैंड ने रिजर्वेशन करवा लिया है।
1: अरे इन्होंने तो रिजर्वेशन करवाया था केरल जाने का, लेकिन बच्चों ने तो जिद पकड़ ली कि ऐसी गर्मी में साउथ कौन जाएगा भला।
2: बरोबर छे, हाँ नहीं तो।
1: बच्चे कहने लगे किसी हिल स्टेशन पर ही जाएंगे, नहीं तो नहीं।
2: हाँ नहीं तो, बच्चे सच्ची कहते हैं, मुझे भी मेरे हस्बैंड गर्मियों में वैष्णो देवी घुमा के लाए थे। अच्छा आंटी बहन, मैं जाती हूँ, आज मेरा हिसाब चुकता कर दो ने, आगे पीछे और अभी 3 बार कपड़े लाई, 753 रुपए हुए।
1: 753? अरे इतने पैसे कहाँ से लाऊं? जरा इनको ऑफिस से आने दे, शाम को ले जाना।
2: शाम को नहीं, मैं वापस 2 दिन बाद आऊंगी, हमको पन घूमने जाना है, इसलिए जरूरत है। हाँ नहीं तो।
1: अच्छा ठीक, मैं पैसे लेकर रख लूंगी, तू ले जाना। ये लो लिस्ट, इन सब का हिसाब करना बाकी है।
3: ये क्या, इतनी लंबी लिस्ट? हे भगवान, ये तुम्हारे 3,540 बिजली का बिल, 172 रुपया पानी का बिल, ये ठीक है, 2,042 दूध वाले के, 839 सब्जी वाले के, 5,338 किराना वाले के, और ये 352 गैस की टंकी, ये ठीक है, और 150 रुपये अखबार के, ये सारे बिल अभी चुकाने हैं?
1: हाँ।
3: हो, अरे लेकिन सफर से आने के बाद भी तो चुकाए जा सकते हैं ये सब बिल, हम लोग घूमने जा रहे हैं, कोई शहर छोड़कर तो जा नहीं रहे ना।
1: तो मत चुकाओ, मेरा क्या, बिजली पानी के बिल टाइम पर जमा नहीं हुए तो बिजली पानी का कनेक्शन कट जाएगा।
3: अरे लेकिन मैं
1: और पेनल्टी लगेगी 100 अलग।
3: अरे मगर बिल जमा करवाने की लास्ट डेट तो अभी आई नहीं है ना, है 17 दिन बाकी है, 17 दिन।
1: अच्छा 17 दिन बाद हम कहाँ होंगे?
3: कहाँ होंगे
1: भाई, नैनीताल या कुफरी में?
3: हाँ, तो
1: वहाँ से यहाँ आकर बिल जमा करवाओगे?
3: नहीं तो तुम आओगे, मेरा मतलब है तो फिर तुम कैसे कराओगे बताओ।
1: पड़ोसी किस दिन काम आएंगे जी? बिल और पैसे इन्हें देकर जाऊंगी, तय तारीख को ये लोग अपने आप बिल जमा करवा देंगे।
3: अरे तो ऐसे कहो ना।
1: कह तो दिया ना।
3: अच्छा ये दूध
1: दूध वाले के देने जरूरी हैं। हर पहली तारीख को हिसाब कर देते हैं, इस बार 5 दिन ऊपर निकल गए हैं, देखा नहीं 5 दिन हुए इसने कैसे पानी मिला दूध पकड़ाना शुरू कर दिया है। हाँ। और रोज रोज का तकादा अलग है।
3: अरे लेकिन वो
1: सब्जी वाले का हिसाब नहीं दिया तो वो उधार देना बंद कर देगा।
3: कर देगा।
1: वो कहता है हाँ। मैं तो रोज लाने व रोज खाने वाला आदमी हूँ, पूरे मोहल्ले में आपको ही उधार देता हूँ। हाँ।

0: अरे मगर अच्छा बताइए, ये किराने वाले के तो
1: देना हो तो दो मत दो, एक महीना खत्म होते ही वो चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ना शुरू कर देगा। अभी तो 5,338 ही हैं, अगले महीने 3 रुपए सैकड़ा ब्याज जोड़कर 7,000-8,000 रुपए हो जाएंगे।
0: क्या?
1: अब बचा बेचारा गरीब
0: मैं,
1: अखबार वाला।
0: अरे मगर इस समय इतने रुपए एक साथ।
1: अरे हाँ, इसमें धोबिन का हिसाब तो जोड़ना भूल ही गई, 753 रुपए।
0: भगवान, मैं तो तंग आ गया तुम्हारे रोज रोज के खर्चे से।
1: हाँ हाँ, जैसे सारी बिजली पानी मैं अपने ऊपर खर्च किया करती हूँ। रोजाना 2 लीटर दूध मैं ही पी जाती हूँ।
0: मैं ये नहीं कह रहा हूँ।
1: किराने का सामान मैं अकेले ही डकार जाती हूँ।
0: अरे
1: सारी सब्जियाँ मैं ही खाती हूँ।
0: अरे सुनो,
1: अखबार आप थोड़े ही पढ़ते हैं।
0: देखो, टिकट रिजर्वेशन और सारी तैयारियों में लगभग 20,000 रुपए खर्च हो चुके हैं, और अब ये 15-16 हजार मिलाकर लगभग 35-36 हजार रुपए हो जाएंगे, और जबकि सफर तो अभी बाकी है। और वहाँ रहना खाना शॉपिंग तुम क्या समझती हो है? मुफ्त हो जाएगा? अरे कम से कम 25,000 रुपए और लगेंगे, 25,000 रुपए। हाँ, और कुल हुए 60,000 के आसपास का खर्चा। इतना पैसा हम लाएंगे कहाँ से?
1: 60,000?
2: हाँ। मेरी कॉलेज की फीस 20,000 रुपए,
3: मेरे स्कूल की फीस 15,000 रुपए।
1: स्कूल और कॉलेज की फीस के 35,000 रुपए और
0: लगभग 1,00,000 रुपया। बाप रे बाप, एक महीने में 1,00,000 रुपया। हे भगवान, अब तुम ही बताओ, इस सफरनामे के बाद ये कपूरचंद तो इस दुनिया से कपूर बनकर ही उड़ जाएगा। हाँ।
1: शुभ शुभ बोलो जी, शुभ शुभ, चूल्हे में गया ऐसा सफर।
0: फिर
4: टिकट कैंसिल करवा दो।
1: ये तुम लोग कह रहे हो
4: चूल्हे में गया ऐसा सफर?
0: अरे लेकिन मैंने तो वर्मा जी को पैसे देकर रेलवे के स्पेशल कोटे से टिकट बनवाने को कह दिया है, अगर उन्होंने टिकट बनवा दिए तो।
1: मैं देखती हूँ।
5: नमस्ते भाभी जी।
1: अरे वर्मा जी, आइए आइए, क्या टिकट?
5: अरे अब क्या बताऊँ भाभी जी, मैंने बहुत कोशिश करके टिकट बनवाए हैं।
0: क्या टिकट रिजर्वेशन कन्फर्म हो गई?
5: हाँ कपूरचंद जी, आपकी टिकट तो कन्फर्म हो गई है, लेकिन
2: लेकिन पैसे ज्यादा खर्च हुए क्या
5: जी?
0: नहीं नहीं नहीं वर्मा जी, इसके कहने का मतलब यह है कि अगर ज्यादा पैसे खर्च हो गए तो और दे देते हैं अभी।
5: नहीं नहीं नहीं, वो बात नहीं है, लेकिन
0: लेकिन क्या?
5: लेकिन मुझे दुख है वर्मा जी कि आप लोग ये सफर नहीं कर सकेंगे।
1: क्यों?
0: टिकट कहीं गुम हो गए क्या?
5: नहीं नहीं, ये बात नहीं है, मेरा मतलब ये नहीं था।
1: तो क्या था?
5: दरअसल बात यह है कपूरचंद जी कि अतिवृष्टि के कारण आपको सफर पर ले जाने वाली गाड़ियां कैंसिल कर दी गई हैं।
0: क्या?
5: हाँ, ये लो आपका टिकट और आप ये पैसे वापस ले लेना।
1: सच्ची?
5: जी।
0: अरे आप नहीं समझोगे वर्मा जी, अरे जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यारो। क्यों क्यों भानुमती, पूरा करें सफर
1: ना माँ।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे ये झलकी सफ़रनामा। आइए सुनते हैं ये गज़ल।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह की आवाज़ में ये गज़ल। FM एंड 103.7 MHz पर आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। सुबह के 10 बजे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम गाने पुराने ज़माने के। कार्यक्रम का ये पहला गीत है फिल्म प्रेम पर्वत से, लता मंगेशकर का गाया हुआ।

0: दी
1: हाँ? ये देख
0: कैसे
2: हैप्पी बर्थडे भाई
0: दिखा
3: हाँ मेरा फेवरेट कलर
2: हमेशा शॉपिंग
3: आई नो माँ बट खर्चा करने की भी यही उम्र है राइट
4: सेविंग करने की भी यही उम्र है
5: आई नो पा सेव करो सही जगह निवेश करो रकम पर ब्याज मिलेगा जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा
3: आई नो ना
5: RBI कहता है
6: करो सही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट
7: फिल्म पूनम में ये हैं मोहम्मद रफ़ी।

प्रत्येक सोमवार को रात्रि 8 बजे सुनिए सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम दिल से। इस कार्यक्रम में अपनी फरमाइश

भेजने के लिए आपको लिखना है अपने पसंदीदा गीत के बोल, फिल्म का नाम, अपना नाम और अपने शहर या गांव का नाम, और भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर 9649004762 पर। शाम 5 बजे तक प्राप्त आपकी फरमाइशों का प्रसारण किया जाएगा उसी रात 8 बजे आपके अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है दिल से।

0: से मोहब्बत ना हो जाए कहीं।
1: पूरब और पश्चिम, आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत, मनहर, महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर का गाया हुआ।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गाने पुराने जमाने के, एफएम एंड 103.7 MHz पर आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। सुबह के 10:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गाने नए तराने नए। कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म उड़ता पंजाब से, और इसमें आवाज़ है अमित त्रिवेदी और विशाल ददलानी की।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बन जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: जैक और जैस्मिन वालिया को सुनते हैं फिल्म सोनू के कीटू की स्वीटी।

श्रोताओं, प्रत्येक गुरुवार को युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत होता है ईमेल पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। अपनी फरमाइश भेजने के लिए हमें ईमेल कीजिए हमारी ईमेल आईडी youthexpressnagore@gmail.com पर। इसमें आप लिखिए अपनी पसंद की फिल्म का नाम, गाने के बोल, आपका नाम, आपके शहर या गांव का नाम और भेज दीजिए हमारे ईमेल आईडी पर youthexpressnagore@gmail.com पर। और सुनिए अपने पसंदीदा गीत।

वीरे दी वेडिंग। आइए सुनते हैं इस फिल्म में सुनिधि चौहान और उनके साथियों।

और श्रोताओं, ये है कार्यक्रम का आखिरी गीत फिल्म जंजीर से, जिसे आवाज़ है अंजना और मीत प्रोस की।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: बुलबुल की तक गया, क्या हुआ? नया किट बैग चाहिए।
4: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
3: करेक्ट।
4: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया नया किट बैग।
5: RBI कहता है
6: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
7: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
2: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आप सब से जुड़कर मुझे अत्यंत आनंद हो रहा है। 2026 का आधा साल बीतने को है। इन 6 महीनों में हमने मन की बात में देशवासियों की अनेक उपलब्धियों पर चर्चा की है। जून में भी देश ने कुछ ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जो हर देशवासी को गर्व से भर देती हैं। ये सफलताएं देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता से जुड़ी हैं। हाल ही में मुझे कोलकाता में नौसेना से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला। वहां INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। साथियों जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी मजबूत हो रहा है। इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है।

इसको डीआरडीओ की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है। यानी आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। साथियों, जून में एक और आयोजन हुआ जिसमें पूरी दुनिया भारत के प्रयासों से जुड़ी, और ये कार्यक्रम था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस बार दुनिया के 2500 से अधिक स्थानों पर योग के अनेक विविध कार्यक्रम हुए। हमारे देश में करोड़ों लोगों ने स्थान स्थान पर योग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस महीने अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। मैं सभी विजेता खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, किसी भी राष्ट्र की आत्मा उसके लोग होते हैं, और जब उस देश के लोग कोई संकल्प लेते हैं तो कोई भी शक्ति उन्हें अपने लक्ष्य से डिगा नहीं पाती। राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की यह ताकत भारत की बहुत बड़ी पूंजी है, और इस जन भागीदारी का हम बार बार अनुभव कर रहे हैं। साथियों, पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कुछ आग्रह किए थे। मैंने कहा था कि जहां तक संभव हो कुछ समय के लिए गोल्ड सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। मैंने लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। मैंने किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। साथियों, मैं देश के हर नागरिक का आभारी हूं कि मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं। मुझे कई परिवारों ने संदेश भेजकर अपने अनुभव साझा किए हैं। कितने ही परिवारों ने तय किया है कि घर के विवाह में इस बार सोना नहीं खरीदेंगे, जरूरत पड़ी तो पुराने सोने को रिसाइकल करके नए गहने बना लेंगे। कितने ही लोगों ने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा है कि कैसे उन्होंने इस बार विदेश यात्रा को टाल दिया है। साथियों, कार पुलिंग को लेकर भी लोगों ने अनेक अनुभव साझा किए हैं। जो लोग हर दिन एक ही दिशा में अपने अपने वाहनों से जाते थे वे अब साथ जाने लगे हैं। लोग हर संभव बस और मेट्रो का उपयोग कर रहे हैं, इससे पेट्रोल और डीजल की बचत हो रही है। इसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृतिक खाद की खपत बढ़ने की भी खबरें आ रही हैं। साथियों, मुझे इस बात की खुशी है कि इस ग्लोबल क्राइसिस का हम भारतीय मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। मुझे विश्वास है जन भागीदारी की यही शक्ति हमें मजबूती देगी, हमें सफल बनाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में जन्मदिन, शादी ब्याह, पारिवारिक कार्यक्रम होने के साथ ही पूरे समाज का भी उत्सव होता है। हर परिवार चाहता है कि उसकी खुशियां दूसरे के साथ भी साझा हो। लोग मेहमानों को उपहार भी देते हैं। साथियों, महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक परिवार ने अपनी खुशियां बांटने के लिए ऐसा काम किया है जो चर्चा का विषय बन गया है। यहां नांदेड़ के बहादुरपुरा गांव में पेटकर परिवार रहता है। इस परिवार ने सोचा कि अगर खुशी बांटनी ही है तो ऐसी चीज दी जाए जो मुश्किल समय में किसी परिवार का सहारा बने। अपने घर में विवाह के अवसर पर इस परिवार ने गांव के लगभग 3.5

3000 लोगों के लिए दुर्घटना बीमा की व्यवस्था की। हर व्यक्ति को 1 लाख रुपए का बीमा कवर दिया गया। इस पहल के पीछे की भावना बहुत स्पर्श करने वाली है। परिवार ने देखा था कि दुर्घटना के बाद परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में एक छोटी सी सहायता भी बहुत बड़ा संबल बन जाती है। साथियों, सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 20 रुपए के सालाना प्रीमियम, यानी केवल एक साल के 20 रुपए का प्रीमियम, उस पर 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। अब तक इस योजना से 58 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। इनमें करीब 28 करोड़ हमारी माताएं, बहनें, बेटियां हैं, महिलाएं हैं। इस योजना से पीड़ित परिवारों को अब तक जो हिसाब मिला है, 3700 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिल चुकी है। साथियों, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2 लाख रुपए का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपए है, मतलब एक दिन का मुश्किल से 1.5 रुपया। इस योजना से अब तक 27 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं। इसके तहत देश के करीब 11 लाख परिवारों को करीब 22,000 करोड़ रुपए की सहायता मिल चुकी है। ये आंकड़े बहुत बड़े हैं। इन आंकड़ों के पीछे लाखों परिवारों की अपनी अपनी कहानी है। कहीं किसी मां को बच्चों की पढ़ाई जारी रखने में सहायता मिल गई, कहीं किसी पत्नी को घर की जिम्मेदारियां संभालने का सहारा मिल गया। साथियों, कई बार बहुत बड़ी सुरक्षा की शुरुआत बहुत छोटी राशि और एक छोटे से कदम से हो सकती है। छोटा सा भी निर्णय बहुत बड़ा बदलाव करता है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने परिवार में इन योजनाओं की जानकारी जरूर साझा करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में अब बात एक ऐसे विषय की जो हजारों साल पुराना है। हजारों साल से मानव समाज में घर कर करके बैठ गया है। ये विषय है अंधविश्वास का। अंधविश्वास कई बार केवल एक गलत धारणा नहीं होता, वो डर पैदा करता है। और जब डर मन पर हावी हो जाता है तो इंसान सच को देखना ही बंद कर देता है। अंधविश्वास में डूबे लोग फिर बिना तर्क के, बिना सत्य जाने ऐसे फैसले लेने लगते हैं जिनका बड़ा नुकसान होता है। वहीं समाज में ऐसे लोग भी होते हैं जो विज्ञान, अनुभव और तर्क के आधार पर उन धारणाओं को चुनौती देते हैं। अंधविश्वास से विश्वास तक की ये यात्रा आसान नहीं होती। और आज मैं ऐसी ही एक सफल यात्रा के बारे में आपको जरूर बताना चाहता हूं। साथियों, असम में एक पक्षी पाया जाता है। उस पक्षी का नाम है हरगीला। हरगीला एक दुर्लभ पक्षी है। ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है। लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। लोग इसे अपने आसपास देखना पसंद नहीं करते थे। कई बार उन पेड़ों को भी काट दिया जाता था जिन पर हरगीला के घोंसले बने होते थे। सोचिए, एक ऐसा पक्षी जो पर्यावरण की सफाई में मदद करता है, वही हरगीला लोगों के डर का शिकार बन गया था।
इसी दौरान जीव वैज्ञानिक पूर्णिमा देवी बर्मन ने ये सब देखा। उन्होंने लोगों के मन में बैठी गलत धारणा को बदलने का संकल्प लिया। उन्होंने महिलाओं से बात की, उन्होंने लोगों को विज्ञान के आधार पर समझाया। धीरे धीरे महिलाएं इस अभियान से जुड़ने लगी, फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। जिस पक्षी को कभी अशुभ मानकर भगाया जाता था, वही गांवों की पहचान बनने लगा। हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगिला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगिला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे। उन्होंने दिखाया है जब सही जानकारी पहुंचाई जाती है तो वर्षों पुरानी सोच भी बदल सकती है। साथियों, मैं अक्सर कहता हूं जो खेलता है वो खिलता है। आज देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। पहले की तुलना में अब कहीं अधिक युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपना रहे हैं। मुझे नागालैंड के दो ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है जो बहुत दिलचस्प है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग। नाम सुनकर आपको जरूर लगता होगा कि ये बहुत छोटे बच्चों की कोई साधारण लीग होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 5 से 10-12 साल की आयु के छोटे छोटे बच्चे, फूल जैसे बच्चों की एक असाधारण लीग है। और इन बच्चों के फुटबॉल खिलाड़ियों की एक ऐसी लीग है जो उनके रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित भी करती है और उनकी पहचान भी बनाती है। इसकी शुरुआत नागालैंड के अधिक बच्चों को फुटबॉल से जोड़ने के लिए हुई थी। 5 से 12 वर्ष तक के लड़के और लड़कियां इसमें हिस्सा ले सकते हैं। ये लीग अब अपने 3 वर्ष पूरे कर चुकी है। इस लीग का बच्चों के मन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। साथियों, नागालैंड में एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। इसका नाम है नागालैंड विमेन फुटसल लीग। हो सकता है आपके लिए ये फुटसल एक नया नाम होगा। मैं आपको बताता हूं, फुटसल को इंडोर फुटबॉल भी कहा जाता है। इसमें एक टीम में केवल 5 खिलाड़ी होते हैं। खेल का मैदान भी फुटबॉल के मैदान से बहुत छोटा होता है। इस कारण खिलाड़ियों को तेज फैसले लेने होते हैं। उन्हें अपनी टेक्निक और स्किल का बेहतर इस्तेमाल करना पड़ता है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है। मैं ऐसी पहलों के लिए नागालैंड के लोगों की सराहना करता हूं। ऐसे प्रयास देश के दूसरे हिस्सों को भी प्रेरणा देते हैं। साथियों, ये टेक्नोलॉजी का युग है। हर दिन नई रिसर्च हो रही है, नए नए एआई इनोवेशन सामने आ रहे हैं। इस दौर में एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों की क्रिएटिविटी को कैसे बचाए रखा जाए। नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ते हुए हम अपनी जड़ों से कैसे जुड़े रहें, इन सवालों का समाधान खोजा है नालंदा विश्वविद्यालय ने। हजारों साल पुरानी हमारी नालंदा विश्वविद्यालय अब नए अवतार के रूप में भारत का भाग्य गढ़ रही है। 2 साल पहले मुझे नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर के लोकार्पण का अवसर मिला था।
नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। शास्त्रार्थ केवल अपनी बात रखने का माध्यम नहीं है, ये वाद संवाद और मंथन की एक अनुशासित प्रक्रिया है। इसमें तर्क के साथ तथ्य के साथ अपनी बात कहना बहुत जरूरी होता है और उसमें आपकी महारत होनी चाहिए। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया। इसमें भाग लेने वाले करीब आधे स्टूडेंट्स अन्य देशों से आए थे। एक प्राचीन परंपरा को आज के समय से जोड़ने का यह प्रयास बहुत सराहनीय है। मैं इसके लिए नालंदा विश्वविद्यालय को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं देश के दूसरे विश्वविद्यालयों से भी आग्रह करूंगा कि वे ऐसी पहल पर विचार करें। साथियों, जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए एआई टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी। हमारे प्राचीन ग्रंथों और पांडुलिपियों को डिजिटल रूप में संरक्षित करने के काम को भी नई गति मिलेगी। मैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी को इस प्रयास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज भारतीय संस्कृति दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच रही है। हमारे गीत संगीत और आध्यात्म को दुनिया भर के लोग जान रहे हैं और अपना रहे हैं। भारत से हजारों किलोमीटर दूर कैरिबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है। वहां भारतीयों की संख्या करीब 100 है, शायद उससे भी कम होगी। इसके बावजूद भारतीय संस्कृति और आध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहां हो रहा है। वहां स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। वे वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी सीख रहे हैं। उन्हें इसकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली है, लेकिन उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनकर वैदिक मंत्रों का सही उच्चारण सीखा है। आज वे कई मंत्रों का बहुत अच्छे से जाप कर लेते हैं। इनमें पुरुष सूक्तम, श्री सूक्तम, श्री रुद्रम, दुर्गा सूक्तम और देवी महात्म्य शामिल है। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका यह प्रयास बहुत प्रेरक है। मैं ब्रह्म कमल डोमिनिकाना वहां के सभी सदस्यों को उनके प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मैं ऐसे सभी लोगों की हृदय से सराहना करता हूं जो भारतीय संस्कृति को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मेघालय की पहचान बादलों से है, खूबसूरत नजारों से है। जो मेघालय जाता है उसे वहां के लोगों का अपनापन भी लंबे समय तक याद रहता है। लेकिन मेघालय की एक और विशेषता है जिसकी मैं आज मन की बात में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। ये है मेघालय के रूट ब्रिज। रास्ता वाला रूट नहीं, जड़ों वाला रूट। इन रूट ब्रिजों की कहानी बहुत रोचक है। ये ब्रिज कुछ दिनों या कुछ वर्षों में नहीं बनते,
इन्हें तैयार होने में

कई दशक लगते हैं। रबर के पेड़ों की जड़ों को धीरे धीरे दिशा दी जाती है। इन जड़ों को जल धाराओं के पार ले जाया जाता है। समय के साथ वही जड़ें एक मजबूत ब्रिज का रूप ले लेती हैं। इन ब्रिजों की एक और विशेषता है, ये जीवित ब्रिज है। समय बीतने के साथ ये और मजबूत हो जाते हैं। इनमें मेघालय के लोगों की सृजनशीलता दिखाई देती है। इनके पीछे वर्षों का धैर्य और प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान है। ये ब्रिज बताते हैं कि मनुष्य प्रकृति के साथ मिलकर कितनी अद्भुत चीजें बना सकता है। ये हमारे देश की इस धरती की धरोहर है। अब भारत ने मेघालय के रूट ब्रिजों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नेटवर्क में शामिल कराने के लिए आवेदन किया है। साथियों, क्लाइमेट चेंज के कारण इन रूट ब्रिजों के सामने कई चुनौतियां भी आती हैं। ऐसे समय में मेघालय के लोगों ने इस प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई है। पहले ये पता लगाना भी आसान नहीं था कि ऐसे ब्रिजों की संख्या कितनी है। स्थानीय लोगों ने खुद इनकी गिनती शुरू की। इसके बाद समुदायों ने इन ब्रिजों की देखभाल की जिम्मेदारी भी संभाली। आज स्थानीय लोग 120 से अधिक रूट ब्रिजों की देखरेख कर रहे हैं। कुछ टीमें हर साल इन पुलों की स्थिति की जांच करती है। कुछ लोगों ने आसपास के क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए नर्सरी भी तैयार की है। इस तरह के इनके संरक्षण के लिए एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो गया है। आपने देखा होगा, इस वर्ष हैली वारजी को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्होंने अपने जीवन के 50 से अधिक वर्ष इन रूट ब्रिजों की देखभाल में लगाए हैं। उनका समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। साथियों, आपने कभी इन रूट ब्रिजों की यात्रा की हो तो उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जरूर साझा कीजिए। आपकी तस्वीरें दूसरे लोगों को भी मेघालय की इस अनोखी धरोहर के बारे में जानने के लिए प्रेरित करेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी चाहते हैं कि हमारा गांव साफ सुथरा हो, हमारा शहर सुंदर दिखे, लेकिन शायद ही कभी रुककर ये सोचा जाता है कि हमारे आसपास जो कचरा जमा होता है कौन उसे साफ करता है। ज्यादातर लोग तो यही मानकर चलते हैं कि किसी और की जिम्मेदारी है और वो ही सफाई करेगा। लेकिन हमारे बीच कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी सोच से हमें बहुत प्रेरित करते हैं। मुझे मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा की कुछ बहनों के बारे में जानने का अवसर मिला। उन्होंने अपने आसपास फैले प्लास्टिक कचरे को हटाने का संकल्प लिया। ये नहीं सोचा कि कोई आकर बदलाव लाएगा। उन्होंने खुद शहर भर से प्लास्टिक कचरा और खाली बोतलें इकट्ठा करना शुरू किया। धीरे धीरे ये प्रयास आगे बढ़ता गया और फिर उस प्लास्टिक को इको वृक्ष में बदला जाने लगा। आज इन्हीं इको वृक्ष का उपयोग सार्वजनिक स्थानों को सुंदर बनाने में किया जा रहा है। राजगढ़ में पिछले कुछ महीनों में सैकड़ों किलो प्लास्टिक को रिसाइकल करके उनका बेहतर उपयोग किया गया है। यानी जो प्लास्टिक पहले शहर में प्रदूषण फैलाता था, आज वही इन बहनों के प्रयास से शहर की सुंदरता बढ़ाने में योगदान दे रहा है। मैं ब्यावरा की सभी बहनों और इस अभियान से जुड़े साथियों को बधाई देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कई लोगों ने पत्र लिखकर एक खास विषय पर बात करने का सुझाव भेजा है।

0: या आसपास की जगहों पर गणपति बप्पा की जो मूर्ति स्थापित हो वो हमारे देश की मिट्टी से बनी हो, वो हमारे अपने कुम्हारों और स्थानीय कलाकारों के हाथों तैयार हुई हो। जो लोग गणेश जी की मूर्तियां बनाते हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि वे मिट्टी की मूर्तियों को प्राथमिकता दें, और जो लोग मूर्तियां खरीदते हैं वे भी यह जरूर देखें कि गणपति बप्पा की मूर्ति किससे बनी है और किस देश में तैयार हुई है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां बिल्कुल न खरीदें। साथियों, मिट्टी की मूर्तियां पूजा के बाद सहज रूप से पानी में विलीन हो जाती हैं। इससे हमारी नदियां, तालाबों और पर्यावरण की रक्षा होती है, हमारी आस्था भी बनी रहती है और प्रकृति के प्रति हमारा दायित्व भी पूरा होता है। जब हम स्थानीय कारीगरों से मूर्ति खरीदते हैं हम वोकल फॉर लोकल के संकल्प को मजबूत करते हैं। मुझे विश्वास है इस बार गणेश उत्सव में और ऐसे हर उत्सव में हम ऐसी सारी बातों पर जरूर गंभीरता से सोचेंगे और देश हित में कदम भी उठाएंगे। साथियों, हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति हमारे देश के लोग हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे छोटे बड़े प्रयास हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। ये प्रयास बताते हैं कि जब मन में संकल्प हो और समाज का साथ मिले तो कोई भी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। आप अपने आसपास हो रहे ऐसे प्रयासों के बारे में मुझे जरूर लिखते रहिए, अपने विचार और अपने सुझाव भेजते रहिए। हो सकता है आपके आसपास की कोई छोटी सी पहल पूरे देश के लिए प्रेरणा बन जाए। अगले महीने हम फिर मिलेंगे, देशवासियों के कुछ नए प्रयासों की चर्चा करेंगे। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, और हाँ, जल संचय तो करना ही करना है, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। कैच द रेन, ये अभियान जरा भी ढीला नहीं होने देना है। तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली है, लीजिए सुनिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद।
3: मम प्रियाः देशवासिनः नमस्कारः। मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे पुनरेकवारं भवद्भिः सह मिलित्वा अहमत्यन्तम् आनन्दम् अनुभवामि। 26,000 वर्षस्य अर्धवर्षं प्रायः समाप्तमेव। एतेषु षण्मासेषु वयं मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे देशवासिनां नैकासाम् उपलब्धीनां चर्चां कृतवन्तः। जून मासेपि देशेन एतादृश्यः उपलब्धयः प्राप्ताः याः प्रत्येकं देशवासिनं गर्वेण पूरयन्ति। एताः सफलताः देशस्य सुरक्षया आत्मनिर्भरतया च सह सम्बद्धाः सन्ति। अचिरादेव अहं कोलकातायां नौसेना सम्बद्धे एकस्मिन् कार्यक्रमे सहभागस्य अवसरं प्राप्तवान्। तत्र INS दूनागिरि, INS संशोधक, INS

प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। दोस्तों, इस कार्यक्रम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। और आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं संगीतकार प्रीतम की संगीतबद्ध कुछ रचनाएं। यह है इस कार्यक्रम की पहली पेशकश। जावेद अली की आवाज, फिल्म का नाम आक्रोश, गीतकार इरशाद कामिल और संगीत प्रीतम का।

कार्यक्रम में अब सुनिए प्रीतम के संगीत निर्देशन में इरशाद कामिल का लिखा गीत। फिल्म का नाम है एक्शन रिप्ले और गाने वाले कलाकार हैं कार्तिक, महालक्ष्मी और अंतरा मित्रा।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: प्रीतम के संगीत निर्देशन में जावेद अख्तर की रचना है, आवाजें आनंद राज आनंद और ऋचा शर्मा की, फिल्म का नाम दे दनादन।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, और आज हम आपको संगीतकार प्रीतम की संगीतबद्ध कुछ फिल्मी रचनाएं सुनवा रहे हैं। आइए सुनते हैं अरिजीत सिंह की आवाज में फिल्म ऐ दिल है मुश्किल का गाना। इसे अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखा है और धुन प्रीतम की।

अरिजीत सिंह की आवाज में अभी आप सुन रहे थे फिल्मों ऐ दिल है मुश्किल का ये गीत। आइए सुनते हैं हिमशिखा और अरिजीत सिंह की आवाजी। फिल्म का नाम है एजेंट विनोद, गीत रचना अमिताभ भट्टाचार्य की और संगीत प्रीतम का है।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूलें कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जावेद अली और जोजो की आवाजें हैं। फिल्म का नाम है अजब प्रेम की गजब कहानी। गीतकार इरशाद कामिल, संगीतकार प्रीतम।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। कार्यक्रम का अगला गीत प्रीतम का संगीत है, सुब्रत सेना का लिखा गीत, कुणाल गंजावाला की आवाज और फिल्म का नाम आंखें।

कार्यक्रम का अगला गीत अरिजीत सिंह की आवाज में है। फिल्म का नाम है बर्फी। इसे लिखा है स्वानंद किरकिरे ने और धुन प्रीतम की ही है।

0: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बाशु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
1: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन।

केके की आवाज में अभी आप सुन रहे थे फिल्म भूल भुलैया का ये गीत। और इस गीत के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे थे संगीतकार प्रीतम की कुछ संगीत रचनाएं।

FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। दिन का 1 बजा है। अब हिंदी में प्रादेशिक समाचारों का प्रसारण आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से किया जाएगा।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से वर्षाकाल के दौरान बारिश की एक एक बूंद को बचाने और कैच द रेन अभियान में बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाने की अपील करते हुए वोकल फॉर लोकल को अपनाने का आह्वान किया है। आज आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात कार्यक्रम की 135वीं कड़ी में प्रधानमंत्री ने जून महीने के दौरान देश की विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियों और महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का संकल्प मजबूत हो रहा है और देश आज समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी मजबूत हो रहा है। इसी महीने डीआरडीओ ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको डीआरडीओ की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है। यानी आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने ईंधन बचाने, कुछ समय के लिए सोना नहीं खरीदने और विदेशों में छुट्टियां मनाने से बचने के लिए बीते दिनों किए गए अपने आग्रह पर देशवासियों से मिले समर्थन पर आभार जताते हुए कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि देश का हर नागरिक वैश्विक संकट का मिलकर मुकाबला कर रहा है।
1: मैंने कहा था कि जहां तक संभव हो कुछ समय के लिए गोल्ड सोना खरीदने से बचे, कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचे, कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। मैंने किसानों से और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मैं देश के हर नागरिक का आभारी हूं कि मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: श्री मोदी ने उनकी सरकार द्वारा शुरू की गई सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना का उल्लेख करते हुए योजना की प्रगति और इनके लाभों की जानकारी एक दूसरे तक साझा करने की अपील की। उन्होंने अंधविश्वास पर अपने विचार व्यक्त करते हुए विज्ञान, अनुभव और तर्क के आधार पर धारणाओं को बदलने को कहा। श्री मोदी ने एआई टूल्स को देश की संस्कृति तथा भारतीय ज्ञान भाषाओं के संरक्षण में काम लिए जाने पर विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत देश के कई भागों में गांवों को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख करते हुए आगामी महीनों में गणेश उत्सव की तैयारियों में लगे मूर्तिकारों से मिट्टी से बनी मूर्तियां बनाने और खरीदारों से प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां नहीं खरीदने की अपील भी की। आकाशवाणी के इस बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम को सुनने को लेकर प्रदेश भर में खासा उत्साह दिखाई दिया। प्रदेश भाजपा की ओर से कार्यक्रम के सजीव प्रसारण की व्यवस्था की गई। राजस्थान सहित देश भर में आज से 3 दिन के राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हुई। देश को पोलियो मुक्त बनाए रखने के लिए 5 साल तक के सभी बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाई जा रही है। प्रदेश में 1 करोड़ से अधिक बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 59,000 से अधिक बूथों पर ये दवा पिलाई जा रही है। सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों, आंगनबाड़ी केंद्रों के साथ मोबाइल और ट्रांजिट टीमें गठित की गई हैं, जो बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सार्वजनिक तथा अन्य आवागमन स्थलों पर भी बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की दवा पिला रही है। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की जयंती पर राष्ट्र आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। श्री नरसिम्हा राव को 90 के दशक में वैश्विक संकट और मंदी के दौर में भारत को सुरक्षित रूप से बाहर रखने पर कुशल प्रशासक के तौर पर याद किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि देश के महत्वपूर्ण दौर में श्री राव ने भारत की प्रगति में अमूल्य योगदान दिया। वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा 2026 आज प्रदेश भर में विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 269 पदों पर चयन के लिए सुबह 11 से 1 बजे तक एक पारी में ये परीक्षा ली गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: FM एंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। दिन के 1:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से सुनिए फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश, प्रत्येक गुरुवार और प्रत्येक शनिवार को रात 8 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक गुरुवार को दिन में 12 बजे से दिन के 1 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 015-82-240-168। वैसे तो ये प्रोग्राम सभी श्रोताओं के लिए है, लेकिन हम स्थानीय नागौर जिले के श्रोताओं को प्राथमिकता देते हैं। तो हो जाइए तैयार अपनी फरमाइश हमें भेजने के लिए और कीजिए फोन हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो फरमाइश।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर को आप सुन रहे थे फिल्म आंधी में। और हमारे श्रोता ने लिखा है कि आज के सुरीला सफर कार्यक्रम में जरा हट के काफी रोचक विषय चुना गया है, जिससे सुरीला सफर का कार्यक्रम सुनने की जिज्ञासा और बढ़ गई है। हाँ, वैसे मैंने कई फिल्मों में देखा है कि बैकग्राउंड में एक ही गीत आरंभ से लेकर अंत तक थोड़ा थोड़ा बजता है, वो किसी अभिनेत्री अभिनेता पर फिल्माए नहीं होता। शायद ये बात भी आज कार्यक्रम में शामिल हो, तो चलिए आनंद लेते हैं आज के सुरीले सफर का। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज अगर देखा जाए तो मानव का दिखावटी चेहरा और उनके मन को भाव को जानना बहुत कठिन होता है, इसलिए कहा जाता है कि उसके मन में चोर है लेकिन दिखता बहुत शरीफ है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का टेक्स्ट देखकर ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे गाने बजेंगे, यहाँ कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ जैसे कुछ गाने बजने वाले हैं। और हमने तो आज के सुरीला सफर में आपके साथ चलने के लिए पेटी बांध ली है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अरे तो हमारे साथ सफर में चलिए ना, हम तो सुरीला सफर लेकर जब भी आते हैं तो सारे श्रोताओं से कहते हैं कि चलिए और निकल पड़ते हैं। आप भी इसमें शामिल हो गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। एक श्रोता ने लिखा है कि हर इंसान अपने भीतर एक ऐसी कहानी लिए चलता है जिसे दुनिया कभी पूरी तरह पढ़ नहीं पाती। चेहरे पर सजी मुस्कान अक्सर जीवन की सच्चाई नहीं बल्कि परिस्थितियों से समझौता करने की एक खामोश कला होती है। भीतर विचारों का शोर, भावनाओं का द्वंद्व और अनकहे दर्द का तूफान चलता रहता है, फिर भी हम हर दिन सामान्य दिखने का अभिनय करते हैं। शायद यही जीवन का सबसे बड़ा साहस है, अपने संघर्ष को छिपाकर भी उम्मीद का दीप जलाए रखना और हर सुबह फिर से दुनिया का सामना करने के लिए स्वयं को तैयार कर लेना। बहुत सुंदर लिखा है आपने, शुक्रिया। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि बस कुछ ही देर में सुरीला सफर शुरू होने वाला है, लेकिन मन में अभी से अंतर्द्वंद चल रहा है कि आज आप कौन सा गीत सुनवाने वाली हैं। इबारत तो सुबह ही पढ़ लिया था और ये मनोरंजक प्रोग्राम है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज प्रसारित होने वाले सुरीला सफर कार्यक्रम में बहुत सारे गीत शामिल होंगे, लेकिन कुछ गीत हमने भी लिखे हैं, बिल्कुल लिखे हैं, और आज तो बहुत सारे गीत हमारी पसंद से आपके मिलने वाले हैं। इसके लिए बहुत बहुत बधाइयां हमारे श्रोताओं को। जी, जो हम ये म्यूजिक बजा रहे हैं इसमें भी आप गाना पकड़िए कौन सा है, और ये भी वैसा ही गाना है, यानी जहां नायक और नायिका सिर्फ पर्दे पर आते हैं और अपना अभिनय करते हैं लेकिन होठ उनके नहीं हिल रहे होते हैं। तो आज के सवाल नोट कर लीजिए, जब आप कोई फिल्म देखने गए थे आज तक, जो भी फिल्म आपने देखी होंगी, वैसे तो बहुत सारी फिल्में देखी हैं, लेकिन कभी आपको याद हो कि किसी गीत को, ऐसे ही किसी गीत को जैसा विषय आज हम लेकर आए हैं, पर्दे पर देखकर आपकी आंखें भर आई हों और छल छला आई हों, या गला रुंध गया हो, या आप रोने से लगे हों, ऐसा कोई गीत जो आपकी याद में शामिल है तो उसका जिक्र करें। मेरे साथ तो फिल्म देखते समय अक्सर ऐसा होता है कि कोई भी दर्द भरा गीत आया नहीं, आंखें छल छलाने लगती हैं और मन ऐसे लगता है जैसे रो लिया जाए। और एक और सवाल कि आपके भीतर क्या चलता रहता है, आपका अंतर्मन, आपके अंतर्मन की आवाज क्या कहती है। आपके जीवन में जो भी चल रहा है, बाहर आप हंसते हैं मुस्कुराते हैं, लेकिन आपके भीतर की आवाज क्या है, क्या कभी आपने उसे सुना? कम से कम शब्दों में बताइएगा। और आइए चलते हैं अगले गीत की ओर। एसडी बर्मन का संगीत है, कैफी आजमी के बोल हैं, गीता दत्त की आवाज, एक कालजयी गीत है, फिल्म का नाम कागज के फूल।

गीता दत्त को आपने सुना, फिल्म का नाम था कागज की फूल। एक श्रोता लिखते हैं कि पर्दे पर फिल्म की नायिका वहीदा रहमान, वक्त ने किया क्या हजी सितम गाने में हिंदी सिनेमा का सबसे बेहतरीन और दर्द भरे गानों में से एक है। फिल्म कागज के फूल का ये गीत समय की क्रूरता, अधूरे प्रेम और पहचान के खो जाने की एक अमर दास्तान है। एक प्रसिद्ध निर्देशक और उनकी अभिनेत्री वहीदा रहमान के बीच के अधूरे प्रेम और अलगाव पर आधारित है ये गीत। बहुत ही सुंदर गीत है ये। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बज रहे गीत की पार्श्वभूमि में अगर नायक या नायिका लफ्ज हिलाए बगैर फिल्मी पर्दे पर दिखाई दे रहे हैं तो ऐसे गीत ढूंढने में थोड़ी दिक्कत आ जाती है। दिक्कत क्यों आ जाती है, आप ढूंढिए, बिल्कुल आराम से मिलने वाले हैं। वैसे जो आपने 10 गीत लिखे उनमें से बहुत सारे गीत मिल रहे हैं, देखिएगा कितने गीत मिलते हैं हमारी पसंद से, है ना। वहीं आप लिखते भी हैं कि कुछ और गीत आते हैं तो जरूर लौटकर आऊंगा। अरे वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज के कार्यक्रम में कौन से गाने होंगे इसकी मुझे बहुत उत्सुकता है। मुखौटे के पीछे की बात तो वाकई दिलचस्प है। भाई मुखौटा तो आपने भी पहन रखा है, जीवन में जरूरी भी है और हम पहनते भी हैं, लेकिन हाँ उस मुखौटे के पीछे अगर हमारा क्रूर रूप है वो गलत है। मुखौटा तो जीवन में हम पहनकर निकलते ही हैं रोज। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज फिर इबारत पढ़कर दिल खुश हो गया, बहुत ही प्यारा खूबसूरत विषय लेकर आई हैं। हिंदी सिनेमा में पार्श्व गीत केवल दृश्यों को भरने का माध्यम नहीं बल्कि ये कथा के विस्तार और पात्रों की अंतरात्मा की आवाज होते हैं। ये गीत अक्सर मौन में छिपी भावनाओं, अनकही तड़प और परिस्थितियों के मर्म को सीधे दर्शक के दिल तक पहुंचाते हैं। गानों के माध्यम से कहानी को आगे बढ़ाना भारतीय फिल्मकारों की एक सशक्त शैली रही है जो दृश्य और संगीत के संगम से एक ऐसा भावनात्मक कोलाज बनाती है जो सीधे रूह को छू लेता है। जब पर्दे पर पात्र मौन होते हैं या परिस्थितियां इतनी गंभीर होती हैं कि संवाद कम पड़ जाते हैं तब ये गीत कहानी का भार अपने कंधों में उठा लेते हैं। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्मों में ऐसे कई गीत होंगे जिसमें नायक नायिकाओं के अंतर्द्वंद को उजागर किया गया है और पाश में वो बजते हैं। मुझे तो इतना ज्ञान नहीं है, जिसने अधिकतर फिल्में देखी होंगी उन्हें पता होगा। चलिए तो कार्यक्रम में इस सफर में हमारे साथ तो है ना आप। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी कला शायद यही है कि वो टूटते हुए भी मुस्कुराना सीख लेता है। दुनिया उसकी मुस्कान देखती है लेकिन उसके भीतर चल रहे युद्ध की आहट केवल उसका अपना मन सुनता है। बाहर से समंदर शांत दिखे ये जरूरी तो नहीं, गहराइयों में तूफानों का बसेरा भी तो होता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज सुरीला सफर का ये जो पोस्ट है हमारे फेसबुक पेज पे आया है, हम थोड़ा लेट हैं लेकिन हम यही कहेंगे कि हम बेवफा हरगिज़ न थे। नहीं नहीं, आप कहाँ हैं बेवफा, हमने तो कभी ये जिक्र भी नहीं किया कि हमारे श्रोता बेवफा हैं, बल्कि आप तो वफादार हैं, तभी तो इस सफर में अंत तक हमारे साथ बने रहते हैं, है ना। एक श्रोता लिखती है कि सुप्रभात, आज तो दिल को छू लेने वाली इबारत है। मन में जो भाव होते हैं कई बार ऐसे होते हैं किसी को बता नहीं सकते, कभी किसी की याद आती है, कभी कोई घटना याद आ जाती है लेकिन वर्तमान से मेल नहीं खाती। जैसे शादी ब्याह के समय हमारी माँ याद आती है, हंसते हंसाते हमें रोना पड़ता है, फिर सबके सामने छुपकर चुपके से हम अपने मन को शांत करते हैं और किसी को कुछ नहीं कह पाते हैं। बिल्कुल सही कहा, जब बात शादी की चली है तो ये गीत हम आपको नहीं सुनवाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आइए सुनते हैं सचिन देव बर्मन की संगीत निर्देशन में मजरूह सुल्तानपुरी की रचना, आवाज मुकेश की, फिल्म का नाम बम्बई का बाबू। ये गीत सुनने के बाद हमारी आंखें छलछला आती हैं। जब पर्दे पर इस गीत को हम देखते हैं तो भाई जो हमने आपसे सवाल किया था वही होता है ना।

हमारे श्रोता लिखते हैं कि अधिकतर ये देखा जाता है कि हम किसी से मिलते हैं और पूछते हैं कि आप कैसे हो, तो ये जवाब मिलता है कि ठीक है या बढ़िया है। ऐसे ही हम भी कहते हैं बढ़िया है जब हमसे कोई पूछता है, जबकि जरूरी नहीं हम सबके साथ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा हो, क्योंकि भीतर तो उथल पुथल और वैचारिक तूफान सबके साथ चलता रहता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर में आने के बाद तो हम रहे ना हम, हमारी श्रीमती जी तो कहती हैं कि एक बजने वाला है, सब काम से फ्री हो जाओ, नहीं तो एक घंटे तक आपके मिजाज नहीं मिलेंगे, क्या करें। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत सारे गीत ऐसे हैं जिन्हें सुनकर हमारी आंखें भर आती हैं। बैकग्राउंड गाने में आंखें भर आई थी फिल्म हाथी मेरे साथी में, जब रामू हाथी की मृत्यु हो जाती है और बैकग्राउंड में रफी साहब का गाना बजता है, नफरत की दुनिया को छोड़कर प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार, तो आंखें भर आती। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत ही मार्मिक सीन है वो। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि चल रही सजनी अब क्या सोचे, ये गाना सुनते सुनते तो आंखें बहने लगती हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज एक गाना है बिन फेरे हम तेरे का टाइटल गीत, जो कि किशोर कुमार ने गाया है, बड़े ही भावुक अंदाज में गाया है। कभी कभी तो इस गीत को गुनगुनाने में मैं बहुत ही भावुक हो जाता हूँ। और एक ऐसा ही गीत फिल्म भीगी पलके का है जिसे अक्सर किशोरदा ने गाया। उस गाने को अक्सर जब मैं सुनता हूँ तो लगता है कि मेरी आंखें भर आई हैं। गीत है जब तक मैंने समझा जीवन क्या है, जीवन बीत गया। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का ये कार्यक्रम सुनकर भी हमारी आंखें भीग रही हैं, क्या करें जी। तो हमारे सवाल का जवाब आप दे रहे हैं और हम शामिल कर रहे हैं आपके जवाब। अगला गीत है जगजीत कौर की आवाज में फिल्म बाजार से, मिर्जा शौक की ये रचना है और खय्याम साहब का संगीत है। याद कीजिए सुप्रिया पाठक को, साथ में है फारूक शेख। क्या हालत है दोनों की, बिना कुछ कहे जैसे सब कुछ कह जाते हैं इस गीत के माध्यम से।

जगजीत कौर को आप सुन रहे थे फिल्म बाजार में। हमारे सवाल एक बार फिर दोहरा देते हैं हम कि आपके अंतर्मन की आवाज क्या है, और या यूं कह सकते हैं कि इस समय आपके भीतर क्या चल रहा है। बाहरी रूप में तो आप इस सफर में हमारे साथ चल रहे हैं, कार्यक्रम सुन रहे हैं, अपनी बात लिख रहे हैं, लेकिन आपके भीतर इस वक्त क्या समझ गए मेरी बात? और ऐसा कोई गीत जिसे आपने जब फिल्म के दौरान देखा और आपकी आंखें भर आई? बहुत सारे ऐसे गीत हैं जिन्हें देखते समय हमारी आंखें भर आती हैं, लेकिन आपकी याद में जो गीत शामिल है उसका जिक्र करें। हमारे श्रोता ने लिखा है बहुत ही कम शब्दों में कि हमारे भीतर यानी मेरे भीतर बहुत शोर है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने लिख दी कि वाकई भीतर एक शोर जो है, कोलाहल मच रहा होता है हमारे, लेकिन बाहर हम मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। यही जिंदगी का शायद फलसफा है ना। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का प्रोग्राम बहुत यादगार होगा क्योंकि आज की थीम बहुत शानदार है। एक श्रोता लिखते हैं कि संदर की खामोशी को आजकल एक नाम मिल गया है, साइलेंट डाइवोर्स, जिसमें पति पत्नी साथ रहते हैं। पति पत्नी के अलावा सभी को ऐसा लगता है कि इनसे अच्छा कपल कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, पर अंदर की परेशानियों को, अंतर्द्वंद्व को ये दोनों ही अच्छे से समझ पाते हैं। और हिंदुस्तान में तो खास तौर से ऐसे कई जोड़े आपको मिल जाएंगे जो अलग भी नहीं रह पा रहे और साथ भी नहीं रह पा रहे। बहुत बड़ी समस्या की ओर आपने इशारा किया है। एक श्रोता लिखते हैं कि गदर एक प्रेम कथा फिल्म में जब अभिनेत्री को गोली लगी

जाती है तो बच्चा अपनी माँ के लिए रोते हुए गीत गाता है, घर आजा परदेसी, तेरी मेरी एक जिंदगी, वो पल बहुत भावुक था मेरे लिए। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ये द्वंद्व हमेशा बुरा नहीं होता, कई बार हमें सोचने, सीखने और सही निर्णय लेने की दिशा में आगे बढ़ाता है। जब हम अपने मूल्यों को समझते हैं, धैर्य रखते हैं और स्वयं से ईमानदारी से प्रश्न करते हैं तो ये द्वंद्व धीरे धीरे स्पष्टता में बदल जाता है। बहुत सुंदर। बाकी आपने और भी बहुत कुछ लिखा है कि अंतर मन में द्वंद्व तब होता है जब हमारे विचार, भावनाएं, इच्छाएं और कर्तव्य एक दूसरे से मेल नहीं खाते। एक ओर स्वार्थ होता है और दूसरी ओर नैतिकता और जिम्मेदारी। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज के सुरीला सफर कार्यक्रम में जरा अलग हटके काफी रोचक विषय चुना गया है जिसमें सुरीला सफर कार्यक्रम सुनने की जिज्ञासा बढ़ गई है। हाँ, वैसे मैंने कई फिल्मों में देखा है कि बैकग्राउंड में एक ही गीत बजता है और अंत तक बजता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बर्मन दा के गाए ज्यादातर गीत अंतर मन की आवाज होते हैं। बिल्कुल सही कहा है आपने, बहुत सारे ऐसे गीत हैं SD बर्मन साहब के जो अंतर्मन की आवाज है और उन्हें पर्दे पर देखकर या जिंदगी में गुनगुनाते हुए जब हम उन्हें गुनगुनाते हैं तब भी हमारा मन भर जाता है। आइए सुनते हैं ऐसा ही गीत। सचिन देव बर्मन का संगीत है, आनंद बख्शी के बोल, सचिन देव बर्मन की ही आवाज यानी बर्मन दादा की आवाज, फिल्म का नाम आराधना। जी हाँ, फिल्म का नाम आराधना।

अगर आप बता सके तो बताइए, पर्दे पर इसमें इस गीत में शर्मिला टैगोर है, उनके साथ पिता के रूप में कौन से कलाकार हैं? इस फिल्म में उस किरदार का नाम है गोपाल त्रिपाठी, उनका असली नाम क्या है बताइएगा?

सचिन देव बर्मन की आवाज थी, फिल्म का नाम था आराधना। हमने आपसे पूछा था कि शर्मिला टैगोर के साथ उनके पिता के रोल में, जिनका नाम फिल्म में गोपाल त्रिपाठी है, कौन से कलाकार हैं। हम आपको ये भी बता दें, ये कलाकार गीतकार और संगीतकार भी हैं। हमारे श्रोता का कहना है कि फ्लैशबैक गीतों की अगर बात करें तो संगीतकार गायक सचिन देव बर्मन जी ही एक ऐसे गायक हैं जिनके गीतों को सबसे ज्यादा फ्लैशबैक में फिल्माया गया है। शायद ही कोई गीत हो जो सचिन दा की आवाज में किसी अभिनेता पर फिल्माया गया हो, जिसमें अभिनेता ने अपने होठ हिलाए हो। वैसे मैंने अलग गीतों की लिस्ट पोस्ट कर दी है, देखते हैं मेरी लिस्ट में कितने गीत बजते हैं। बिल्कुल, आज तो हमारी पसंद के गीत जो बज रहे हैं, यानी हमने जो गीत चुने हैं आपकी लिस्ट में, वो लगभग गीत शामिल हैं। और इसके लिए तो मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में ही आप सभी को ढेरों बधाइयां दे भी दी थी। एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म के पात्र को समझना, उस पात्र के मन में क्या चल रहा है, इस बात को पर्दे पर व्यक्त करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि निर्देशक के हाथों में सारे पात्रों के धागे होते हैं। इसलिए कई बार तो प्रत्यक्ष रूप से कलाकारों से गाने ना गवाकर पार्श्व में गाना चलाते हैं। ये काम निर्देशक के लिए और संगीतकार के लिए मुश्किल होता है। पात्र के अंतर्द्वंद को कलाकार अपने अभिनय से पर्दे पर साकार करता है, लेकिन वो किस तरह साकार करे निर्देशक को सोचना होता है। सभी की मेहनत और सोच का परिणाम होता है ऐसा गाना जो आज भी दर्शकों को याद आता है। बहुत सुंदर लिखा है आपने। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म निकाह में सलमा आगा और उनके पति के साथ जब हनीमून पर जाती हैं, लेकिन उनके पति बिजनेस के काम में उलझ जाते हैं और अपनी पत्नी को समय नहीं दे पाते, तब सलमा आगा अकेली पड़ जाती है और ये गाना बजता है, समा भी है जमा जमा, ये गाना, और मतलब ये सिचुएशन आपको पसंद आई है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपका लिखना है कि आंधी की भावपूर्ण गाने से सफर के विषय वस्तु की संवेदना अनुरूप जबरदस्त आगाज, और ये फिल्म भी अंतर्द्वंद से भरी हुई फिल्म थी। बिल्कुल सही कहा, आंधी फिल्म तो बहुत ही कालजयी फिल्म है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत बढ़िया थीम है आज की, आप सभी उद्घोषकों की खासियत ये है कि आप कार्यक्रम में विविधता बनाए रखते हैं, जिससे कार्यक्रम सुनने की उत्सुकता बनी रहती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बाबुल की दुआएं लेती जाए जब बैकग्राउंड में ये बजता है तो मेरी आंखें डबडबा जाती हैं। बेहद मार्मिक गीत है, दर्द भरी रफी साहब की आवाज भी दिल को छू जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत ही मार्मिक गीत है वो। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म बंदिनी का गीत मेरे साजन है, उस पर जब भी सुनती हूँ या देखती हूँ तो मेरे आंसू नहीं रुक पाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, ये गीत भी बहुत दर्द को समेटे हुए है। तो हमारे सवालों का जवाब आप दे रहे हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब तो दीजिए कि इस वक्त आपके भीतर क्या तूफान चल रहा है। कार्यक्रम तो आप हमारे साथ सुन ही रहे हैं, हमारे साथ चल रहे हैं सफर में, लेकिन भीतर क्या चल रहा है, एक एक पंक्ति में बताइए ना। तो चलिए, बंदिनी फिल्म का ही गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। गीत थोड़ा सा हमने बदल दिया है, मुकेश की आवाज है, शैलेंद्र की रचना, सचिन देव बर्मन का संगीत।

हमारे सवाल के जवाब में श्रोता जवाब दे रहे हैं सवाल का कि आपके भीतर क्या चल रहा है। एक श्रोता ने लिखा है कि दीदी मैं तो सुबह ध्यान करता हूँ इसलिए मन शांत रहता है, इसलिए तूफान की कोई संभावना नहीं होती। बहुत शानदार। वहीं लिखते हैं एक श्रोता कि कार्यक्रम सुनते हुए मन में चल रहा है कि आज छुट्टी का दिन है और कौन कौन से जरूरी काम है जिन्हें निपटाना है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि क्या क्या बताएं आपको कि क्या तूफान चल रहा है भीतर। एक श्रोता ने लिखा है कि मन के भीतर ये द्वंद्व चल रहा है कि कैसे इतने अच्छे सवालों का जवाब दे, क्या खूब। और हाँ, हमारे एक श्रोता ने सही जवाब दिया है कि जो गीत हमने आपको सुनवाया था सफल होगी तेरी आराधना में, कलाकार थे पहाड़ी सान्याल। बिल्कुल सही कहा आपने, पहाड़ी सान्याल थे और जो गोपाल त्रिपाठी की भूमिका में होते हैं। और पहाड़ी सान्याल एक गीतकार और संगीतकार भी हैं और सबसे बड़ी बात कि इनके पिता भी नागेंद्र नाथ सान्याल भी बहुत बड़े कलाकार थे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि वैसे तो मैं लोगों को ऊपरी तौर पर बड़ा ही शांत नजर आता हूं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे मन में जो विचार आते हैं, जो उथल पुथल मची रहती है, उसके बारे में मैं ही जानता हूं। ये सिलसिला जारी ही रहता है। इनसे उबरने के लिए मैं या तो डायरी लिखने बैठ जाता हूं, या लॉन्ग ड्राइव पर चला जाता हूं, या फिर किसी शांत जगह पर बैठकर मेडिटेशन कर लेता हूं। बिल्कुल यही तरीका है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कभी भी चैन नहीं आता जीवन में। अरे मन को समझाइए, बहुत जरूरी है मन को समझाना। एक श्रोता लिखते हैं कि आपका प्रेजेंटेशन मंदाकिनी जी बहुत ही अच्छा है, आवाज मीठी है, मैं आपको सैल्यूट करता हूं। हम भी आप सभी को सैल्यूट करते हैं कि आप इस सफर में अंत तक बने रहते हैं और हमारी जमकर तारीफ करते हैं। एक श्रोता लिखते हैं बिल्कुल सही जवाब दिया आपने पहाड़ी सान्याल, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है, वो शर्मिला टैगोर के पिता बने फिल्म आराधना में। एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म मदर इंडिया में जब नरगिस कीचड़ में पड़े चने अपने बच्चों को खिलाती है तब रोना आ जाता है। बहुत बहुत

क्या कहूँ मैं, ऐसा सीन है वो वाकई। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म बंदिनी का ये गाना हो जाने वाले तो ऐसा गाना है जिसे भुलाना मुश्किल है। और एक श्रोता लिखते हैं कि आज आप भी कभी विविध भारती का कोई प्रोग्राम जब प्रस्तुत करती हैं तो अगर उस वक्त आपकी तबीयत ठीक नहीं भी होती है तो भी आप हमें बिल्कुल महसूस नहीं होने देती हैं, हम श्रोताओं का मनोरंजन करती रहती हैं, हम आपको सैल्यूट करते हैं। और एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म वीर जारा में गाना चलता है दिल में मगर चाहत के दिए, बहुत ही भावुक गाना है, तब हम भावुक हो जाते हैं। और एक श्रोता ने कहा है कि अंतर्मन की आवाज ईश्वर की आवाज होती है, इसलिए शायद इंसान कभी कभी खुश होता है और दुखी भी रहता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि सचिन दा का जो आलाप है वो हमें भावुक कर देता है, बिल्कुल उनकी आवाज तो जैसे कोई ईश्वरीय आवाज है ऐसा लगता है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि मन में जो हलचल है उसे कैसे व्यक्त करूं, आज हंसी का मुखौटा ही सही, बस विविध भारती के कार्यक्रम को सुनना है। एक श्रोता ने लिखा है कि सचिन देव बर्मन के स्वर सबसे अनोखे और उनके गाए गीत बहुत विलक्षण लगते हैं और इतनी अच्छी लगती है उनकी आवाज, मैं बता नहीं सकता, उनके गाने सुनकर मैं न जाने किस दुनिया में खो जाता हूं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो आप हमें भावुक करने में सफल हो गई हैं। सच में भावुक हो गए आप? अरे जिंदगी में भावुकता भी जरूरी है, हाँ प्रैक्टिकल होना भी जरूरी है, भावुकता भी बहुत हद तक सही है, लेकिन भावुक होने का मतलब ये नहीं कि हम अपना ही नुकसान कर लें। एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म खानदान में नूतन और सुनील दत्त में जब घरेलू झगड़ों में घर का बंटवारा होता है और दीवार खड़ी हो जाती है और बैकग्राउंड में गीत बजता है वो देखो जला घर किसी का, ये फिल्म अनपढ़ का गाना है, तो ये बहुत गीत मार्मिक लगता है, गीत ही अपने आप में इतना गंभीर है कि इसे सुनकर ही जो है मन में तूफान उठ जाता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि स्वदेश फिल्म का गीत ये जो देश है तेरा भी आंखें भिगो देता है, बहुत सुंदर। और कई श्रोता लिखते हैं कि मेरे चयनित गीतों से एक और गीत सफल होगी तेरी आराधना भी कार्यक्रम में शामिल करने के लिए धन्यवाद। बिल्कुल धन्यवाद आपका कि आपने पैनी नजर रखी आज हमारी जो हमने जो टेक्स्ट दिया था उस पर और गीत ढूंढने में आप सभी सफल हो गए। चलिए एक ऐसा ही और गीत सुनते हैं, किशोर कुमार की आवाज, फिल्म का नाम आपकी कसम, आनंद बख्शी की रचना, राहुल देव बर्मन का संगीत।

हमारी श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी के अनेक रूप हैं, मगर पीड़ा का केवल एक ही रूप है। वो पीड़ा हमारे चेहरे पर दिख न जाए सो हमें अनेक मुखौटे समय समय पर लगाने पड़ते हैं और हमें ठहरना नहीं सिखाया जाता, इसलिए हम विचलित हो जाते हैं। सुख हो या दुख, हम एकदम से तिलमिला उठते हैं। कोई कैसे जान सकता है कि हमारे जीवन की बेचैनियां तो तब भी सांसें भारी लगे थोड़ा मन को आराम दे बिना किसी पश्चाताप के, बिना किसी डर के, क्योंकि भावुक हर भाव व्यक्त नहीं किया जा सकता है। कुछ भावों को संभाल कर हमें रखना होता है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत बहुत आभार, आपने बिल्कुल सच कहा कि भावुक होना चाहिए पर प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। एक श्रोता लिखते हैं कि कई बार होठ कुछ नहीं कहते पर अंतर्मन की खामोशी बहुत कुछ कह जाती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का ये कार्यक्रम जो है, जिस आपकी आवाज में का प्रवाह गंगा नदी के समान है, शुक्रिया, मेहरबानी। एक श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मुकाम फिर नहीं आते, बहुत शानदार गीत है, जिंदगी की हकीकत को बयान करता ये गीत। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मेरे अंतर में बस यही चल रहा है कि अपनी बेटी की विदाई कैसे करूंगी। और एक श्रोता लिखते हैं कि लॉन्ग ड्राइव पर मन के हालात अगर सही नहीं है तो दूर नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये खतरा होता है। और वहीं एक श्रोता लिखती है कि अभी बहुत से गीत रह गए हैं, ये थीम दोबारा लाएं मंदाकिनी जी, अभी मन नहीं भरा है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कुछ गीत कानों से नहीं अंतर्मन से सुने जाते हैं, इसलिए वो बरसों बरसों जो है याद रहते हैं।

वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का प्रोग्राम दिल को छू रहा है, आंखें भीगती जा रही हैं, काम में मन नहीं लग रहा है, बेहद खूबसूरत है आज का ये कार्यक्रम। जी तो कहा ना किशोर कुमार ने कि जो है वक्त रुकता नहीं है और ठहरता नहीं है, बदलता रहता है और पर्दे पर मंजर बदल जाता है। देखिए बदल गया है मंजर, समय हो गया है आपसे विदा लेने का। अब मंदाकिनी जोशी चाहती है इस कार्यक्रम से इजाजत, फिर मिलेंगे, नमस्कार।

त्रिवेणी के सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार। दोस्तों, आपको यात्रा करना कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना? मुझे भी अच्छा लगता है, क्योंकि यात्राएं जीवन के अनुभवों के विस्तार के साथ मानव के यानी हमारे बौद्धिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। स्वयं जीवन को भी एक यात्रा कहा गया है। प्राचीन समय से ही कवि और मनीषी यात्राओं को महत्व देते रहे हैं। यात्रा करना हमारी नैसर्गिक प्रवृत्ति है। हम अगर मानव इतिहास पर नजर डालें तो पाएंगे कि मनुष्य के विकास की गाथा में यायावरी का महत्वपूर्ण योगदान है। अपने जीवन काल में हर आदमी कभी न कभी कोई न कोई यात्रा अवश्य करता है। यात्रा एक ऐसा अनुभव है जो हमें नई जगहों को देखने के साथ साथ खुद को जानने और समझने का भी मौका देती है।

जब आप यात्रा पे निकलने के लिए तैयार हो ही गए हैं तो कुछ बातों का ख्याल भी रखिए। यानी यात्रा को सुरक्षित और आनंददायक बनाने के लिए हमेशा सफर का आसान फार्मूला अपनाएं, यानी कम सामान सफर आसान। यात्रा शुरू करने से पहले वहाँ के मौसम और घूमने की जगहों की जानकारी जरूर बना लें। ये यात्राएं हमारे मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा करती हैं, साथ ही हमारे व्यक्तित्व को निखारने का सबसे बेहतरीन तरीका है। अलग अलग जगहों को, वहाँ के लोगों को और उनकी संस्कृति को करीब से देखने पर हमारी सोचने की क्षमता का दायरा बढ़ता है। यात्रा के दौरान हम अनजाने में ही बहुत कुछ सीख जाते हैं। स्थानीय लोगों को जानना, अलग अलग परिस्थितियों में खुद को ढालना, नई नई भाषाएं सीखना, नई संस्कृतियों से पहचान होना, छोटी मोटी चुनौतियों का खुद सामना करना, इन यात्राओं से हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है, हमारे निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। ये यात्राएं हमें ऐसे अनुभव और यादें दे जाती हैं जो जीवन भर हमारा साथ देती हैं।

दोस्तों, यात्रा सुखद और सुरक्षित बनाने के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। अपने साथ जरूरी कागजात, जरूरी दवाइयाँ, मौसम के अनुसार कपड़े और एक पावर बैंक जरूर रखें। घूमने जाने से पहले यात्रा का मार्ग, रुकने की जगह और बजट का खाका तैयार कर लेना चाहिए। पेट दर्द, सिर दर्द, उल्टी, दस्त, बुखार और खांसी जुकाम की दवाइयाँ हमें साथ रख लेनी चाहिए। मूंछ या दर्द के लिए स्प्रे भी रख लेना चाहिए। ओरिजिनल आईडी जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट और टिकट का एक अलग ट्रैवल वॉलेट बना लेना चाहिए। सभी जगह ऑनलाइन पेमेंट काम नहीं आता है, इसलिए आपातकालीन परिस्थितियों के लिए अपने पास पर्याप्त कैश जरूर रखना चाहिए। आप कहीं भी जा रहे हो, जैसे पहाड़ी इलाकों की यात्रा हो, विदेश यात्रा हो, धार्मिक यात्रा हो, कहीं भी जा रहे हो, वहाँ की स्थानीय संस्कृति और रीति रिवाजों का हमेशा सम्मान करें। सफर के दौरान साफ सफाई का पूरा ख्याल रखें, अपना ध्यान रखें और अपने परिवार वालों की सुरक्षा का ख्याल रखें।

हम विविध भारती से बोल रही हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने देश में निर्मित C-295 विमान की पहली उड़ान को बड़ी उपलब्धि बताया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने सोने की खरीदारी से बचने, विदेश यात्रा न करने और कार पूलिंग को बढ़ावा देने की उनकी अपील का समर्थन करने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया। भारत और सेशल्स ने विक्टोरिया में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद स्वास्थ्य, कृषि, वित्त और अंतरिक्ष सहित कई क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने लोगों से सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेजों के बिना कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं करने को कहा। अमेरिका और ईरान के बीच नए सैन्य हमलों से पश्चिम एशिया में सुरक्षा स्थिति बिगड़ी और लंदन में महिला T20 विश्व कप में भारत अंतिम ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है।
1: C-295 ये विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि इसी महीने कोलकाता में 3 युद्धपोतों का जलावतरण किया गया और DRDO ने लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है।
1: कोलकाता में INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है।
0: प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा की जिसे दुनिया भर में मनाया गया। इस बार यह आयोजन 2,500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में करोड़ों लोगों ने योग दिवस में भागीदारी की। श्री मोदी ने अहमदाबाद में विश्व योगासन चैंपियनशिप में पदक विजेता एथलीटों को बधाई दी।
1: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
0: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पूलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक

0: खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में पेठकर परिवार की चर्चा की, जिसने लगभग 3,500 ग्रामीणों का दुर्घटना बीमा कराया है। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति को 1,00,000 रुपए का बीमा मिला है। श्री मोदी ने कहा कि ये भावना हृदय को छूने वाली है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने पीड़ित परिवारों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में अब तक 3,700 करोड़ रुपए से अधिक और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में लगभग 22,000 करोड़ रुपए की सहायता दी है।
0: सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 1 साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2,00,000 रुपये का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज में अंधविश्वास सदियों से गहरे बैठा हुआ है। श्री मोदी ने बताया कि असम में अशुभ माने जाने वाले हरगिला पक्षी को बचाने के लिए हजारों महिलाएं सामने आई हैं।
0: हरगिला एक दुर्लभ पक्षी है। ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगिला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगिला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे।
1: प्रधानमंत्री ने नागालैंड बेबी लीग और नागालैंड महिला फुटसल लीग की चर्चा की।
0: देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। अब कहीं अधिक युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपना रहे हैं। नागालैंड के 2 ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग, जो उनके रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित करती है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय में शास्त्रार्थ की प्राचीन परंपरा को फिर से जीवित किया गया है।
0: नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया।
1: प्रधानमंत्री ने दिल्ली के केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के आधुनिक प्रयास की चर्चा की।
0: जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए AI टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी।
1: श्री मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति दुनिया भर में पहुंच रही है।
0: कैरिबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है। वहाँ भारतीयों की संख्या करीब 100 है। भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहाँ हो रहा है। वहाँ स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका ये प्रयास बहुत प्रेरक है।
1: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से गणेश उत्सव पर गणपति बप्पा की मिट्टी की मूर्ति को प्राथमिकता देने की अपील की। अंत में प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण के संबंध में कहा कि वर्षा जल की एक एक बूंद को बचाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कैच द रेन अभियान में ढिलाई नहीं होने देनी चाहिए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR

0: ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिंद महासागर की सुरक्षा और समृद्धि भारत और सेशल्स की साझा जिम्मेदारी है। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ विक्टोरिया में द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े।
1: मेरी यात्रा ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर हो रही है जब सेशल अपनी स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे कर रहा है और हम भारत सेशल राजनयिक संबंधों की भी 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इन 50 वर्षों की यात्रा में हमने मित्रता को विश्वास में, विश्वास को सहयोग में और सहयोग को जन कल्याण में बदला है। हिंद महासागर ने भारत और सेशल के संबंधों को सींचा है।
0: दोनों देशों के बीच कृषि, वित्त, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान भी हुआ। सेशल्स के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके दूरदर्शी नेतृत्व तथा सतत विकास और जलवायु लचीलेपन के प्रति प्रतिबद्धता के लिए देश के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी आज सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे, भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे और राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर यात्रा करें। मंत्रालय ने यह परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं। ऑपरेशन अमिस्तात के अंतर्गत भेजी गई भारतीय सहायता वेनेजुएला पहुंच चुकी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि फील्ड अस्पताल इकाई 30 टन राहत आपूर्ति, 6 टन औषधि और चिकित्सा उपकरण वेनेजुएला में भूकंप के बाद जारी राहत प्रयासों को बढ़ावा देंगे। अमरीकी सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लगातार दूसरे दिन ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने कहा कि शुक्रवार को तेल से लदे एक व्यापारिक पोत किको पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना के अड्डों, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमताओं को निशाना बनाया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को साकार करने में गांवों की मुख्य भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में श्री चौहान ने कहा कि ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के योगदान सहित 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है।
2: गांव केवल भारत का भूगोल नहीं है, भारत की आत्मा है, भारत की अर्थव्यवस्था है, भारत की अस्मिता है। गांव केवल बसाहट नहीं है, वे भारत की सभ्यता है, संस्कृति है, जीवन मूल्य है, परंपराएं हैं और समृद्धि के केंद्र रहे हैं। हमारी ताकत भी गांव है और हमारी संभावना भी गांव में। गांव हमारे लोकतंत्र की सबसे मजबूत इकाई भी है और ये आज का सम्मेलन ग्रामीण समृद्धि का मंथन है।
0: पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला भवन हादसे की जांच तेज हो गई है। जादवपुर विश्वविद्यालय और आईआईटी खड़गपुर के विशेषज्ञों की टीमें आज घटनास्थल का निरीक्षण करेंगी। इससे पहले फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम भी मौके से नमूने एकत्र कर चुकी है। निर्माणाधीन गोदाम ढहने से हुए हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। लंदन के लॉर्ड्स में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम 7 बजे भारतीय टीम अंतिम लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। भारत ग्रुप में दूसरे और ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है। भारतीय टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ये मैच जीतना होगा। उधर बेलफास्ट में दूसरे टी20 पुरुष क्रिकेट मैच में आज शाम 6 बजे भारत का मुकाबला मेजबान आयरलैंड से होगा। 2 मैचों की श्रृंखला में आयरलैंड ने पहले मैच में भारत को 34 रन से हराया था। किदांबी श्रीकांत यूएस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकिमोतो को हराया। अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी लगातार 7 विश्व कप मैचों में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। आज अंतिम मुकाबले में अर्जेंटीना ने जॉर्डन को 3-1 से हराया। इसके साथ ही विश्व कप में उनके गोलों की संख्या 19 हो गई है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और

0: सरकार ने लोगों से सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेजों के बिना कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं करने को कहा और लंदन में महिला टी20 विश्व कप में भारत अंतिम ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

प्रस्तुति कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है।

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था राजकुमार, गीतकार थे शैलेंद्र और संगीतकार थे शंकर जयकिशन।

मदन मोहन के संगीत निर्देशन में अभी आपने राजा मेहदी अली खान की लिखी रचना सुनी। स्वर लता मंगेशकर का था और फिल्म का नाम था आपकी परछाइयां।

0: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 30 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला गीत आवाज मोहम्मद रफी की, फिल्म का नाम है मेरे महबूब। इस गीत को शकील बदायूनी ने लिखा है और धुन बनाई है नौशाद साहब ने।

कार्यक्रम में अब सुनिए चित्रगुप्त के संगीत निर्देशन में हसरत जयपुरी की लिखी गीत रचना। गायिका हैं लता मंगेशकर और ये फिल्म है बाघी।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: हम हैं राही प्यार के, जी हाँ ये है फिल्म का नाम जिसका दो गाना अब आप सुनेंगे, स्वर लता मंगेशकर और तलत महमूद के। इस गीत को जानिसार अख्तर ने लिखा है और धुन बनाई है हयम साहब ने।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, आवाज मुकेश की। फिल्म का नाम है दिल ही तो है। गीत रचना साहिर लुधियानवी की है और संगीत रोशन का।

0: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
1: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन कौन
2: लाया। राजेंद्र कृष्ण का लिखा गीत हम आपको मदन मोहन के संगीत निर्देशन में सुनवा रहे हैं। स्वर मोहम्मद रफी का है और फिल्म का नाम है शराबी।

0: प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम मनचाहे गीत।
1: मनचाहे गीत
0: मनचाहे गीत
1: मनचाहे गीत
0: मनचाहे गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार।
1: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
2: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियां एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
1: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
2: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
3: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतर्देशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
1: कार्यक्रम मनचाहे गीत,
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
0: तो इस कार्यक्रम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। कार्यक्रम का पहला गीत हम आप सबकी पसंद पर सुनवा रहे हैं। सुनने वाले हैं भोपाल से श्रवण सिंह गिन्नारे, गौरव सौरभ रेखा शेर सिंह गिन्नारे, और ये हैं तेलंगाना राजन्ना सिरसिल्ला जिला विलास सागर गांव से गंगाधर श्रीनिवास, लक्ष्मी प्रसन्ना, मनस्विनी चंद्रैया, मल्लवा लावण्या, रेवंत, महेश्विन, श्रीनु, सुजाता, ग्रीष्मा, दीपक, रमेश, कनक, लक्ष्मी, श्रीजा, साई कुमार और सुषमा। और ये खत हमें मिला है हथबंद करेली से भाई रामाधार ध्रुव, संजय कुमार ध्रुव और संजू कुमार का। आप सभी सुनना चाहते हैं शैलेंद्र सिंह की आवाज में फिल्म तराना का ये गीत।

अगला गीत सुनना चाहते हैं गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला, विशाल, निशा और इनके परिवार वाले। आप हैं समाना मंडी पंजाब से अश्विनी कुमार वर्मा, श्रीमती सुनीता वर्मा, अर्पणा और विकास वर्मा। ये खत हमें मिला है सिमगा छत्तीसगढ़ से श्रीमती सविता जैन, प्रदीप जैन और उनके साथियों का। आपसे भी सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर को फिल्म चंपा कली में गीत रचना राजेंद्र कृष्ण की है और तर्ज हेमंत कुमार की।

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था चंपा कली। विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत। अगला गीत सुनने के आप सभी ख्वाहिशमंद हैं। ये है सिमगा छत्तीसगढ़ से पुष्कर भोसले और इनके परिवार वाले, जवाहरगंज जबलपुर से जिनेन्द्र जैन और इनके परिवार वालों ने ये खत लिखा है। ये लिखने वाले हैं हमारे ग्राम दरचूरा से ददुआ साहू, भूरी साहू, रेखा और मोतीलाल साहू। आप सभी सुनना चाहते हैं मुकेश की आवाज। फिल्म का नाम है सहेली। गीतकार हैं इंदिवर और संगीतकार हैं कल्याण जी, आनंद जी।

मन चाहे गीत कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज है। फिल्म का नाम है अनोखी रात। इस गीत को इंदिवर ने लिखा है और धुन रोशन की है। सुनने के लिए आप सभी ने हमें फरमाइश भेजी। आप हैं राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क एमपी शाजापुर से मनमोहन राजावत राज, मधु राजावत और राशि रक्षित। इसी गाने को सुनना चाहते हैं। आप हैं महाराष्ट्र से विनोद कुमार अठिया, भारती अढ़िया, पारस, उर्वी बेन अढ़िया और इनकी परिवार वाली। इसी गीत को सुनने के लिए आपने भी हमें खत लिखा है। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, वीणा देवी आर्य, प्रतीक आर्य और ये हैं छत्तीसगढ़ से डॉक्टर प्रदीप, देवेंद्र और उनके साथी। आप सभी सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर को फिल्म अनोखी रात में।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत आप सबकी पसंद पर। आप हैं गांव टुकिया तहसील सिणधरी जिला बालोतरा राजस्थान से कृष्ण कुमार ढाबी और इनके परिवार वाले। अंबेडकर चौक खुरई से ये खत हमें लिखा है राम सखी, परमानंद सौरभ, गौरव, एलपी रोहित, लल्लूराम, पूरन रोहित, छोटू, डुनडुन और इनके परिवार वालों ने। और ये हैं वरुण जौलका से महेंद्र सरकटे, विजया सरकटे और मिलिंद। आप सभी सुनिएगे लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म कटी पतंग का गीत सुनना चाहते हैं। आनंद बख्शी के बोल हैं और राहुल देव बर्मन की धुन।

लता मंगेशकर की फिल्म का नाम था कटी पतंग। कार्यक्रम का आखिरी गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, आनंद बख्शी के बोल, मोहम्मद रफी की आवाज और फिल्म का नाम सूरज और चंदा। सुनने के लिए आप सभी ने हमें खत लिखे। बाबुल गांव पातुर से प्रकाश पाटिल, अलका पाटिल, दीप्ति, तृप्ति, यशोदीप और उनके परिवार वालों ने ये खत हमें लिखा है। आप हैं अमरावती कल्याण नगर से रमेश किल्लेकर, शकुंतला किल्लेकर, आराध्या किल्लेकर और माही किल्लेकर का। आइए आप सभी सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म सूरज और चंदा का ये गीत।

0: इस गाने के साथ ही आज का मनचाही गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये कार्यक्रम आपकी सेवा में पेश किया आपकी दोस्त मंदाकिनी जोशी ने।
1: मन चाहेगी
0: मन चाहेगी
1: मन चाहेगी।

0: कटीला रास्ता का दूसरा एवं अंतिम भाग। ये नित्यामूर्ति के मूल तमिल नाटक शोध नैत्य पाते का हिंदी रेडियो रूपांतर है। रूपांतर किया है ए शौर्य राजन ने और इसके निर्देशक हैं वीपी दीक्षित भट्टुक। तो आइए सुनते हैं नाटक कंटीला रास्ता, इस नाटक का दूसरा एवं अंतिम भाग।
1: मैं बहुत बदनसीब लड़की हूँ डॉक्टर साहब।
2: तुम क्यों दिल छोटा कर रही हो?
1: मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ झेलनी पड़ रही है। आपके मामा जी छाती के दर्द से बेचैन थे, उसी के शिकार हो गए। मेरे झंझट में आप उनकी भी देखभाल नहीं कर पाई।
2: उनके रोग का इलाज इस गांव में नहीं था। मैंने भरसक कोशिश की, पर क्या किया जाए, उनकी अवधि पूरी हो चुकी थी।
1: वे देखते ही देखते चले गए डॉक्टर साहब।
2: एक बात मैं उनसे कह नहीं सकी। कहना तो चाहा था, कितने में ही चुड़ैल नागमणि आकर मुझे ले गई।
1: वो क्या बात थी डॉक्टर साहब?
2: अगर मैं मर्द होती
1: तो फिर
2: शकुंतला से शादी कर उसे नया जीवन देती, यही कहना चाह रही थी मैं।
1: आप बहुत महान हैं डॉक्टर साहब। मैं बेखबर सो रही थी, जब अचानक मेरी नींद खुली तो मैंने आपके बारे में पूछा। इस जानम्मा से पता चला कि नागमणि डाइन आकर आपको ले गई है।
3: और तभी शकुंतला तुरंत चिल्ला उठी, नागमणि तो काली सापन है, भयानक सापन है।
1: ये सुनते ही मामा जी बहुत चिंतित हो उठे थे। उनको धक्का सा लगा, आप ही की फिक्र में वे छटपटाते हुए दम तोड़ गए।
2: उनको यही खबर जानलेवा साबित हुई। इस धक्के को सहने की ताकत उनमें नहीं थी, लेकिन मैं डॉक्टर होकर इतनी नाजुक दिल नहीं हो सकती। खैर, जो हुआ सो हुआ। सुनो जानम्मा।
3: जी डॉक्टर साहब, क्या बात है?
2: अल्लाह बख्श नहीं आया अब तक?
3: आते ही होंगे।
2: देखो शकुंतला
1: जी,
2: तुम अब पूरी तरह स्वस्थ हो गई हो। अब आगे के काम जल्दी जल्दी होने हैं, और देखो तुम्हें बेहिचक गवाही देनी होगी।
1: डॉक्टर साहब, मैं कैसे भरी अदालत में गवाही दे सकूंगी? डॉक्टर साहब, मेरी जिंदगी का क्या होगा? मेरे भरोसे और मेरे मोहताज बनकर जी रहे मेरे परिवार की इज्जत का भी तो सवाल है।
2: शकुंतला, कैसी बातें कर रही हो तुम? उस दर्दनाक दिन की याद करो, बारिश की शाम को तुम पर जो वहशियाना जुल्म हुआ उसका बदला।
1: मेहरबानी करके उस घटना की याद न दिलाइए डॉक्टर साहब। मैं उस घिनौने धब्बे को धो डालना चाहती हूँ, आप उसे समाज के सामने मत आने दीजिए।
2: शकुंतला, इस तरह तुम ये साबित कर रही हो कि तुम भी औसत मामूली लड़कियों में ही हो।
1: माफ कीजिए डॉक्टर साहब, मैं जीना चाहती हूँ, मुझे आराम से जिंदगी गुजारनी है।
2: शकुंतला, आगे बढ़े कदम को पीछे हटा लेना मेरे बूते की बात नहीं है। तुम निसंकोच सच्चा बयान देने को तैयार रहो।
3: शकुंतला बेटी, जरा सोच समझ कर आगे बढ़ो। डॉक्टर साहब तुम्हारी भलाई की ही बातें कर रही है, तुम निडर बनो बेटी।
4: गुड मॉर्निंग डॉक्टर।
2: हेलो उमा, आओ आओ, तुम्हारा स्वागत है।
4: देखो तो तुम्हारी डिस्पेंसरी देखने और कौन आए हैं।
5: हेलो।
2: ओह, डॉक्टर रतनगिरी, विश्वविख्यात हार्ट स्पेशलिस्ट यानी हृदय रोग विशेषज्ञ, बैठिए।
5: धन्यवाद धन्यवाद। कहिए, आपकी डिस्पेंसरी तो ठीक ठाक है ना?
2: आपके नर्सिंग होम की तुलना में।
4: भारती, तुम्हें खुशखबरी सुनाऊं?
2: सुनाओ।
4: मैं शीघ्र ही मद्रास जाकर इनके साथ काम करने वाली हूँ।
2: बहुत अच्छी बात है। आपने अपनी पत्नी की शिक्षा का सम्मान करना शुरू किया, उसके लिए बधाई।
3: अम्मा जी,
2: बताइए क्या लेंगे आप? कॉफी, चाय, नारियल का पानी?
4: कुछ नहीं चाहिए, तुम हमारे साथ घर चलो।
5: वो हमारा मतलब था हमारे साथ भोजन करने का निमंत्रण। अगर
3: डॉक्टर साहब, ये चिट्ठी शकुंतला दे गई है।
4: शकुंतला? कौन शकुंतला?
2: तुम जानती हो उसे उमा?
4: उसके बारे में आज सुबह यहाँ के बड़े रईस कुमार स्वामी बातें कर रहे थे। ये शकुंतला ग्राम सेविका है ना?
2: हाँ हाँ, ये चिट्ठी उसी ने भेजी है। हाँ, क्या बातें हो रही थी उसके बारे में?
4: उसका दूर का रिश्तेदार एक लड़का है।
2: तब
4: खुद कुमार स्वामी ने उस लड़के के साथ शकुंतला की शादी कराने का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया है। कह रहे थे गांव के मंदिर में शादी करा देंगे।
5: अच्छा, वो सुबह नए कपड़े, फूल मालाएं, फल तांबूल वगैरह लेकर जो लोग आए थे, वो सब क्या इसी शादी के लिए थे?
2: जी हाँ। तब तो इस चिट्ठी का कोई

0: उपयोग नहीं है।
1: कैसी चिट्ठी है?
0: इसमें एक दुखियारी की दर्दनाक कहानी है।
1: ओ।
0: शादी की आड़ में वो चैन से जिंदगी बसर कर सकती है। आइंदा समाज में सिर उठाकर चलने के लिए चिट्ठी ना रहे तो ही अच्छा है।
2: अरे ये क्या, आपने चिट्ठी फाड़ क्यों डाली?
3: क्या हुआ डॉक्टर साहब?
0: शकुंतला को हमसे भी बढ़कर पनाह मिल गई है।
3: कह क्या रही हैं आप?
0: इस वक्त कुमार स्वामी के संरक्षण में हमारे गांव के स्कंददेव मंदिर में शकुंतला का विवाह हो रहा होगा।
3: ओह, इसीलिए उसने मुकदमा वापस ले लिया है।
0: चलो, उस बेचारे दुखियारी की जिंदगी तो बन गई, हम उसी से संतोष कर लेंगे।
1: अरे मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतनी हिम्मत के साथ अन्याय का सामना कर सकोगी। तुम्हें अपनी प्यारी सहेली के रूप में पाकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है।
0: तुम खुद भोली भाली हो ना, इसीलिए हर एक में गुण ही गुण देखती हो।
2: सहेलियां एक दूसरे की बड़ाई करने में होड़ लगाती हैं भैया।
0: ऐसी बात नहीं है डॉक्टर साहब, जरूरत पड़ने पर अपना हक छोड़ भी देती हैं।
1: मेरा दिल चाहता है कि तुम्हारी कोई मदद करूं।
0: मदद? तुम
1: क्यों, शक है? अरे हाँ, उस दिन तुमने हार्ट पेशेंट के एक नाजुक केस के बारे में कहा था।
0: ऐसे तो कई केस हैं उमा, मेरे मामा जी की तरह कई हार्ट पेशेंट हैं जो सुविधा के अभाव में ठीक से इलाज नहीं करा पाते।
1: इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि यही एक अच्छा अस्पताल खोला जाए जिसमें सभी सुविधाएं मैसर हों।
2: ओ नहीं, ये एक बिल्कुल बेहुदा ख्याल है।
0: आप परेशान ना हो डॉक्टर साहब, मेरे मामा की खाली जमीन गाँव की सीमा पर है। जब तक वो रहे वहाँ मेहनत कर खेती बाड़ी करते रहे। अब मैं उनकी स्मृति में वहाँ एक अस्पताल बनाना चाहती हूँ।
1: अरे भारती, यू आर रियली ग्रेट।
0: वहाँ एक अच्छा अस्पताल बनाने में यदि आप लोगों की मदद मिल सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। आजीवन आप लोगों की आभारी रहूंगी।
1: भारती, मेरे पिताजी की ऊपर तक पहुँच है। भले काम के लिए अपने परिचय और प्रभाव का इस्तेमाल करना बुरा नहीं है।
0: जिस दिन ये काम पूरा होगा ना, उसी दिन तुम्हारे यहाँ आकर।
1: अरे छोड़ो उस दिन की बात, आज चलती हो कि नहीं?
0: अरे भाई सब्र करो, सब्र करो। तुम्हारे बच्चे का जन्मदिन तो ठाट से मनाया जाएगा ना, तभी प्रीति भोज पर आऊंगी।
1: तुम तो बड़ी हट्टी हो भाई। चलिए जी, हम चलते हैं।
2: अच्छा, अच्छा भाई, फिर मिलेंगे। हाँ
0: अच्छा, बाय बाय।
4: मुझे तो पहले ही मालूम था।
3: क्या मालूम था तुम्हें?
4: याद है तुम्हें, हमारी डॉक्टर साहब के पास एक मनहूस आदमी आया था।
3: हाँ हाँ, वो आरोग्य स्वामी।
4: उसने डॉक्टर अम्मा से कुछ दवाएं खरीदने के लिए एक नुस्खा लिखकर देने को कहा, पर डॉक्टर साहब ने मना कर दिया।
3: ये भी कम हटीली नहीं है।
4: ठीक ही तो है, झूठ मूठ नुस्खा सर्टिफिकेट वगैरह क्यों लिख कर दे?
3: ये लोग नुस्खा लेकर क्या करेंगे, इससे क्या फायदा है?
4: तुम नहीं जानती, ये लोग झूठ मूठ मर्ज बताकर दवाएं लेते हैं और घर में रख लेते हैं, फिर उन्हें दूसरों को बेच देते हैं। डॉक्टर से नुस्खा लेकर जाली बिल बनवाकर ऑफिस में पेश कर देते हैं और उसका पैसा ले लेते हैं।
3: छी छी छी, अरे ये तो साफ धोखाधड़ी है। हाँ तो फिर आरोग्य स्वामी का क्या हुआ?
4: डॉक्टर साहब ने साफ साफ कह दिया कि ये तिकड़म हमसे नहीं होगी, पर वो नहीं माना, बराबर जिद करता रहा। आखिर डॉक्टर साहब ने मुझे बुलाकर उसे बाहर निकाल देने को कहा। मैंने उसे हाथ पकड़कर बाहर निकाल दिया।
3: फिर
4: जाते जाते चुनौती देके गया कि बहुत सिर चढ़ी हुई हो, ठीक कर दूंगा, है किस होश में।
3: ये तो बहुत बुरी बात हुई, मुझे तो बहुत डर लगता है।
5: कंपाउंडर
4: जी, अभी आया।
5: सुनो लवक्ष, ये दलाल कंपनी वालों का खत आया है, उन्होंने दवाओं का पार्सल भेजा है।
4: हस मामूल हफ्ते के आखिर में आने वाली गाड़ी में उस पार्सल को भिजवा देने को लिख दीजिए।
5: तुमने सुना है लवक्ष, आसपास के गांव में हैजा फैल रहा है, पर अचरज की बात यह है कि कोई भी आदमी हैजा से बचने की सुई लेने नहीं आया अब तक।
4: गांव है ना, सुई से कोसों दूर भागेंगे, फिर भी आज नहीं तो कल आ ही जाएंगे। सरकार ने ऐलान करा दिया है कि सबको हैजे से सुरक्षा की सुई लेना लाजमी है।
5: अच्छा लवक्ष, ऐसा करो तुम लोग यहीं रहना। हाँ, मैं गांव में जाकर रोगियों को देखती हूँ।
3: जी बहुत अच्छा।
6: अरे इस छोकरे की उछल कूद दिन पर दिन बढ़ती जा रही।
4: एक नुस्खा लिख कर देने को कहा, कहती है कि ये तिगम यहाँ नहीं चलने दूंगी। मैंने समझाया तो मुझे गेट आउट कहकर फटकार दिया।
6: अजी जानते हैं आप, कहीं से कहला फुसला के अपने मामा की जमीन पे इमारत खड़ी कर रही है।
4: छी छी,
7: एक छोकरी ये सब जोर जबरदस्ती कर रही है और हम मर्द होकर चुपचाप देख रहे हैं।
6: ये सब बड़े लोगों की सहायता के बल पर चल रहा है साहब।
8: गांव के लोग भी तो चंदा इकट्ठा करके उसी को भेंट करते हैं।
6: हर हफ्ते किसी कंपनी की गाड़ी पास के शहर से मुफ्त में दवाएं सप्लाई कर जाती है।
7: इसीलिए तो ये लड़की हम लोगों को तुच्छ मानकर हमारा अपमान करती रहती है।
8: आजकल गांव में हैजे का खतरा है ना, वो जगह जगह जाकर लोगों को इंजेक्शन दवा दी दे आती है।
7: इससे ये साबित करना चाहती है कि हमारा धर्म अर्थ औषधालय बेकार है, असली दवाखाना तो स्वयं उसका है।
6: अजी बढ़िया ही धर्म सेवा करने वाली, हम भी देख हैं जी कब तक चलेगा।
8: आप क्या कर लेंगे श्रीमान?
6: अजी हमारे छोकरे किस दिन काम आएंगे आखिर? उनसे कह दूंगा ऐसा काम करो जिससे कंपनी की उस गाड़ी का आना ही बंद हो जाए।
7: शाबाश, ये हुई काम की बात।
8: देखें दवाओं के बगैर कैसे इलाज करेगी।
9: डॉक्टर साहब
0: क्या हुआ भाई? ये खाओ, ये खून के डब्बे, क्या हुआ?
9: डॉक्टर साहब, मैं गाड़ी का ड्राइवर हूँ, मुझे
0: एक्सीडेंट हो गया। क्या? कंपाउंडर जल्दी आओ।
9: या खुदा, ये किस शैतान का काम है?
10: शहर से दवाएं लेकर कहीं आ रहा था डॉक्टर साहब, गांव से 2-3 मील की दूरी पर ही 4-5 आदमियों ने गाड़ी को घेर लिया और मुझे खूब पीटा।
9: ओ, दवाएं क्या हुई?
10: कावेरी नदी के किनारे की सड़क पर ही ये वारदात हुई थी। सारी दवाएं नदी में फेंक दी। ओफो, उन बदमाशों ने, अकेला आदमी क्या कर सकता था डॉक्टर साहब, उन्होंने मुझे खूब पीटा और फिर चले गए।
9: अब क्या किया जाए डॉक्टर साहब?
0: ऐसा करो, हाँ? पहले इस आदमी के घाव साफ करके दवा लगाओ।
9: अच्छा,
0: बाद में एक आदमी को शहर भेजेंगे।
9: ठीक है,
10: मैं ही चला जाऊंगा डॉक्टर साहब।
0: नहीं भाई, तुम्हें आराम करना है, तुम कल जाओगे।
3: डॉक्टर साहब, एक बात है।
0: बताओ जानम्मा, क्या बात है?
3: कहने के लिए जबान नहीं खुलती, जी घबराता है, क्या कहूँ डॉक्टर अम्मा?
0: घबराने की क्या बात है, बताओ ना।
3: वो उमा जी के घर में,
9: मर्द नायकम जी के घर में, क्या बात है?
3: उनको उल्टी आ गई है, लगता है हैजा है, कोई भी उनके पास जाने को तैयार नहीं है। आपसे विनती करने आदमी भेजा है कि आप एक बार जाकर उन्हें देख आए।
0: कह भेजो, मैं आ रही हूँ।
9: डॉक्टर साहब,
0: कोई बात नहीं है, तुम फिक्र ना करो, अल्लाह बख्श। उनकी खातिर नहीं तो उमा की खातिर उनकी देखभाल करना हमारा फर्ज है। आओ हम सब चलते हैं।
11: डॉक्टर साहब
0: कौन है?
11: डॉक्टर साहब, मेरे बेटे की बुरी हालत है, आप जल्दी चलकर देखिए, बेसुध पड़ा हुआ है, दया कीजिए।
0: आप कौन है? अरे बहनम, मैं तुम आ गई, चलो अच्छा हुआ।
3: डॉक्टर साहब, ये रईस कुमार स्वामी की घर वाली है।
0: क्या?
3: कुमार स्वामी के घर?
11: डॉक्टर साहब, मैं उनकी पत्नी हूँ, मेरा इकलौता बेटा बेहोश पड़ा हुआ है, जान का खतरा है और कोई डॉक्टर नहीं मिला, मैं क्या करूं?
0: शहर ले जा सकती हैं आप तो काफी सुविधा संपन्न लोग हैं, शहर के बड़े अस्पताल में बड़े डॉक्टर के पास इलाज करा सकती हैं।
11: डॉक्टर साहब, वो यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है, मैं खुद दौड़ी आई, जानम्मा से विनती की कि आपको समझाए।
3: डॉक्टर साहब, ये घर से बाहर कभी नहीं निकलती, अपने बेटे को मौत से बचाने के लिए यहाँ आई हैं। डॉक्टर, अभी तो आप मरुद नायकम जी के घर से होकर आई हैं, अब इनके घर भी।
0: पर क्या हम यकीन कर सकते हैं? एक बार पहले इसी तरह कहकर मुझे धोखे में डाला जा चुका है।
3: अब की बार तो अल्लाह बख्श भी साथ चलेगा, मैं तो हूँ ही। डॉक्टर साहब, आप थोड़ा खाना खाकर आइए, तब तक हम सब चलते हैं।
0: नहीं नहीं, अब वो सब खाने वाने की बात छोड़ो, पहले इनके बेटे को बचाना है, चलिए आइए, जल्दी चलिए।
6: डॉक्टर साहब,
0: हाँ हाँ बताइए, बच्चा कहाँ है?
11: उस कमरे।
0: चलिए आइए, उसी कमरे में चलते हैं।
6: आइए डॉक्टर साहब, इधर से
0: चलिए।
11: राजा बेटा, बोलता क्या नहीं, आंखें खोलो बेटा।
0: कंपाउंडर
6: जी, ये लीजिए दवा का बक्सा।
0: लो।
11: उफ।
12: दवा खत्म हो चुकी है, शहर से दवा आनी है।
0: कोई भी

0: दवा बेकार है।
1: डॉक्टर साहब,
2: डॉक्टर साहब,
1: नहीं नहीं नहीं।
0: कंपाउंडर
2: जी,
0: बच्चे का शरीर ठंडा पड़ गया है
2: जी,
0: जान निकले काफी देर हो चुकी है।
3: नहीं,
0: ऐसा करो, इसकी इसकी माँ को तुम कुमार स्वामी साहब, धीरज से काम कीजिए, भगवान ने दिया उसी ने वापस।
1: मुझ पाजी को यही सजा मिलनी चाहिए थी डॉक्टर साहब, मैंने दवा लेके आती हुई गाड़ी को रोक के लुटवाया, दवाओं को नदी में फेंकवाया, उसी की सजा मिल रही है डॉक्टर साहब, मुझे उसी की सजा मिल रही है।
4: इंसान जैसा बोता है वैसा ही काटता है।
0: कंपाउंडर चुप रहो, ये बदतमीजी है।
2: माफी चाहता हूँ डॉक्टर साहब।
0: कुमार स्वामी जी, जो नहीं होना चाहिए था सो गया, आप धैर्य रखिए और अपनी पत्नी को भी संभालिए।
2: चलो
0: चलो, चलो। चलो। चलो। चलो। चलो। चलो। चलो।

0: थोड़ी देर के लिए बाहर चलिए डॉक्टर साहब, आपके दर्शन करने और अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए बहुत से लोग इकट्ठे हुए हैं।
1: अरे भाई, कृतज्ञता तो परमात्मा के प्रति प्रकट करनी चाहिए। आओ चलो, फिर भी देखती हूँ।
0: चलिए चलिए।
2: बाप रे बाप, कितने कुछ फल फूल, कितनी फूल मालाएं, वाह रे वाह।
1: भाइयों, ये सब फिजूल खर्ची है, इसके बदले नया अस्पताल बनवाने के लिए चंदा देते तो अच्छा होता।
0: डॉक्टर साहब, वो देखिए, गांव के बड़े काश्तकार मरुद नायकम जी भी पधार रहे हैं।
1: आइए आइए आइए। अरे आपने ये सब तकलीफ क्यों उठाई?
3: डॉक्टर साहब, आपको अपनी कृतज्ञता प्रकट करने आया हूँ, आपने हम पर बड़ा एहसान किया है।
1: ऐसा मत कहिए, आप बड़े और बुजुर्ग हैं, फिर मेरी सहेली उमा आपकी बहू है, उस नाते भी आपकी सेवा करना मेरा फर्ज है।
3: छूत की बीमारी मालूम हो जाने पर पैसे के लिए भी कोई डॉक्टर पास नहीं फटकेगा। हाँ, आपने मेरी जान बचाई।
1: ये तो डॉक्टर का कर्तव्य है, डॉक्टर बनने के बाद बीमारी से डरकर पीछे हटना कैसे संभव होगा।
3: डॉक्टर साहब, आपको एक खुशखबरी सुनाने आया हूँ, मेरा पोता हुआ है।
1: अच्छा, बहुत बहुत बधाई।
3: उमा रतनगिरी दोनों आए हैं।
1: अच्छा।
3: बच्चे के नामकरण संस्कार पर आपको निमंत्रण देने दोनों ही आ रहे हैं। मैं पहले आ गया हूँ, आपको हमारे घर अवश्य आना होगा।
1: अब आप इतने बड़े आदमी होकर खुद चलकर बुलाने आए हैं तो भला मैं कैसे चल सकती हूँ।
3: आप ये फल फूल ले लीजिए और अवश्य पधारिएगा।

0: कैसे आओ? अरे देर भारती तुम आ गई, मैंने सोचा कोई बहाना बनाकर तुम फिर रुक जाओगी।
1: मुझे सूझा ही नहीं उमा कि क्या उपहार ले आऊं, इसलिए भाई यहां से नहीं उमा।
0: वारी वाह, पालने पर पड़े बच्चे को हवाई जहाज भेंट कर रही हो।
2: आप भी खूब है डॉक्टर भारती। अरे बच्चे को क्या अभी एरोप्लेन में बिठा के उड़ाएंगे हैं?
1: नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरा मतलब था भविष्य में ये होनहार बालक देश विदेश घूमे, ऊंची ऊंची शिक्षा पाए, इसी आशा और अरमान के साथ ये भेंट कर रही हूँ।
3: आइए डॉक्टर अम्मा, भोजन तैयार है, चलिए। हाँ अरे ये एरोप्लेन तो बहुत बढ़िया है।
0: आपका पोता इसमें बैठकर देश विदेश घूमेगा, आसमान पर उड़ेगा।
3: अरे ये आसमान पर उड़ता रहा तो धरती पर कौन रहेगा?
1: धरती पर ही रहेगा, धरती पर रह लेने के बाद ही तो आसमान पर उड़ना सीख सकता है।
3: अच्छा अच्छा, आइए भोजन ठंडा हो रहा है, आइए आइए
1: आइए, चलिए चलिए।
0: भाई तुम्हारे नर्सिंग होम का उद्घाटन कब होगा? सुना है शहर से कोई बड़ा आदमी आने वाला है।
1: मैं उमा इस मामले में तुम तो मेरे विचार जानती हो,
0: फिर भी
1: एक मामूली देहाती आदमी जो मेहनत कश मजदूर है उसके हाथों उद्घाटन होने वाला है,
0: ये तो बड़ी खुशी की बात है।
1: तुमने पूरी बिल्डिंग नहीं देखी अस्पताल की, उमा देखोगी ना तो खुश हो जाओगी।

0: सुनिए, एक मिनट सुनिए डॉक्टर।
1: क्यों, क्या हुआ? तुम घबराए हुए क्यों हो?
0: बड़ा अन्याय हुआ है। आरोग स्वामी ने कुछ गुंडों के साथ लेकर नर्सिंग होम के किवाड़ तोड़ डाले और भीतर।
1: क्या कहा? गजब हो गया। हे
2: भगवान,
1: भारती अकेली चली जा रही है, जालिम राक्षस कहीं उसको भी। मामा जी बचाइए हमारी भारती को।
2: अरे कोई है?

0: भी इमारत के अंदर घुसने की हिम्मत मत करना, तोड़फोड़ की तो बहुत बुरा होगा, खबरदार।
1: बड़ी आई है, हमें डराती है, हजा पीछे हटा।
0: हाँ हाँ, अगर आप किसी ने पत्थर फेंके तो मैं उसका खून पी लूंगी।
1: ए लखो, चलाओ पत्थर।

0: ये सारी शरारत उस बदमाश आरोग्य स्वामी की है।
1: पुलिस ने ऐन मौके पर आकर सब बदमाशों को पकड़ लिया। मरुद नायकम जी ने इस वक्त बड़ी मदद की हमारी।
0: तो है, गांव वालों का प्यार भी तो देखो। डॉक्टर साहब के बारे में तरह तरह के सवालों के जवाब दे देकर थक गए हम लोग जानम।
1: डॉक्टर साहब के लिए इन लोगों के दिलों में कितना गहरा प्यार और आदर है।
0: लगता है उमा जी और डॉक्टर रतन साहब तशरीफ ला रहे हैं। अंदर जाकर डॉक्टर साहब को इत्तला दिलाता हूं।
1: आइए आइए आइए।
2: डॉक्टर साहब कैसी हैं?
1: आराम कर रही है। चलिए अंदर चलिए। आइए आइए आइए।
2: चलो भारती, तुमने खुद ही पहली मरीज बनकर अस्पताल का उद्घाटन कर दिया।
3: क्या किया जाए, अच्छे काम के लिए पहले कुछ भेंट तो करनी ही पड़ती है। ये देखो ना, ये मेरे माथे का घाव पहली भेंट है।
4: तो डॉक्टर भारती, आपने उस वक्त बहुत ही जल्दबाजी की। आपको अकेले वहां जाना ठीक नहीं था।
3: उस वक्त सोचने समझने या रुके रहने का होश कहाँ था? और फिर कुछ सूझा ही नहीं। नर्सिंग होम वाले मेरे सुनहले सपने को कोई बड़ी परपरता से कुचल रहा है। बस यही बात मेरे भीतर आवेग भर गई, इसी से तैश में आ गई मैं।
2: भारती, मेरे ससुर साहब बहुत दुखी हैं कि वो तुम्हें इस पथराव से बचा नहीं सके। तुम्हारे लिए बड़े चिंतित हैं वो।
3: चिंता की कोई बात नहीं, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कल से मेरा काम यही शुरू होगा। तुम मामा जी को समझा देना उमा।
2: आज तुम्हें मरीज के रूप में लोग यहाँ आकर देख लेते हैं, कल से तुम उन लोगों को मरीज के तौर पर देखना शुरू करना। ये आदान प्रदान अच्छा है, ठीक है ना?
4: अच्छा डॉक्टर भारती, अब हम चलते हैं। वो अब हमें मद्रास जाने की तैयारी भी करनी है ना।
3: हाँ। डॉक्टर रतनगिरी, आप जब भी इस गांव में आए, कृपा कर हमारे उमा नर्सिंग होम में पधारने का कष्ट अवश्य करें।
4: जरूर जरूर।
3: और देखिए, चिकित्सा संबंधी नई बातों का परिचय मुझे अवश्य दिया करें।
4: ओह सर्टेनली सर्टेनली। अच्छा, गुड बाय डॉक्टर।
3: गुड बाय डॉक्टर।

0: महसूस रहे हैं?
1: हाँ? नहीं कुछ नहीं, ये एक छोटे से गांव में इतनी लगन और मेहनत के साथ भारती ने कितना बड़ा और बढ़िया काम कर दिखाया है। मैं उसके सामने हार गया हूँ।
0: मैं सब जानती हूँ।
1: क्या जानती हूँ?
0: आप जितना समझते हैं मैं उतनी बेवकूफ नहीं हूँ।
1: क्या कह रही हो तुम?
0: याद रखिए, डॉक्टर उमा डॉक्टर भारती की सहेली है।
1: हाँ, लेकिन ये तो सभी को मालूम है।
0: पर ये बात तो किसी को मालूम नहीं, और भारती ने भी कभी नहीं कहा कि उसकी जगह मैंने ली है और उसकी जिंदगी मैं जी रही हूँ।
1: क्या?
0: हाँ, पहला हक उसी का था।
1: ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई?
0: क्या लाभ होता इससे?
1: माँ,
0: भारती अपने उसूल की पक्की है। लंबा कंटीला रास्ता पार करके उसने स्वयं अपने जीवन की दिशा निश्चित कर ली। वो एक मिसाल, एक आदर्श बन चुकी है। वो अपनी अंतश्चेतना के अनुसार चलने वाली कर्तव्यनिष्ठ महिला है।
1: बड़ी ऊंची बातें हैं ये माँ।
0: ऊंची नहीं, सही बातें हैं ये। जरा सोचिए तो, गाड़ी का रुकना और छूटना उस सिग्नल के इशारे पर निर्भर होता है। हमारा जीवन भी सिग्नल के खंभे जैसा है। ठीक इशारा पाने पर गाड़ी पटरी पर चलती है, गलत इशारा करने पर गाड़ी पटरी से उतर जाती है। इसी तरह कुछ लोग गलत इशारे पर चलते हैं, कुछ सही इशारे पर। क्या किया जा सकता है, अपनी अपनी मजबूरियां हैं।
1: उमा, आज मैं तुमसे भी हार गया हूँ।
0: हार मान बैठना पुरुष का लक्षण नहीं है डॉक्टर साहब। वो भी एक विश्वविख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ के लिए बिल्कुल गलत बात है।
1: सिर्फ एक जगह हार मानना गलत बात नहीं।
0: किस जगह?
1: वो प्रेम की दुनिया में।
0: डॉक्टर साहब, सिर्फ संवेदन और भावना तक ही सीमित ना रहिए, दिल टटोलना भी सीख लीजिए।

कंटीला रास्ता। अभी आप सुन रहे थे इस नाटक का दूसरा एवं अंतिम भाग, नित्यमूर्ति के मूल तमिल नाटक शोध नेत पाते का। यह था हिंदी रूपांतर। रूपांतरकार ए शौर्य राजन, निर्देशक थे वीपी दीक्षित भटुक, और ये केंद्रीय नाटक एकांश दिल्ली की प्रस्तुति थी। अब नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: ये है विविध भारती।
1: उजाले उनकी यादों की। उजाले

0: श्रोताओं नमस्कार, उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। फिल्मी पर्दे पर अनगिनत किरदार नजर आते हैं, जैसे हम याद रखते हैं हीरो को, वैसे ही विलेन को भी नहीं भूल पाते हैं। एक ऐसे ही कलाकार सदाशिव अमरापुरकर, जिन्होंने पर्दे पर विलेन का किरदार निभाकर हमारे दिल में पैदा किया एक खौफ, और दूसरी ओर अपनी कॉमिक अंदाज से ठहाका लगाने पर किया मजबूर। पर फिल्मी पर्दे से दूर कैसा था उनका व्यक्तित्व, पर्दे पर विलेन बनते सदाशिव अमरापुरकर असल जिंदगी में थे कैसे, उनका ये व्यक्तित्व हमारे सामने लाई हैं उनकी बेटी रीमा अमरापुरकर। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में इन दिनों हम सुन रहे हैं जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की यादों के उजाले। बांट रही हैं हमारे साथ उनकी सुपुत्री रीमा अमरापुरकर। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। पिछले सप्ताह हमने इस बातचीत की पहली कड़ी सुनी थी, आइए आज सुनते हैं दूसरा भाग।
1: हम बात कर रहे थे राज से स्वराज तक अमाला लाना का सीरियल, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत की आजादी की कहानी और इतिहास अगर आपको देखना हो तो बहुत महत्वपूर्ण सीरीज। लेकिन इसके साथ साथ जो जिक्र निकला वो श्याम बाबू का निकला, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण रोल मिला था सदाशिव जी को भारत की खोज में, उसके बारे में बताइए।
2: हाँ, वो रोल था महात्मा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले, और वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था जैसे मैंने कहा, क्योंकि महात्मा फुले ये पापा के जो ऐसे कुछ हमारे आइडियल्स होते हैं,
1: बिल्कुल,
2: जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, समझते हैं और उनकी तरह बनना चाहते हैं, तो महात्मा फुले वैसे आइडियल्स में से एक थे। सो शाहू फुले अंबेडकर, ये तीनों नाम महाराष्ट्र में काफी लिए जाते हैं। और ये एक विचारधारा है कि सब इंसान जो है, सब लोग इक्वल है, समान है। और इसकी पहल ज्योतिबा फुले ने की थी, जब उन्होंने स्त्री शिक्षण के लिए काम किया, जब उन्होंने दलितों को काम देने के लिए काम शुरू किया, उनकी एक कंपनी थी, कंस्ट्रक्शन कंपनी, वो शुरू किया, जिसमें हर एक जाति धर्म के इंसान को काम दिया जाएगा, इस तरह से काम होता था। तो ये जो है वो पापा की जो जीवन के प्रति दृष्टि थी उससे बहुत मिलता जुलता ये सब था, तो इसलिए उनके दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये एक रोल वॉज अ ड्रीम रोल फॉर हिम, क्योंकि देखने में तो वो बहुत ज्यादा महात्मा फुले जैसे थे ऐसा मैं नहीं कहूंगी, पर जो आइडियल्स और जिस तरह से श्याम बाबू ने वो भारत एक खोज की स्क्रिप्ट जिस तरह से लिखी गई थी, और श्याम बाबू ने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे कि जाति व्यवस्था किस तरह से इन्हें फेस करना पड़ा, सब कुछ वो जिस तरह से आया था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था पापा के लिए, और उन्होंने बहुत एंजॉय किया, बिकॉज श्याम बाबू के साथ काम करना यही एक बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस हर एक कलाकार जिसने श्याम बाबू के साथ काम किया है वो आपको बता सकते
1: हैं। अपने आप में एक एनसाइक्लोपीडिया।
2: हाँ, वो
1: तो किसी भी विषय का जिक्र करें
2: करेक्ट
1: तो वो पेज खुल जाएगा,
2: करेक्ट,
1: वैसे जैसे आज हम क्लिक करते हैं ना।
2: हाँ हाँ, वैसे वैसे तो ही हिमसेल्फ वाज अ सर्च इंजन, इस तरह से आप कह सकते हैं।
1: yes.
2: क्या होता है किसी भी कलाकार के लिए कि वो खुद की एक तैयारी करता है, राइट? तो महात्मा फुले के बारे में हम बचपन से स्कूल में पढ़ते आते हैं, स्पेशली महाराष्ट्र में तो बहुत ज्यादा पढ़ा जाता है, तो एक सोच होती है अपनी, एक विचार होता है, और फिर बड़े होते हो और स्कूल की किताबों के अलावा भी कुछ पढ़ते हो, तब हमें और ज्ञान मिलता है कि और ये इंसान कैसा था, इसकी रिलेशनशिप अपनी वाइफ के साथ कैसी थी, इसने जो स्त्री शिक्षण के लिए काम किया ये क्यों किया। पापा कहते थे कि मैं मेरी एक सोच लेकर गया था कि महात्मा फुले ऐसे थे, उन्हें ऐसे दिखाना जरूरी है, पर जब श्याम बाबू ने उनका पर्सपेक्टिव एक्सप्लेन किया तो एक बहुत अलग तरीके से महात्मा फुले उन्हें समझ में आए। तब तक के जो महात्मा फुले पापा को समझ में आए थे वो महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के रेफरेंस से समझ में आए थे, और जब भारत एक खोज में पापा ने वो रोल किया और श्याम बाबू ने उन्हें एक्सप्लेन किया कि महात्मा फुले की जगह भारत के

0: इतिहास में, पूरे इतिहास में क्या है। उस समय पापा को ये समझ में आया कि नहीं, ये महात्मा फुले, हम लोग भले ही उनको लिमिट करते हैं महाराष्ट्र तक, पर ही इज अ नेशनल हीरो।
1: एक व्यापक दृष्टिकोण,
0: व्यापक दृष्टिकोण है ऑफकोर्स। और उन्होंने जो मूवमेंट शुरू की है अछूत परंपरा के खिलाफ या स्त्री शिक्षण के लिए, ये आगे जाकर गांधी जी ने, अंबेडकर साहब ने, इन सब ने वो आगे वो लेके गए हैं, पर उसका मुख्य स्रोत महात्मा फुले है। तो ये जब पापा को समझ में आया तब बहुत ही प्राइड वाला वो मोमेंट था कि मैं महात्मा फुले कर रहा हूं और श्याम बाबू के साथ कर रहा हूं। और उस वक्त भारत एक खोज एक ऐसी सीरियल थी, जिन्हें याद होगा कि हर रविवार को लोग बैठे रहते थे कि अभी नेक्स्ट एपिसोड आएगा, और पूरे देश के सबसे बेहतरीन कलाकार उस समय उस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थे।
1: बिल्कुल।
0: और बिकॉज अगेन श्याम बाबू थे, तो इसलिए श्याम बाबू ने एक एक चुन चुन कर कलाकार उसमें लिए हुए थे। तो इट वॉज अ वेरी एनरिचिंग एक्सपीरियंस, ऐसा मैं कहूंगी। जैसे मैंने कहा कि लोकमान्य तिलक का तो वो उनका एक जुनून था कि अभी मैं करके दिखाऊंगा, पर महात्मा फुले का जब उन्होंने कैरेक्टर किया तब और थोड़ा आगे आ चुके थे जिंदगी में, थोड़ी मैच्योरिटी और आ गई थी, और श्याम बाबू के निर्देशन में वो करना बहुत ही सुंदर अनुभव था। और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने लिटरेचर, दलित लिटरेचर जिसे हम कहते हैं मराठी में, वो पढ़ा, उसके बारे में उनकी सेंसिटिविटी है, उनकी जो समझ है वो जिस तरह से डेवलप होती गई, और फिर उसके बाद वो जब सामाजिक कामों में गए तब उन्हें उसका बहुत फायदा हुआ उस रोल का और उस समझ का।

0: बहुत सारे ऐसे लोग हैं बाद की पीढ़ी के जिन्होंने अपने बड़ों से भारतीय खोज की कहानी सुनी है कि ऐसा सीरियल होता था और लोग रुक जाते थे और रविवार का इंतजार किया जाता था, तो बाद की पीढ़ी के लोग इसे ढूंढ कर देखते रहे हैं। बल्कि इस इंटरव्यू के लिए जब मैं वो एपिसोड देख रहा था तो मैंने देखा कि सदाशिव जी की आंखों में एक इंटेंसिटी नजर आती है जब वो अपने संवाद बोल रहे हैं। अलग अलग दृश्यों में जहां उनको खेलने का मौका मिलता है तो हाँ। खेल जाते हैं उस रोल को वो एंजॉय करते हुए नजर आते हैं। क्या कभी कोई ऐसा जिक्र है जहां किसी ने उनसे कहा हो कि तुम्हारी आंखें बहुत बोलती हैं और तुम्हारे अभिनय की बड़ी जंग आंखों से जीतती हैं?
1: एक्चुअली ये इसके लिए हमें फिर से अर्ध सत्य की तरफ जाना पड़ेगा, बिकॉज मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। तब गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जिसका जिक्र है।
1: तो तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है और इसलिए वो कैरेक्टर के लिए तुम एकदम परफेक्ट हो। और आप अगर अर्धसत्य देखेंगे आज भी तो आप देखोगे, आई थिंक वेव्स पर ही है, वेव्स प्लेटफॉर्म पर, तब आप देखोगे कि जिस तरह से आंखों का अभिनय किया है पापा ने, उसके बाद जब भी उन्होंने कमर्शियल फिल्में की उसमें वो इंटेंसिटी नहीं आई है। पर वही इंटेंसिटी आपको राज से स्वराज तक में दिखेगी,
0: बिल्कुल
1: वही इंटेंसिटी आपको डिस्कवरी ऑफ इंडिया में दिखेगी, वही इंटेंसिटी आपको वास्तु पुरुष में दिखेगी। ऐसी कुछ चुनिंदा रोल्स हैं जिनमें वो इंटेंसिटी समझ में आती है, और मेरे ख्याल से ऐसे बहुत कम निर्देशक है जो वो एक्सप्लॉइट कर पाए हैं जो आंखों की उनकी इंटेंसिटी थी। वो
0: अर्धसत्य जब कामयाब हुई और अर्धसत्य में जब हम सदाशिव जी को देखते हैं तो जब उनके दृश्य आते तो एक सिहरन देखने वाले हाँ, को दौड़ जाती है हाँ, मतलब एक ठंडा सा भय महसूस होता है, जबकि कितने कम दृश्य हैं
1: और वो पूरे
0: साढ़े तीन दृश्यों में जो उन्होंने कमाल किया। उसके बाद उनके पास बहुत ज्यादा ऑफर्स आने लगे और उसके बाद की जो कहानी है कि कैसे उनसे कहा गया सेक्रेटरी रख लो वो बताइए।
1: तो इसके लिए मुझे आपको बताना पड़ेगा कि जब अर्धसत्य रिलीज हुई तब क्या हुआ था।
0: हाँ बिल्कुल, यहाँ से ही आगे चलेंगे। हाँ,
1: तो जब अर्धसत्य रिलीज हुई तब मेरे चाचा जी ने केमिस्ट की दुकान खोली थी अहमदनगर में। तो मेरे चाचा जी बहुत मेरे दादाजी की तरह ही बिजनेस माइंडेड और इस तरह से थे, कलाकार। मेरे पापा एक हमारी फैमिली में निकल गए कलाकार और पापा उनको मदद कर रहे थे क्योंकि नया नया दुकान शुरू हुआ था, प्रीमियर था बंबई में अर्धसत्य का। तो पापा ने दादाजी से पूछा, बिकॉज उस वक्त तो ऐसे होता था ना कि पिताजी की परमिशन के बिना आप कहीं नहीं जा सकते। तो उन्होंने पूछा कि मैं जाऊं, वहां पर प्रीमियर है। तो क्योंकि उससे पहले 22 जून 1897 आई हुई थी और वो फिल्म कुछ खास चली नहीं थी, तो दादाजी ने पूछा, अच्छा कितना रोल है तुम्हारा? कहा कुछ है, 3-3.5 सीन है। 3-3.5 सीन के लिए तुम अहमदनगर से उठ के बॉम्बे जाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं जाना, यहाँ पे काम करो, यहाँ पे लोग नहीं है, मदद करो, ऐसा माहौल था उस वक्त घर पर। तो पापा ने हाँ कहा। उस वक्त हमारे यहाँ पर फोन भी नहीं था और हमारे ही हवेली में बाहर की तरफ जो दुकानें थी वो रेंट पे दी हुई थी। हमारे बाजू में एक जो दुकान था मेडिकल शॉप के बाजू में, वो एक स्पोर्ट्स का दुकान था, वहां पर एक फोन था। तो पूरा जो हमारा एरिया था वो उसी फोन पे फोन उसके लिए आते थे। फिल्म रिलीज हुई और प्रीमियर पे रामा शेट्टी तो था नहीं और सबको समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये है कौन, ये बंदा है कौन, ये रहता कहाँ है, क्या करता है। बिकॉज उनका ऐसे नेटवर्क भी नहीं था हिंदी थिएटर में जैसे पहले हुआ करता था लोगों का। तो फिर तेंदुलकर साहब से लोगों ने फोन नंबर लेकर, अहमदनगर में ट्रंक कॉल होते थे उस वक्त, तो वो नंबर लगाकर रुकना पड़ता था, जब कॉल लगेगा तब वो लगेगा इस तरह से। और उस दिन जो वो फोन बजना शुरू हुआ वो दिन भर वो फोन बंद ही नहीं हुआ। अल्टीमेटली शाम को वो शिंदे के जो मालिक थे उन्होंने वो उठाया फोन और बाजू में रख दिया, निकाल के रख दिया, अनहुक कर दिया कि बस अभी नहीं बजना चाहिए फोन। और जब इस तरह से देखा तब दादाजी ने कहा, ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा हुआ है, तो अब तुम जाओ बंबई और देखो क्या हुआ है।
0: अरे
1: उसके बाद फिर हम बंबई आए, बिकॉज उस समय दिवाली के दिन चल रहे थे, तो वो छुट्टियों का मौसम और वो सब करके 83 की बात है ये, हम लोग बंबई आए और जैसे ही हम तो उस वक्त लाल डिब्बे से ट्रैवल करते थे, स्टेट बस से हम लोग उतरे, बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन था वहां पर उतरे, क्योंकि उस वक्त अहमदनगर में फिल्म भी इमीडिएटली रिलीज नहीं होती थी,
0: देर से आती थी,
1: एक डेढ़ साल के बाद वहां फिल्म आती थी। तो हमें तो पता ही नहीं था बॉम्बे में क्या हुआ है। तो हम लोग उतरे और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: वाह वाह।
1: फिर
0: वा,
1: एक सरदार जी ने पापा को कहा कि अरे भाई तुम टेंशन मत लो, चलो चलो चलो चलो, और उन्होंने हमारा सामान उठाया, टैक्सी में डाला हम सबको, वरना हम लोग
0: गिर जाते,
1: ट्रेन से घर जाने वाले लोग थे कि अभी बस से उतरे हैं, ट्रेन पकड़ेंगे घर जाएंगे। नहीं नहीं बैठो तुम टैक्सी में, ये वो करके फिर वो हम लोग गए अंधेरी में किराए का घर जो था वहां पर, पापा पैसे देने लगे टैक्सी के, तो नहीं नहीं नहीं नहीं रामा शेट्टी से पैसे नहीं दे सकता मैं। और हमें समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो क्या रहा है।
0: बिल्कुल, सोचिए कि हम किस जमाने में ये बात कर रहे हैं जबकि फिल्म के प्रीमियर के बाद रीलें चल पड़ती हैं।
1: हाँ,
0: और रातों रात बंदा स्टार बन जाता है और कोने कोने में खबर फैल जाती है, और यहाँ अहमदनगर में पता ही नहीं है कि बंबई में क्या धमाका हो चुका है।
1: वाह। उस वक्त फिर ऐसा हुआ था कि हमारे घर पे जब हम पहुंचे तो वहां पर कस किराए का घर था, पर लोगों को पता चल गया था कि यहाँ पर ये रहते हैं। अगेन हमारे जो नेबर थे उनके पास फोन था तो उनका फोन बजता था, हमारे घर पे फोन ही नहीं था, हमारे घर पे उस वक्त टीवी भी नहीं था एक्चुअली। इसलिए फिर उन्होंने अल्टीमेटली हमें कहा, पवार साहब करके थे, कि भाई अभी तुम एक फोन ले लो।
0: इतने फोन आने लगे।
1: मेरे ख्याल से उस समय जो टेलीफोन कंपनी थी उसमें नंबर लगाना पड़ता था, 6-7 महीना, 1-1 साल फोन आने में लग जाता था, पर बिकॉज रामा शेट्टी के लिए वो था इसलिए रातों रात हमारे घर पे उस वक्त फोन आ गया था। मुझे याद है कि अल्टीमेटली तेंदुलकर साहब ने ही पापा से कहा था कि देखो सदाशिव, अभी तुम इतने ये हो चुके हो कि तुम अभी खुद बात नहीं कर सकते प्रोड्यूसर्स से, यू नीड अ मैनेजर। और फिर उन्होंने एक सेक्रेटरी उनको रिकमेंड किया था और फिर पापा ने वो सेक्रेटरी रखा था। और मुझे याद है एक हफ्ते में उस समय पापा ने 200 फिल्में साइन की थी।
0: अरे बाप रे, इतना आदमी एक जीवन काल में करता है
1: एक्चुअली। तो एक हफ्ते में 200 फिल्में उन्होंने साइन करी थी, जो आगे 8-10 साल तक उनका काम उसी में चल रहा था।
0: गजब। मैंने ये भी बात पढ़ी है कि चूंकि थिएटर की दुनिया से आए थे और एक सीधे साधे व्यक्ति थे, तो उन्हें मुंबई के फिल्म जगत की

0: तिकड़म नहीं पता थी कि कैसे अपना रेट तय करना है, कितने पैसे मांगने हैं। और वो शुरुआती जो दौर था वो इसी तरह का दौर था जब उन्हें खुद अपना ही मोल नहीं पता था।
1: मैं तो कहती हूँ पापा को अंत तक खुद का मोल नहीं पता था। मैं ये इसलिए कहती हूँ क्योंकि वो बिल्कुल अंदर बाहर से एक कलाकार थे। जैसा मैंने पहले कहा था कि भोला सांब जो मराठी में कहा जाता है कि जिसे दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं होता, वैसी ही उनकी ये थी। उस वक्त भी ही यूज टू डिपेंड ऑन हिज सेक्रेटरी कि भाई तू डिसाइड कर कितना लेना है, किससे कितना लेना है। पर उसमें भी उनका ये होता था कि भाई ये रोल के लिए एक पैसा भी नहीं मिला फिर भी मैं ये करूंगा। हालांकि ही वॉज अ बिग स्टार उस वक्त, लेकिन वो आखिर तक उनका था। कुछ लोगों के लिए, कुछ प्रोग्राम्स के लिए वो कहते थे कि मैं अवेलेबल हूं, तुम बताओ तुम्हें कब की डेट चाहिए, फिर भले ही वहां पर काम अगर मेरा छूटता है दूसरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वो बिल्कुल कलाकार थे और एंड तक उन्होंने कभी पैसों के मामले में और इसमें ध्यान ही नहीं दिया। जो पैसा आना शुरू हुआ तो लकीली मम्मी को उसका सेंस था कि इन्वेस्टमेंट कैसी करनी है, मैनेजमेंट कैसी करनी है पैसों की, इसलिए उन्होंने वो किया, इसलिए आज तक हम लोग सही सलामत है। वरना पापा को उनका खुद का भी मोल पता नहीं था। मुझे नहीं लगता टिल द एंड उन्होंने खुद की जो वैल्यूएशन की थी, बहुत ज्यादा मांग सकते थे पर उन्होंने मांगा नहीं कभी, बिकॉज पैसा ये उनके लिए प्रायोरिटी ही नहीं थी। उनके लिए प्रायोरिटी थी कि मैं काम करता रहूं, मैं एक्टिंग करता रहूं, मैं लोगों से मिलता रहूं, मैं लोगों के लिए कुछ करता रहूं। तो टेक्निकली क्या था, बिकॉज पापा ने फिल्म इंडस्ट्री को घर से बाहर रखा हुआ था, हमारे घर पे बहुत ज्यादा फिल्मी लोग नहीं आते थे, तो इसलिए उनकी उस वक्त क्या प्रोसेस थी, वो रेट किस तरह से डिसाइड होता था, फिल्म की फीस क्या डिसाइड होती थी, ये प्रोसेस के बारे में मैं आपको नहीं बता पाऊंगी। पर जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम करने लगी तब मुझे समझ में आया कि पापा ने तो खुद को बहुत अंडर वैल्यू कर रखा है।
0: अरे सत्य की बात, जब वो बिजी हो रहे थे लगातार तो जाहिर है कि वो एक थिएटर की धारा पीछे छूटती चली जा रही थी। जाहिर है कि इस बात की एक एक तकलीफ, एक एक खालीपन उनके मन में रहा होगा। उसका कभी उन्होंने जिक्र किया कि कैसे थिएटर का हाथ छूटता जा रहा है?
1: हाँ, पर उनका थिएटर का हाथ भले ही दूर गया हो उनसे पर छूटा कभी नहीं था।
0: हाँ हाँ
1: ये मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि उनके दोस्त जिन लोगों के साथ उनकी उठन बैठन होती थी वो सारे या तो थिएटर के होते थे या तो समाज सेवक होते थे। तो उनका जो स्ट्रक्चर था, जिस तरह से वो बने हुए थे, उसमें ही थिएटर था। तो उनके जो कॉलेज के दौरान जिन लोगों के साथ वो थिएटर करते थे, जिन लोगों के साथ रिहर्सल्स करते थे, उनका जो ग्रुप था वो उनका ग्रुप आखिर तक था। तो इसलिए थिएटर कभी उनसे छूटा नहीं था एक्चुअली। और उन्होंने थिएटर किया नहीं किया ऐसी भी बात नहीं है, उन्होंने एक प्ले किया था अकस्मात मीना कुलकर्णी के साथ जो सुपर हिट था, और ये मैं बात कर रही हूँ 91-92 की,
0: जब वो बहुत बड़े स्टार
1: बहुत बड़े स्टार थे, सड़क से थोड़ा सा ही पहले, तो या आफ्टर सड़क आई थिंक। तो उस वक्त भी उन्होंने वो प्ले किया हुआ था बिकॉज वो कैरेक्टर ऐसा था कि इट नीडेड अ परफॉर्मेंस एंड इट वॉज चैलेंजिंग। तो अगर चैलेंजिंग है तो वो करने के लिए तैयार थे, क्योंकि क्या होता है एक बार आप स्टार बन जाते हो तो थिएटर वाले हो या फिल्म वाले हो, ये आपका स्टारडम एनकैश करने के लिए ही ज्यादा आपके पास आते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और वैसे ही रोल आपको ऑफर किए जाते हैं। काफी सारे कलाकारों के साथ ये ट्रेजेडी हुई है, पापा भी उससे छूटे नहीं हैं। पर उन्होंने वो प्ले किया था क्योंकि उनके जो दोस्त थे सुरेश चिखले, उन्होंने वो लिखा हुआ प्ले था, और वो प्ले बहुत ज्यादा चला। उसके लगभग आई थिंक 1.5 साल उन्होंने उसके शोज किए। पर उस वक्त थिएटर का परफॉर्मेंस या फिल्म के शूटिंग्स इतने इराटिक हुआ करते थे कि एक डेट देना और वो स्टिक करना, जैसे अभी होता है कि जो मराठी कलाकार थिएटर करते हैं वो वीकेंड्स रख देते हैं कि वीकेंड्स पे मेरे शोज होंगे और मंडे टू फ्राइडे मैं काम करूंगा, राइट? सो वैसे उस समय एक्टर्स के पास ये सहूलियत नहीं,
0: तब उतनी सिस्टमैटिक इंडस्ट्री नहीं,
1: बिल्कुल ही नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। तो इसलिए उनका वो छूटा। पर बाद में जब उन्होंने धीरे धीरे काम कम करते गए वो, तब उन्होंने एक प्ले किया था जैसा तैसा विठोबा, विच वॉज अ वन मैन शो।
0: ओके, सोलो था।
1: सोलो था और पूरे 2 घंटे पापा अकेले स्टेज पर।
0: क्या बात है, क्या बात
1: ये
0: है?
1: 2003-04 की बात कह रही
0: हूँ। खुद ही डायरेक्ट किया था या किसी
1: नहीं,
0: और
1: नहीं,
0: को दिया?
1: चंद्रकांत कुलकर्णी करके हमारे मराठी के बहुत बड़े दिग्दर्शक हैं, उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ था ये प्ले। और लिखा था आनंद विनायक जातेगावकर करके, बहुत बड़े फिलोसॉफिकल राइटर होकर गए हैं, उन्होंने लिखा हुआ था ये प्ले। सो तुकाराम महाराज जो संत है उनके अभंगों के ऊपर बेस्ड ये प्ले है। ये इसका ऑडियो ट्रैक है, बिकॉज ये सुनने वाला ही प्ले है।
0: बिल्कुल, ये भी एक माइलस्टोन है कि वो करते चले गए जहां तक उनका बस था।
1: अगर कुछ नया करने के लिए मिल रहा है तो उन्हें वो करना होता था। तो इसलिए आई थिंक जैसा तैसा विठोबा वाज अ ब्रिलियंट अटेम्प्ट दैट ही डिड। उसके बाद वो थिएटर फिर से शुरू करना चाहते थे, हालांकि जब उनकी तबीयत बिगड़ गई उस वक्त भी वो एक प्ले निर्देशित और एक्ट करने की प्रोसेस में थे। और तब वो उनका रिहर्सल्स और ये शुरू हो ही रहे थे, पर उनकी तबीयत उनकी साथ नहीं दी, इसलिए वो नहीं हो पाया।
0: जी, जिस समय वो व्यस्त होते चले जा रहे थे उस समय जाहिर है कि उनका एक रूटीन होता होगा और घर पर थोड़ा कम समय देते होंगे, तो बच्चों ने कितना मिस किया उनको?
1: बहुत। मैं तो खैर बहुत ही छोटी थी
0: जी,
1: लेकिन मेरी बहनों ने काफी मिस किया।
0: वो बड़ी थी और
1: वो बड़ी थी, समझदार थी। क्योंकि मैं छोटी थी इसलिए मुझे ऐसे कुछ अलग लगता नहीं था, बिकॉज पापा बिजी ही थे। तो आप कहते हो कि रूटीन है, तो ये फिल्म एक्टर्स का ना रूटीन ही नहीं होता है।
0: बिल्कुल
1: हाँ, क्योंकि जो शिफ्ट लगती है, शूटिंग की जो शिफ्ट होती है, उस हिसाब से उन्हें जाना पड़ता है। और जैसा मैंने कहा कि अभी कलाकारों के पास ये सहूलियत है कि एक टाइम पे वो एक ही फिल्म करेंगे एक समय पे, वैसे उस वक्त नहीं था कि दो तीन दिन एक हफ्ता किसी एक फिल्म का शूटिंग कर लिया, फिर बाद में दूसरी किसी फिल्म का शूटिंग कर लिया। तो जैसे शूटिंग लगते थे, जैसे डेट्स दी जाती थी वैसे देते थे, क्योंकि पापा हो लिए, गोविंदा हो लिए, ये जो सब सारे कलाकार थे, इनकी डेट्स तीन तीन चार चार साल तक बुक्ड रहती थी।
0: बिल्कुल,
1: तो इसलिए उनका कोई रूटीन नहीं था एक्चुअली, लेकिन एक ही रूटीन था कि पापा होंगे तो पापा है, घर पर है, हमसे बात करेंगे, हम सब बैठ के साथ में खाना खाएंगे, उनके दोस्त आएंगे, उनके साथ टाइम पास होगा, ये रूटीन एक डेफिनेटली होता था। और जब वो अनिल शर्मा जी की फिल्में कर रहे थे तब तो राजस्थान और कश्मीर में महीना महीना शेड्यूल लगते थे, तो जब पापा आने वाले हो तो हम बच्चों को कैसे पता चलता था, बिकॉज उनकी जो फेवरेट मिठाइयां होती थी ना वो मम्मी बनाती थी।
0: अच्छा, तो उससे अंदर
1: था शायद पापा आजकल में आने वाले।
0: वाह वाह वाह वाह, क्या बात है।
1: तो इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। और हमारा रूटीन लगभग मम्मी के साथ ही रहता था, मम्मी ही डिसाइड करती थी हम कैसे पढ़ेंगे, हम कहाँ ट्यूशन के लिए जाएंगे, हम क्या कपड़े पहनेंगे, हम क्या करेंगे, बिकॉज वो ही पूरा वक्त होती थी हमारे साथ। पापा तो बाहर गांव होते थे और इतने बिजी होते थे कि ही वॉज नेवर अ पार्ट ऑफ आवर डिसीजन मेकिंग, हमने जो निर्णय लिए उसमें वो कभी नहीं थे। पर मैं इस बारे में बहुत लकी समझती हूँ खुद को कि जैसे मैं कॉलेज गई 2001 के आसपास, तब पापा ने काम बहुत कम कर दिया था, बिकॉज उन्हें ही हैड बिकम बोर्ड ऑफ डूइंग द सेम थिंग्स, कि एक विलन है या एक कॉमेडियन है, वही वही काम करके उन्हें ऐसा हो गया था यार अभी नहीं करना है बस। और जैसा मैंने कहा कि पैसा और बिजनेस और इन्वेस्टमेंट, इसमें उनका कभी ध्यान नहीं था, तो उन्होंने एक दिन ये डिसीजन ले लिया और मम्मी को बोल दिया कि देख जितना मैंने कमाया है उसमें तुम और मैं मरने तक तो खा पी के सुखी रह सकते हैं, अभी और कमाने की जरूरत है क्या? क्योंकि मेरी माँ ऐसी है कि उन्होंने उनको पूजा ही था प्रैक्टिकली। तो उन्होंने कहा अगर आपको नहीं करना है तो आप मत कीजिए, आपको जो दिल में आता है वो कीजिए। और उस तरह से उन्होंने काम छोड़ दिया था, प्रैक्टिकली छोड़ दिया था कि अब अगर मुझे इस तरह के रोल्स आते हैं तो मैं नहीं करूंगा। और उन्होंने फिर उनकी किताबें पढ़ना, फिर अहमदनगर जाना, पूना जाना, दोस्तों के साथ मिलना बैठना, उस समय सैटेलाइट टेलीविजन आ गया था तो इंटरनेशनल फिल्में घर पर बैठकर देख सकते थे, तो फिल्में देखना, नेशनल फिल्म आर्काइव में जाकर वो एक एक हफ्ते के लिए, उनका एक छोटा स्क्रीनिंग रूम है पूना में, वो बुक करके रखते थे।
2: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। शाम के 4:30 हुए हैं। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे खेती बाड़ी।

0: डेरा है और आपाना जी का ढाव डांडा है, ब्या ने बचावणो है और ब्या को ध्यान राखणो है। भाया अबार ई जून रे महीना में एक किसाना रो अभियान भी चाले, बता सको किस अभियान? वो अभियान है खेत बचाओ अभियान। चाले आपा आज इर माते ही हतई कर ला कि भाई वो खेत बचाओ अभियान है काई। खेत बचाओ अभियान मृदा स्वास्थ्य की रक्षा, रासायनिक उर्वरका को अत्यधिक उपयोग को करण और प्राकृतिक खेती ने है जी को बढ़ावा देवण वास्ते चलायो जा रियो है। और इमाइन ई अभियान है काई, ई अभियान को है जी को मुख्य संदेश है मिट्टी बचाओ, खेती बचाओ और किसान बचाओ के विचार पर आधारित है। इरो मुख्य उद्देश्य है कि भाई लक्ष्य कृषि ने जिको अधिक टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल बनानो है। ई अभियान को उद्देश्य है मृदा ने है जिको यानी कि मिट्टी ने जिको स्वास्थ्य में सुधार करना, यानी कि आपा जिको जहर छड़का बयान है जिको उपयोग है जिको कम करनो, जिसु आपा की जिकी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता है जिकी बनी रहे। आपा का ही करा के देखार अंधा धुंध पड़ोसी स्प्रे करियो तो आप ही देख कर स्प्रे करदा, पर अरे भाई आपा के खेत में स्प्रे की जरूरत है या कोनी, पण बस पड़ोसी करियो तो आप ही करा। इर वास्ते जहर है जिको कम आपने काम में लेनो, जिसु आपा की जिकी जमी है बिरी उपजाऊ क्षमता बनी रहे। इर अलावा इरो उद्देश्य है प्राकृतिक और जैविक खेती, यानी कि किसाना ने है जिको जैविक खेती की ओर आकर्षित करनो और प्राकृतिक खेती का तरीका सिखावना, जिसु है आपा की जिकी मिट्टी है, पानी है, हवा है, बा सब शुद्ध रहे और जिको धान उपजे वो भी निरोगो रहे। मृदा परीक्षण यानी कि किसान ने है जिको मिट्टी की जांच आधारित ही है जिको जांच कर और बिर आधार पर ही है जिको सही उपयोग करनो और जागरूक करनो कि भाई आपा के खेत के मायने है जिको किसा पोषक तत्व है और किसा पोषक तत्व की कमी है। बिर अनुसार ही आपाने है जिको खेत के मायने बे जिको खाद है बे है जिको छिड़काव है वो आपा ने करनो छे। यूं नहीं भाई पड़ोसी के आ है तो पड़ोसी की खेत की मिट्टी अलग है, आपा के खेत की मिट्टी अलग है, खाली दिखण में एक सरी सी है, पर ब्या मायने किसा पोषक तत्व है, किसा कम है, किसी फसल ज़्यादा माने, किसी कम माने, आ सब आपाने जानकारी है जिको मिट्टी की आपा जाँच करावा जने ही आपाने ध्यान पड़ी। इर अलावा सरकारी योजनाओं का लाभ यानी कि खेत बचाओ अभियान के मायने है जिको किसान ने है जिको पीएम किसान जिकी बा मिलिया करे बा और केसीसी और प्रधानमंत्री फसल बीमा और पीएम किसान सम्मान निधि योजना ज्ञान की सरकारी योजनाओं है जिको जोड़नो। भी उनका ये है कि किसाना ने है जिको सरकार की जितनी भी योजनाएं मिले आयोड़ी है ब्या को फायदो है जिको ज़्यादा से ज़्यादा मिले। इर अलावा तकनीकी प्रशिक्षण यानी कि कृषि के मायने खेती के मायने सरकारी अधिकारी है जिको गांव में दौरो कर घूम रहे ब्याने किसाना ने जिको जल संरक्षण, उन्नत फसल चयन और नकली कीटनाशकों की पहचान करनो को है जिको ट्रेनिंग दिया करे। इर अलावा बीजोपचार है, हरी खाद है, उन्नत बीजों का चयन है, प्राकृतिक खेती है, मृदा परीक्षण है यहाँ की और जल परीक्षण यहाँ को सब आपने है जिको बे बताया करे कि भाई ई तरीकाओं है जिको आपा करा तो आपने फायदो हुए और किसाना के तो भाई फायदो करनो ही चाहिए क्योंकि ए है जिको अन्न उपजावे और यहाँ के ला रही है जिको आपा का सबका गाजा बाजा है, तो किसाना ने जितो फायदो हो बितो है जिको देश ने भी फायदो हो। अब है जिको के भाई मारा किसान भाई उड़ीक राखे है कि भाई राकेश भाई आया है काई हतई करे है काई कोई दूसरा हूँ हतई करी कौन करी, तो भाई आज हर डोगण का भोरलाल जी हूँ जिकी मैं बंतल करी बाय था तय करूँ पूगती लो सुनो। भैया आज देखो एक भाई मिलिया है ब्यांको करे तावड़ी राम राम सा
1: राम राम सा राम राम सा
0: काई नाम है सर किसो गांव है
1: भोरलाल है सर नाम गांव शाडोकन है।
0: हाँ तो भोरलाल जी आपांगे कितना बीघा जमीन है
1: 20 बीघा है सर
0: 20 बीघा एक ही टुकड़ो है
1: एक ही सर।
0: तो अबार बारानी में आपांगे काई भाई उड़ो
1: गमार है सर
0: गमार भाई यानी कितो टाइम हुयो
1: 15 जून को भाई
0: 15 जून को लगभग है जी का हो गया आपांगे 13-14 दिन हो गया
1: 13-14
0: हाँ तो भाई हूँ पहले काई तैयारी करी
1: पहले तो तैयार कढ़ाई खेत ने खड़ाई पच गुवार भाई गुवार रोड उगो बस पाचो और भाई गुवार
0: अच्छा, दो बार भाई
1: दो बार भाई
0: तो भाईओ भी दिन बरसात होगी यू
1: 3 दिन बाद में
0: 3 दिन बाद अबार क्या ने
1: अबार ठीक है काल जा रहे हो 3-3 चढ़ पान हुआ है ठीक है
0: अबार पीरू वालों में हुई हो
1: કોની હશે?
0: પીરુ વાળો કોની, ખાલી નાગોર માં?
1: નાગોર માં છાંટી કોની,
0: છાંટી કોની. ભવરજી.

उपलब्ध हो जावे, दूध, अंडा, मछली, शहद, ये सब है जिको किसान भाई ने मिल जावे तो वो है जिको यहाँ को मुनाफो भी कमा सके और जीम भी सके। दूसरो लागत में कमी, एक गतिविधि को जिको आपां के बच्चोड़ो कचरो है जान फसलों को अवशेष है, पशुओं को गोबर है, वह है जिको दूसरा घटक के वास्ते यानी उन इनपुट यानी कि दूसरा के वास्ते खाद और चारा के रूप में काम करिया करे। सतत आय, इनमें केवल एक फसल पर निर्भर नहीं रहना पड़े बल्कि खेती के सागे सागे पशु और मछली पालन ज्ञान का स्रोत है जिको साल भर तक है जिको कमाई हो। इसके अलावा आय में स्थिरता, अगर किसी कारणवश आपां के जिको फसल है जिको खराब होगी तो आपां के है जिको पशु पालन मछली पालन और अन्य जिका आपां काम धंधा करा बेहू आप मुनाफो कमार और वो है जिको पूर्ति तो कोनी हुए पर आपा को जिको काम है वो चाल सके। पर्यावरण ने सुरक्षा, रासायनिक उर्वरका को उपयोग कम कर और आपा है जिको उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन ने उपयोग कर संतुलित रूप उपयोग कर आपा है जिको मुनाफो कमा सका। मिट्टी की उर्वरता, जैविक और प्राकृतिक खाद को प्रयोग हुए जिको खेती की मिट्टी है जिको सालों साल तक उपजाऊ बनी रहे और बीमें आप जे गोबर खाद घाला तो बीरो तो कहणो ही कही यानी कि सोना पर सुहागो है। और आपां के जिका पेड़ा का पत्ता है बे सब है जिको के आपां घर के मायने ढाव डांडा रखा तो भाड़ा के मायने जिको वो खाडो खोद और बीर मायने आपां जे वर्मी कंपोस्ट थोड़ा डाल वो करदा ना तो वो आपां के जैविक खाद को तो कहणो ही कही। इर अलावा इर मायने प्रमुख घटक किसा किसा है फसल उत्पादन के मायने, पहलो है कि भाई फसल उत्पादन मायने है कि मुख्य फसल है जिको दलहन या तिलन, इर मायने है जिको मौसमी सब्जियां हैं मुख्य अनाज है वो भी आपा काम में ले सका। पशुपालन में है जिको गाय भैंस बकरी भेड़ सुअर ए पालन भी कर और आपा है जिको छोको मुनाफो कमा सका। मत्स्य पालन यानी तालाब में है जिको विभिन्न प्रकार की मछलियां हैं पाड़ और आपा है जिको बयाने बेच और मुनाफो कमा सका। मुर्गी पालन और बत्तख पालन ए है जिको के ईमाने फायदो डबल या नो के आपा है जिको के छोटो मोटो तालाब बनार भी मैं मछलियां भी छोड़ दा और बीरे ऊपर है जिको के लकड़ियां को लगार टीन शेड को बनार भी मैं आपा मुर्गी और बत्तखा राखा तो ब्यां की जिकी भीट है वह है जिको तालाब के मायने गिरी और जिकी मछलियां हैं ब्यां के भोजन भी हो जाए और भोजन थोड़ो जिको आपा गोबर है वो भी आपा डालना तो भाई मछलियां वास्ते है जिको भोजन को काम हो जावे। तो भी देखो कि आपा के मुर्गी पालन भी हो गयो बत्तख पालन भी हो गयो और मछली पालन भी हो गयो। इर अलावा आपा है जिको मधुमक्खी पालन भी कर सका, रेशम का कीट पालन भी कर सका, मशरूम उत्पादन भी कर सका, वर्मी कंपोस्ट भी आपा कर सका। तो देखो भैया कितो धीरे धीरे धीरे धीरे एक काम के सागे आपा इतना काम कर सका। समेकित कृषि प्रणाली काम क्या करे आ प्रणाली है जिको चक्रीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांत पर आधारित है यानी कि जट एक गतिविधि है जिको दूसरा के पूरक यानी एक दूसरा के ऊपर निर्भर रिया करे। इन मायने खाद की आपूर्ति, पशुओं के गोबर है जिको वर्मी कंपोस्ट बना सका, बायोगैस बना सका और इरो उपयोग है जिको खेती में खाद के रूप में भी आपा कर सका। चारा की बचत, फसलों का अवशेष है या कचरो है पुआल है यहाँ को उपयोग है जिको पशुओं के चारा और मशरूम उत्पादन में भी आपा कर सका। मछली पालन, मुर्गियां बत्तख रबार आप बात करी भी यहाँ बीट और गोबर गायों को गोबर है भी हुए जिको कुछ हिस्सों आप मछलियां के प्राकृतिक भोजन के रूप में भी काम आया करे। जल संरक्षण, तालाबा में जिको संचित वर्षा को जल है वो आपा है जिको गर्मी के मायने आपा कोई सिंचाई के रूप में भी आपा कर सका। तो देखो भाई छोटी सी आपा थोड़ो ध्यान रखा तो आपा मुनाफो ही मुनाफो कमा सका। अब हमारे किसान भाई उड़ीक रखे कि भाई राकेश भाई आया है राज कई लाया है तो थांग वास्ते ले रहा हूँ ओ भजन।

अभी आप सुन रहे थे खेती बाड़ी FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। शाम के 5 बजे हैं। श्रोताओं लीजिए सुनिए कार्यक्रम युवाणी।

मुस्कानों की रोशनी से हर राह जगमगाए, सपनों को पंख मिले, हर युवा आगे बढ़ जाए। उम्मीदों की लौ कभी दिल से कम ना होने देना, हर नया सफर जीवन में नई खुशियां ले आए। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी और मैं हूं आपकी अपनी आरजे दोस्त नेहा नारायण सोनी। दोस्तों, हर नई सुबह अपने साथ लेकर आती है नई उम्मीदें, नए सपने और कुछ नया सीखने का अवसर। जिंदगी में, जी हाँ दोस्तों, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ मंजिल नहीं बल्कि सही सोच, आत्मविश्वास और निरंतर प्रयास भी उतना ही जरूरी है।

युवाओं की ऊर्जा, उनके विचार और उनका उत्साह ही हमारे देश के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, अब बात करेंगे सिंगल यूज प्लास्टिक का न करें उपयोग। जी हाँ दोस्तों, सिंगल यूज प्लास्टिक यानी ऐसा प्लास्टिक जिसे केवल एक बार ही इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है, जैसे प्लास्टिक की थैलियाँ, कप, प्लेट, स्ट्रॉ, बोतलें और चम्मच। ये प्लास्टिक आसानी से नष्ट नहीं होता और वर्षों तक पर्यावरण में बना रहता है। इससे मिट्टी, नदियाँ, समुद्र और वन्य जीवों को गंभीर नुकसान पहुँचता है। दोस्तों, आज प्लास्टिक प्रदूषण पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है। कई बार जानवर प्लास्टिक को भोजन समझकर खा लेते हैं, जिससे उनकी मृत्यु तक हो जाती है। वहीं प्लास्टिक जलाने से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण बढ़ाता है और हमारे स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव डालता है। दोस्तों, इस टॉपिक पर हम हमारी बात जारी रखेंगे, लेकिन आइए सुनते हैं उससे पहले ये गाना।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: दोस्तों, इस गाने से पहले हम बात कर रहे थे कि सिंगल यूज प्लास्टिक, यानी एक ऐसा प्लास्टिक जिसे केवल एक बार ही इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है, जिससे आजकल बेहद ज़्यादा प्लास्टिक प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। इस समस्या का समाधान हमारे छोटे छोटे प्रयासों में छिपा है। दोस्तों, बाजार जाते समय कपड़े का या जूट का थैला साथ रखें। प्लास्टिक की बोतलों और डिस्पोजल बर्तनों की जगह स्टील, कांच या अन्य पुनः उपयोग किए जा सकने वाले सामान का इस्तेमाल करें। किसी भी कार्यक्रम या समारोह में पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को अपनाएं। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे और दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक बनाएंगे। स्वच्छ और हरित पर्यावरण की स्वस्थ जीवन ही हमारी पहचान है। दोस्तों, अब बात करेंगे पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली, यानी कि सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के बारे में। दोस्तों, आज के समय में पर्यावरण की रक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है। इसके लिए हमने सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, यानी कि एक ऐसी जीवन शैली अपनानी चाहिए जिससे प्रकृति को हम कम से कम नुकसान पहुंचाएं और आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधन सुरक्षित रखें। दोस्तों, पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाने की शुरुआत छोटे छोटे कदमों से ही की जा सकती है। सबसे पहले बिजली और पानी का सोच समझकर उपयोग करें। कमरे से निकलते समय पंखे, लाइट और अन्य बिजली के उपकरण बंद कर दें। पानी की एक एक बूंद बचाने भी प्रकृति की सेवा है। सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग कम करें और उसकी जगह कपड़े या जूट के थैले, स्टील की बोतलें तथा पुनः उपयोग किए जा सकने वाले सामान को अपनाएं। कचरे को गीले और सूखे रूप में अलग अलग रखें ताकि उसका सही तरीके से निपटान और पुनर्चक्रण हो सके। जहां संभव हो छोटी दूरी के लिए पैदल चलें या साइकिल का उपयोग करें। इससे ईंधन की बचत होगी और वायु प्रदूषण भी कम होगा। अपने घर या आसपास पेड़ पौधे लगाएं और उनकी देखभाल करें। स्थानीय और मौसमी फल सब्जियों का उपयोग करने से भी पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, इसके बारे में मैं और जानकारी आपको दूंगी, लेकिन आइए सुनते हैं इससे पहले ये गाना।

श्रोताओं, प्रत्येक गुरुवार को युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत होता है ईमेल पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। अपनी फरमाइश भेजने के लिए हमें ईमेल कीजिए हमारी ईमेल आईडी youthexpressnagore@gmail.com पर। इसमें आप लिखिए अपनी पसंद की फिल्म का नाम, गाने के बोल, आपका नाम, आपके शहर या गांव का नाम और भेज दीजिए हमारे ईमेल आईडी पर youthexpressnagore@gmail.com पर। और सुनिए अपने पसंदीदा गीत।

दोस्तों, इस गाने से पहले हम बात कर रहे थे सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के बारे में, यानी कि पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली के बारे में। तो पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाने की शुरुआत हम छोटे छोटे कदमों से कर सकते हैं दोस्तों, जैसे कि बिजली और पानी को सोच समझ उपयोग करना, कमरे से निकलते समय पंखे, लाइट और अन्य बिजली के उपकरण बंद कर दे, पानी की एक एक बूंद बचाना भी प्रकृति की सेवा है।

दोस्तों, सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें। जहां संभव हो छोटी दूरी के लिए भी पैदल चलें या साइकिल का उपयोग करें। इससे ईंधन की बचत होगी और वायु प्रदूषण भी कम होगा। अपने घर या आसपास पेड़ पौधे लगाएं और उनकी देखभाल करें। स्थानीय और मौसमी फल सब्जियों का उपयोग करना भी पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। युवाओं की भूमिका इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण है। यदि हर युवा अपने दैनिक जीवन में पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार व्यवहार अपनाए तो समाज में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। याद रखिए, प्रकृति हमारी जरूरतों को पूरा कर सकती है, लेकिन हमारे लालच को नहीं। इसलिए आज से ही पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाएं और धरती को स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित बनाने में अपना योगदान दें। दोस्तों, अब बात करेंगे पब्लिक स्पीकिंग यानी कि स्टेज का डर हम दूर कैसे कर सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि काफ़ी लोगों को पब्लिक स्पीकिंग यानी कि स्टेज पर बोलना या 4-10 लोगों के सामने बात करने में बेहद हिचकिचाहट या डर महसूस होता है। इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए हम क्या क्या टिप्स अपना सकते हैं या हम क्या क्या तरीके अपना सकते हैं, तो ये मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहला है कि अच्छी तैयारी करें। जिस विषय पर बोलना है उसकी पूरी तरह तैयारी करें। जितनी अच्छी तैयारी होगी उतना ही आत्मविश्वास और घबराहट कम होगी। दूसरा है, छोटी शुरुआत करें। पहले परिवार, दोस्तों या आईने के सामने बोलने का अभ्यास करें। धीरे धीरे छोटे समूह में बोलें, फिर बड़े मंच पर जाने का प्रयास करें। इससे जुड़े और भी कई सारे टिप्स मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक और सुनते हैं ये गाना।

0: आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से सुनिए फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश प्रत्येक गुरुवार और प्रत्येक शनिवार को रात 8 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक गुरुवार को दिन में 12 बजे से दिन के 1 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 015-82-240-168। वैसे तो ये प्रोग्राम सभी श्रोताओं के लिए है, लेकिन हम स्थानीय नागौर जिले के श्रोताओं को प्राथमिकता देते हैं। तो हो जाइए तैयार अपनी फरमाइश हमें भेजने के लिए और कीजिए फोन हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो फरमाइश।
1: दोस्तों, इस गाने से पहले हम बात कर रहे थे कि पब्लिक स्पीकिंग यानी कि स्टेज का डर हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले अच्छी तैयारी करें, जिस विषय पर बोलना है उसकी पूरी तरह से तैयारी करें। जितनी अच्छी तैयारी होगी उतना ही आत्मविश्वास बढ़ेगा और घबराहट कम होगी। अगला है छोटी शुरुआत करें, पहले परिवार, दोस्तों या आईने के सामने बोलने का अभ्यास करें। धीरे धीरे छोटे समूह में बोलें, फिर बड़े मंच पर जाने का प्रयास करें। अगला है सांस पर नियंत्रण रखें, मंच पर जाने से पहले 3 से 4 बार गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। इससे मन शांत होगा और घबराहट कम होगी। अगला है गलतियों से न डरें, हर अच्छा व्यक्ति भी कभी न कभी नया होता है। यदि बोलते समय कोई छोटी गलती हो जाए तो घबराए नहीं, मुस्कुराकर आगे बोलते रहें। श्रोता आपके आत्मविश्वास को अधिक महत्व देते हैं। दोस्तों, अगला है सकारात्मक सोच रखें, मंच पर जाने से पहले खुद से कहें, मैं ये कर सकता हूँ, मैं अच्छी तरह बोलूँगा। सकारात्मक सोच आत्मविश्वास बढ़ाती है और स्टेज फियर को कम करती है। याद रखें दोस्तों, स्टेज का डर जन्मजात नहीं होता, बल्कि अभ्यास से धीरे धीरे खत्म हो जाता है। जितना अधिक बोलेंगे उतना ही बेहतर वक्ता बनेंगे। दोस्तों, यहाँ लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक और सुनेंगे ये प्यारा सा गाना।

दोस्तों, इसी गाने के साथ मैं नेहा नारायण सोनी लेती हूँ आपसे विदा। मुलाकात होगी जल्द ही, तब तक आप खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई रखिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम बालवाड़ी।

हम वापस स्कूल जाएंगे और दुख इस बात का है कि इतना जल्दी उठना पड़ेगा, सभी काम सिस्टम से करने पड़ेंगे तभी समय से स्कूल पहुंच पाएंगे, है ना बच्चों? तो हमें चाहिए कि हम स्कूल जाने की तैयारी तो हमने कर ही ली होंगी, और कुछ जो थोड़ी बहुत बची है ना, वो हमें जो ये थोड़ा बहुत टाइम बचा है उसमें हमें कर लेनी चाहिए, है ना? जैसे अपना स्कूल बैग जो है वो तो आपने धो ही लिया होगा, साफ कर लिया होगा, उसे जमा लेना चाहिए, और अपनी जो पाठ्य सामग्री है उसे भी ठीक से देख के उस पर कवर वगैरह चढ़ा के पाठ्य पुस्तकों पर वो हमें अपने बैग में जमा लेनी चाहिए। इसके अलावा हमारा ज्योमेट्री बॉक्स है या ये हमारी यूनिफॉर्म है स्कूल की, वो भी साफ सुथरी धो के अच्छे से प्रेस करके हमें रख लेनी चाहिए, और कल जब हम स्कूल जाएं तो बस बहुत ही सुंदर तरीके से सज के फिर हमें स्कूल जाना चाहिए ताकि बहुत ही अच्छे लगे हम, है ना? और देखो बच्चों, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार स्कूल जाएंगे, जो पहली बार स्कूल में एडमिशन लेंगे, तो ऐसे बच्चों के लिए मैं उनके माता पिता से भी यही कहना चाहूँगी कि उनके स्कूल में प्रवेश दिलाने से पहले कुछ तैयारी जो है वो कर लें, क्योंकि बच्चा पहली बार अपनी माँ से दूर जा रहा है ना? तो हमें चाहिए कि उसको स्कूल के बारे में साधारण सी जानकारी उसे दें, है ना? और उसको स्कूल के बारे में सकारात्मक बातें बताएं कि वहाँ पे खेलने को मिलेगा, वहाँ पे तुम्हारे छोटे छोटे तुम्हारे जैसे दोस्त नए दोस्त बनेंगे, है ना? वहाँ के और वहाँ की स्कूल की एक बार विजिट भी करवाएं, वहाँ उस जगह लेके जाएं उस बच्चे को, ताकि बच्चे की जो है वो स्कूल है वो परिचित हो जाए, वहाँ के वातावरण से भी बच्चा परिचित हो जाए। ये उनके माता पिता को तैयारी कर लेनी चाहिए कि भाई बच्चे को अगर एडमिशन दिला रहे हैं उस स्कूल में तो वहाँ के लिए वो तैयार। उसके अलावा देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी उन माता पिता को कि बच्चे के प्रवेश के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज भी होते हैं, उन्हें अभी से आप संभाल लें। जैसे जन्म प्रमाण पत्र है, पहचान पत्र यानी माता पिता का आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज के फोटोज और आदि कई और भी जो दस्तावेज हैं वो अपने साथ ले जाएं स्कूल जाते समय, है ना? बातें तो बहुत छोटी छोटी है लेकिन है बहुत कीमती। इसके अलावा भाई हमें चाहिए कि हम बच्चे को थोड़ा व्यवहारिक रूप से आत्मनिर्भर बनाएं, जैसे टॉयलेट ट्रेनिंग, है ना, और कपड़े जूते पहनना, रूटीन सेट करना, ये सारी चीज़ें बच्चे को पहले से बताएं, बच्चे को समझाएं कि जब भी टॉयलेट जाना है तो आप अपने सर से या मैडम को बताएं और उनसे परमिशन लेके आप बाहर जाएं, है ना? और इसके अलावा बुनियादी पढ़ाई और बातचीत, जैसे बुनियादी पढ़ाई का तात्पर्य ये हुआ बच्चों की अपना नाम बताना कि हम तुम्हारा नाम क्या है ना? और इसके अलावा अपनी पहचान, फल और सब्जियों के नाम, जानवरों के नाम, 1 से 10 तक की गिनती, पेन पेंसिल पकड़ना, ये सारी तैयारी बच्चे के घर से अगर हो ना तो उसको स्कूल में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आती है। मानसिक और भावात्मक तैयारी करवाएं बच्चे को, माता पिता को चाहिए कि वो बच्चे को ये छोटी छोटी जानकारी देते रहें और स्कूल के बारे में हर चीज़ पॉजिटिव बताएं, बच्चे को डराएं नहीं कि अब तेरे स्कूल खुलने वाले हैं, तुझे स्कूल जाना पड़ेगा, वहाँ पे टीचर तेरी पिटाई करेंगी, इस तरह की बातें बच्चे को बिल्कुल ना कहें। सकारात्मक जानकारी बच्चे को दें ताकि बच्चा जो है स्कूल जाने के लिए तैयार रहे। कुछ देर बच्चे को अकेला भी छोड़ें, अपनी दादा दादी के पास या नाना नानी के पास या अपना कोई जो विश्वास पात्र पड़ोसी हो या कोई मित्र हो उसके घर पे कुछ देर के लिए बच्चे को अपने से दूर रहने की आदत डालें। और ये तो मैंने आपको बताया ही अभी कि जिस स्कूल में आप बच्चे का एडमिशन दिला रहे हैं उस स्कूल की एक बार विजिट कर लेनी चाहिए ताकि बच्चा वहाँ का वातावरण, वहाँ का प्लेग्राउंड, है ना, इन सब से थोड़ा सा माहौल से वो परिचित हो जाए। तो ये सारी जानकारी हमें चाहिए कि हम जो है अपने बच्चों को दें, और जो बच्चे ऑलरेडी स्कूल जा रहे हैं उन्हें मैं कहना चाहूँगी कि अपनी स्कूल की तैयारी पहले से वो कर लें, है ना? और इसके साथ ही हम आगे चलते हैं बच्चों मनोरंजन की ओर, और सुनते हैं कि प्यारा सा गीत।

बिल्कुल सही है बच्चों, हमारी मम्मी के लिए हम ही सबसे प्रिय होते हैं ना। चाहे हम शरारते करें तो वो डांट भी देंगी, है ना, और फिर वापस हमें प्यार भी कर लेंगी हो, है ना। इसीलिए तो कहा जाता है कि हम हमारी मम्मी की आंखों के तारे जो हैं, है ना। बिल्कुल सही है। तो बच्चों इसके साथ ही हम बात करेंगे कि भाई हमारी जो प्रथम गुरु होती है ना, वो अपनी माँ ही होती है। बच्चे की प्रथम गुरु उसकी माँ होती है, क्योंकि बच्चा सबसे पहले अपनी माँ को ही देखता है। जब बच्चा इस दुनिया में आता है, अपनी आँखें खोलता है, तो सबसे पहले वो अपने माँ को अपने नज़दीक पाता है और माँ को ही वो

देखता है। इसीलिए तो कहा गया है कि एक बच्चे की प्रथम गुरु उसकी माँ होती है ना। माँ उसे बोलना, चलना और उसको हर चीज सिखाती है। तभी तो कहते हैं कि बच्चे की प्रथम पाठशाला भी माँ और उसका परिवार ही होता है। माँ उसे केवल उत्तम संस्कार ही नहीं बल्कि उसे समाज में व्यवहार करना भी सिखाती है, है ना। और सबसे ज़्यादा समय बच्चा अपनी माँ के साथ ही बिताता है। हम सबसे अधिक साथ अपनी मम्मी के साथ ही रहते हैं। जब स्कूल से आते हैं और घर में देखते हैं कि मम्मी नहीं है तो इधर उधर मम्मी को ढूंढते हैं और चिल्लाने लगते हैं, मम्मी कहाँ है, मम्मी कहाँ है, है ना। क्योंकि मम्मी का हमारी आँखों के सामने रहना या दिखना बहुत ही ज़रूरी होता है। और मम्मी जब चारों ओर होती है तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा सुरक्षा कवच हमारे साथ है। सही बात है ना बच्चों। और माँ का सानिध्य ही हमें नए नए संस्कारों की शिक्षा देता है। अच्छे अच्छे गुण सिखाना ये माँ ही कर सकती है। और बच्चा माँ की संगत में ज़्यादा रहता है, इसीलिए कहते हैं कि संगत का असर बहुत जल्दी आता है। तो माँ की संगति में रहने से माँ के जो सारे अच्छे अच्छे सारे जो भी गुण हैं वो बच्चे में आ ही जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि माँ बच्चे की पहली गुरु होती है जो अपने बच्चे को सद्गुण देकर आगे बढ़ने की शिक्षा देती है, है ना। अच्छा ये यूँ कह लें कि भाई ये तो बात सही है कि बच्चा अनुकरणीय प्रवृत्ति का होता है। जैसा घर में उसका माहौल होगा यानी उसके परिवार में जैसा वातावरण होगा वैसा ही बच्चा सीखेगा। बच्चे को सिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, बच्चा अपने आप देख देख के सीख जाता है। तो ये तो बात सही है कि हमें एक बच्चे को सिखाने के लिए पहले हमें खुद को सीखना होता है और उसके लिए तैयार होना पड़ता है कि भाई किस तरह से हमारे जो बच्चा है वो हमसे अच्छी अच्छी बातें सीखे। तो वो अपने आप ही यूँ कहेंगे कि हमारे संस्कार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो ही जाते हैं, है ना। ये हुई बातचीत। बातचीत के साथ ही बच्चों आगे चलते हैं मनोरंजन की ओर और सुनते हैं कि प्यारा सा गीत।

बच्चों अभी सुना हमने एक बहुत ही प्यारा सा गीत, इसके साथ ही मैं सुनाती हूँ आपको एक बहुत ही अच्छी सी कहानी। सुनेंगे बच्चों? बिल्कुल। कहानी का शीर्षक है करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात के सिल पर परत निशान। यानी बार बार अभ्यास करने से मुश्किल काम भी आसान हो जाता है, यही हमारी कहानी का शीर्षक है बच्चों। देखिए बच्चों, एक बालक था और वो बालक बहुत ही मूर्ख था। उसकी स्मरण शक्ति अत्यंत दुर्बल थी और उसे कितना भी पढ़ाओ लेकिन फिर भी उसको याद नहीं होता था। और अपने सहपाठियों में उसकी गिनती बच्चों पीछे से शुरू होती, समझ गए ना, यानी कक्षा में सबसे मंद बुद्धि बच्चा था। जब वे 5 बरस का था तभी वे गुरुकुल शिक्षा के लिए

चला गया था। 10 वर्ष बीत जाने के बाद भी वह मूर्ख ही बना रहा। सभी साथी उसका मजाक उड़ाते थे और उसे वरदराज यानी बेलों का राजा कहा करते थे। और उसका नाम उसकी मैं अपन कहते ना भाई इसकी ये तो चिढ़ता है इस नाम से, तो उसका जो नाम था वरदराज वरदराज सभी बच्चे उसे बोलने लग गए थे। एक दिन गुरुजी ने निराश होकर उसे अपने पास बुलाया और कहा, बेटा वरदराज, तुम किसी और काम में ज़्यादा सक्षम हो सकते हो, अपना समय नष्ट मत करो और घर जाओ और कुछ और काम करो। गुरुदेव की बात पर बच्चा बहुत दुखी हुआ और उसे अपने आप पर ग्लानी महसूस हुई। उसने विद्या विहीन होने से अच्छा तो अपना जीवन नष्ट कर देना उचित समझा। वह गुरुकुल से चला गया और आत्महत्या करने का उपाय सोचने लगा। रास्ते में उसे एक कुआं दिखाई दिया बच्चों, और वहाँ महिलाएं रस्सी से पानी निकाल रही थी। उस बच्चे ने देखा कि रस्सी की रगड़ से पत्थर पर निशान बन गए। वरदराज ने सोचा कि जब इतना कठोर पत्थर कोमल रस्सी के बार बार रगड़ने से घिस सकता है, तब परिश्रम करने से मुझे विद्या क्यों नहीं आ सकती। उसने तत्काल आत्महत्या का विचार त्याग दिया और गुरुदेव के पास लौट गया। उसने गुरुदेव को कुछ दिन और रखकर शिक्षा देने की प्रार्थना की। बच्चों, सरल हृदय गुरुदेव जी राजी हो गए और वरदराज ने मन लगाकर पढ़ना शुरू किया। उसकी ज्ञान प्राप्ति की इच्छा इतनी तीव्र थी बच्चों कि समय और भोजन का उसे भान ही नहीं रहता था। यही वरदराज आगे चलकर संस्कृत के महान विद्वान बने। संस्कृत व्याकरण समझने में बहुत कठिन होती है बच्चों, और उन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की। पाणिनीय व्याकरण का संक्षिप्त सारांश इस ग्रंथ में है। वरदराज की कहानी से ही ये लोकोक्ति जन्म हुई। इस लोकोक्ति का कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, यानी कि बार बार अभ्यास हम करेंगे तो मंद बुद्धि भी, यानी कि अगर हमें कुछ नहीं आ रहा है तो भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। वो किससे? बार बार अभ्यास करने से। तो बच्चों, हमें चाहिए कि हम अगर किसी विषय में कमज़ोर है या कोई काम हमें नहीं आता है तो हम उससे भागे नहीं, बल्कि उसका सामना करें, ताकि धीरे धीरे धीरे धीरे हम उस चीज़ का अभ्यास करेंगे तो हम भी होशियार हो जाएंगे। है ना बच्चों, बहुत ही अच्छी कहानी। इस कहानी से भी यही शिक्षा मिलती है कि हमें निरंतर मेहनत करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए, मेहनत से मुँह कभी नहीं मोड़ना चाहिए। है ना बच्चों, देखो ये तो बहुत अच्छी सी कहानी हुई। इसके साथ ही हम आगे चलते हैं। और बच्चों, हमारे इस स्तंभ में हम एक स्तंभ रखते हैं खिलाड़ी का, है ना, कभी खिलाड़ी का, कभी कुछ और व्यक्तित्व का। तो आज हम बात करेंगे, एक बहुत ही अच्छी सी खिलाड़ी है अवनी लेखरा। समझ गए बच्चों आप, मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? बिल्कुल सही, अवनी लेखरा भारत की दिग्गज पैरा ओलंपिक निशानेबाज और दिव्यांग अधिकार कार्यकर्ता है। बच्चों, वे पैरा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली और एक ही संस्करण में कई पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। बात करें बच्चों इनके जन्म की, तो इनका जन्म 8 नवंबर 2001 को जयपुर राजस्थान में ही हुआ। 2012 में एक बार इनके साथ बहुत ही यूं कहें कि दुर्घटना हुई थी। कार का इनका एक्सीडेंट हो गया था। उस एक्सीडेंट में रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आ गई थी बच्चों, जिससे उनके कमर के निचले हिस्से में पैरालाइज हो गया था। और जब उनकी पढ़ाई की बात करते हैं बच्चों, तो उन्होंने LLB करी, यानी कानून में स्नातक की डिग्री ली। लेकिन उन्होंने 2015 में पिता के प्रोत्साहन से शूटिंग रेंज का की ओर रुख किया और जल्द ही निशानेबाजी में महारत हासिल कर ली। बच्चों, अवनी लेखरा जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को कई ऐतिहासिक पदक दिला चुकी है। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020-21 में स्वर्ण पदक जीता, कांस्य पदक भी जीता, और 2024 पेरिस पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। और बच्चों, 2022 में पैरा ओलंपिक वर्ल्ड कप में, जो कि फ्रांस में आयोजित किया गया था ना, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीतकर विश्व रिकॉर्ड तोड़ा।
इन्हें 2022 में

पद्मश्री पुरस्कार और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, और 2021 में वे बीबीसी द्वारा भी सर्वोच्च खिलाड़ी के रूप में इन्हें सम्मानित किया गया। तो देखिए ना बच्चों, भाई कहते ना कि भाई अब वो अवनी लेखरा एक तरह से देखा जाए तो अपने शरीर से थोड़ी मजबूर भी हो गई थी, लेकिन फिर भी अपनी मेहनत उन्होंने जारी रखी और अपना बेस्ट से बेस्ट दिया और पूरे विश्व में उन्होंने अपना नाम किया, है ना बच्चों। तो हमें भी चाहिए कि जिस काम में हमारी रुचि हो उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ दें, है ना, और ऊंचाइयों को ऊंचाइयों पर पहुंचकर अपना नाम दर्ज करवाएं विश्व रिकॉर्ड में, या यूँ कहें कि जहाँ तक आपको अपनी मेहनत लगता है कि मैं यहाँ तक अपनी मेहनत कर सकता हूँ, वहाँ आप मेहनत करें, एक उच्च स्थान प्राप्त करें। तो बच्चों ये हुई अवनी लेखरा से संबंधित बातचीत, और इसके साथ ही बच्चों हम बात करेंगे कि भाई अब स्कूल का सीज़न चालू हो रहा है, हमारी स्कूल शुरू हो रही होने वाली है कल से, तो हम छोटी मोटी जो भी तैयारियां हमारे बच चुकी है वो तैयारियां कंप्लीट कर लें, स्कूल के लिए तैयार रहें और समय से आप स्कूल पहुंचें। तो बच्चों मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि सत्र के प्रारंभ में आप सभी को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ, है ना। और इसके साथ ही घड़ी की तरफ देखते हैं ना बच्चों, तो घड़ी टिक टिक टिक टिक हमारी समय की ओर इशारा कर रही है, तो क्यों ना हमारा ये बालवाड़ी कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं, और करते हैं आप सभी से जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे बालवाड़ी कार्यक्रम, आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले हिंदी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जलवायु कार्रवाई उचित, उत्तरदायित्वपूर्ण और समान होनी चाहिए। सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करते हुए आज प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जलवायु न्याय का मूल तत्व है। उन्होंने कहा कि सेशल्स और भारत दोनों ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां विकास समग्रता में हो और जहां अंतर्राष्ट्रीय संस्थान समसामयिक वास्तविकताओं को परिलक्षित करें। श्री मोदी ने कहा कि भारत के विजन महासागर में सेशल्स का विशेष स्थान और ये प्रतिबद्धता पहले से कहीं अधिक ज्यादा मजबूत हुई है।
1: आई केम हियर बिकॉज आई बिलीव दैट सेशल ऑक्यूपाइड अ स्पेशल प्लेस इन इंडियाज विजन फॉर द इंडियन ओशन। टुडे एज आई रिटर्न हियर आफ्टर अ डेकेड दैट कन्विक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन एवर एंड आई एम डिलाइटेड टू ज्वाइन यू एज यू सेलिब्रेट 50 years of your independence. Congratulations to you and the people of Seychelles on this special occasion.
0: श्री मोदी ने कहा कि मानचित्र में सेशल्स हिंद महासागर में द्वीपों के समूह के रूप में दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि भारत इसे ऐसे राष्ट्र के रूप में देखता है जो अपनी सीमाओं से परे है। श्री मोदी ने कहा कि ये विशेष सम्मान है कि भारत का कोई प्रधानमंत्री पहली बार सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित कर रहा है।
1: President Armini and the people of Seychelles for honoring me with the guardian of the Blue Horizon earlier today. It will encourage all those who are making sustained efforts for environment conservation. I bring with me the warm greetings and best wishes of 1.4 billion people of India.
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स की राजकीय यात्रा के दौरान पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी ने प्रधानमंत्री मोदी को ये सम्मान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध सभी देशों को समर्पित किया। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। श्री शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मान दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव को दिखाता है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल की है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत में गांव की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में उन्होंने कहा कि विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। श्री चौहान ने आश्वस्त किया कि ग्रामीण समुदायों के सशक्तिकरण के लिए पंचायतों को ठोस वित्तीय सहायता मिलती रहेगी। अमेरिका ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। ये कार्रवाई शुक्रवार को हॉर्मूज जल डमरू मध्य में एक तेल टैंकर पर हुई ड्रोन हमले के जवाब में की गई। भारत ने एवीसी मेंस वॉलीबॉल कप का कांस्य पदक जीत लिया है। अहमदाबाद में कांस्य पदक के लिए खेले गए मुकाबले में भारत ने बहरीन को 3-1 से हराया। ये भारत का इस प्रतियोगिता के इतिहास में पहला पदक है। भारत ने आयरलैंड के साथ 2 T20 क्रिकेट मैच की श्रृंखला के दूसरे और अंतिम मैच में बेलफास्ट में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। और महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स में भारत आज अपने ग्रुप मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगा। ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम 4 मैच में 3 जीत के साथ ग्रुप में दूसरे स्थान पर है। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को ऑस्ट्रेलिया पर जीत हासिल करनी होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM बैंड 103.7 MHz पर ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। श्रोताओं, लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाज़ों में दिल है कि मानता नहीं फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। अगला गीत सुनिए कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में, फिल्म का नाम है साजन।

कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में साजन फिल्म का एक गीत अभी आपने सुना। फिल्म संगीत का अगला गीत सुनिए मेरे जीवन साथी फिल्म से किशोर कुमार की आवाज़ में।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत FM बैंड 103.7 MHz पर। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम माटी के स्वर।

अभी आप सुन रहे थे माटी के स्वर, ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले हिंदी में प्रादेशिक समाचार, तत्पश्चात राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आए आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
1: इस समय शाम के 6:29 हो रहे हैं। अब से थोड़ी ही देर में सुनिएगा हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को साकार करने में गांवों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। सरिस्का में बाघ पुनर्स्थापना के 18 साल पूरे हुए। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, बाघ संरक्षण में राज्यों के अनुभवों का आदान प्रदान भविष्य की संरक्षण रणनीतियों को मजबूत करेगा। और प्रदेश में 3 दिवसीय राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के पहले दिन आज 59,000 से अधिक बूथों पर 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। आज आकाशवाणी से मन की

0: प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा करते हुए कहा कि योग दिवस को दुनिया भर में मनाया गया। इस बार यह आयोजन 2,500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में करोड़ों लोगों ने योग दिवस में भागीदारी की। श्री मोदी ने पिछले दिनों पश्चिम एशिया में बने युद्ध के हालात के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: श्री मोदी ने उनकी सरकार द्वारा शुरू की गई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा और पीएम जीवन ज्योति बीमा का उल्लेख करते हुए योजनाओं की प्रगति और इनके लाभों की जानकारी दूसरे लोगों तक साझा करने की अपील की। श्री मोदी ने एआई टूल्स को देश की संस्कृति और भारतीय ज्ञान तथा भाषाओं के संरक्षण के काम में लिए जाने पर विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत देश के कई भागों में गांवों को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने आगामी महीनों में गणेश उत्सव की तैयारियों में लगे मूर्तिकारों से मिट्टी से बनी मूर्तियां बनाने और खरीदारों से प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां नहीं खरीदने की अपील भी की। मन की बात कार्यक्रम सुनने को लेकर प्रदेश भर में लोगों में खासा उत्साह रहा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में अपने निवास पर सिविल सेवा परीक्षा और भारतीय वन सेवा परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों के साथ ये कार्यक्रम सुना। वहीं पाली, बाड़मेर और जैसलमेर सहित विभिन्न स्थानों पर मन की बात कार्यक्रम को सामूहिक रूप से सुना गया। इस दौरान जनप्रतिनिधि और आमजन मौजूद रहे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को साकार करने में गांवों की महत्वपूर्ण भूमिका है। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के तहत राज्यों के योगदान सहित 1,51,000 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया है।
2: गांव केवल भारत का भूगोल नहीं है, भारत की आत्मा है, भारत की अर्थव्यवस्था है, भारत की अस्मिता है। गांव केवल बसाहट नहीं है, वे भारत की सभ्यता है, संस्कृति है, जीवन मूल्य है, परंपराएं हैं और समृद्धि के केंद्र रहे हैं। हमारी ताकत भी गांव है और हमारी संभावना भी गांव में। गांव हमारे लोकतंत्र की सबसे मजबूत इकाई भी है और ये आज का सम्मेलन ग्रामीण समृद्धि का मंथन है।
0: उन्होंने ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को और मजबूत करने और गांवों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों से सुझाव और नए विचार आमंत्रित किए। इस अवसर पर श्री चौहान ने ग्रामीण आंतरिक लेखा परीक्षा पोर्टल का शुभारंभ किया। ये पोर्टल जोखिम आधारित और अनुपालन लेखा परीक्षाओं सहित आंतरिक लेखा परीक्षाओं के संपूर्ण प्रबंधन के लिए एकीकृत डिजिटल मंच है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बालोतरा के पचपदरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर आज रिफाइनरी का अवलोकन किया। श्री शर्मा कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री ने जोधपुर में एयरपोर्ट के नवीन टर्मिनल का मुआयना भी किया। उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी आगामी 4 जुलाई को इस नए टर्मिनल का लोकार्पण भी करेंगे। मुख्यमंत्री के साथ इस दौरान जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4 जुलाई को प्रस्तावित दौरे की तैयारियों के तहत बालोतरा जिले में 7 दिन का विशेष स्वच्छता अभियान शुरू किया गया है। अभियान के पहले दिन आज प्रभारी मंत्री जोराराम कुमावत और विधायक अरुण चौधरी सहित जनप्रतिनिधियों तथा विभागीय अधिकारियों ने झाड़ू लगाकर स्वच्छता के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है

0: की सरिस्का बाघ परियोजना आज दुनिया की सफल बाघ पुनर्स्थापन कार्यक्रमों में गिनी जाती है। वर्तमान में यहां बाघों की संख्या बढ़कर 56 हो चुकी है। आज अलवर के सरिस्का में बाघ पुनर्स्थापन अवसर और चुनौतियां विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए श्री यादव ने कहा कि ये कार्यशाला ऐसे समय आयोजित हुई है जब सरिस्का में बाघ पुनर्स्थापना ने 18 साल पूरे कर लिए हैं। श्री यादव ने कहा कि बाघ संरक्षण में राज्यों के अनुभवों का आदान प्रदान भविष्य की संरक्षण रणनीतियों को मजबूत करेगा। कार्यशाला में वन मंत्री संजय शर्मा, देशभर के बाघ संरक्षण विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, वन अधिकारी और विभिन्न राज्यों के प्रधान वन्य जीव प्रतिपालक उपस्थित रहे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता के लक्ष्य सरकारी प्रयासों के साथ जन भागीदारी से संभव है। श्री बिरला आज कोटा के दादाबाड़ी क्षेत्र में रेंडल पार्क में आयोजित पौधरोपण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यदि प्रत्येक नागरिक अपने घर, गली, पार्क और मोहल्ले को स्वच्छ रखने के साथ पौधरोपण और उनके संरक्षण का संकल्प ले तो कोटा सबसे स्वच्छ और हरित शहरों में अपनी अलग पहचान बना सकता है। उन्होंने लोगों से पर्यावरण के अनुकूल जीवनचर्या अपनाने और पौधरोपण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया।
1: पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली लोगों की हो और इसको हम जन आंदोलन बनाएं। मुझे आशा है कि कोटा बूंदी की जनता अपनी दिनचर्या के अंदर भी पर्यावरण के अनुकूल दिनचर्या करेगी और सभी लोग एक पेड़ माँ के नाम लगाकर उस पेड़ को संरक्षण भी करेंगे, उसको बड़ा भी करेंगे और अपने शहर, गली, गांव को स्वच्छ रखने के लिए संकल्प भी करेंगे।
0: लोकसभा अध्यक्ष ने रेंडल पार्क में उपलब्ध खेल सुविधाओं का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में कोटा में आधुनिक खेल सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण और हरियाली को बढ़ावा देने के लिए युवाओं में जागरूकता बढ़ रही है। इसी कड़ी में पाली जिले के सुमेरपुर में मॉनसून के आगमन से पहले युवाओं ने बड़ी संख्या में सीड बॉल्स तैयार की है और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
2: इन सीड बॉल्स को मानसून के दौरान अरावली की पहाड़ियों और जंगलों में डाला जाएगा। बारिश के बाद सीड पौधों का रूप लेंगे। सीड बॉल्स में अरावली क्षेत्र में पाई जाने वाली देशी प्रजातियों जामुन, अमलातस, उमटा, खेर, देसी बबुल, गुंदा और जाल के बीजों का उपयोग किया गया है। साथ ही उपजाऊ मिट्टी और देसी खाद के मिश्रण का उपयोग किया गया है जिससे बीजों को बेहतर वातावरण मिल सकेगा। युवाओं की यह पहल जंगलों के विस्तार के साथ साथ पक्षियों, वन्य जीवियों और जैव विविधता के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। विशारद जोशी, आकाशवाणी समाचार, पाली।
0: प्रदेश सहित देशभर में आज से 3 दिन के राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हुई। इसके तहत देश को पोलियो मुक्त बनाए रखने के लिए 5 साल तक के सभी बच्चों को पोलियोरोधी खुराक पिलाई जा रही है। प्रदेश में 1 करोड़ से अधिक बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज अपने निवास पर बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर अभियान की शुरुआत की। प्रदेश भर में 59,000 से अधिक बूथों पर पहले दिन ये दवा पिलाई गई। अगले 2 दिन अब स्वास्थ्यकर्मी आज पोलियो की दवा से वंचित रहे बच्चों को घर घर जाकर दवा पिलाएंगे। गौरतलब है कि भारत में साल 1995 में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की गई थी। बीते 15 वर्षों में देश भर में कोई भी पोलियो का नया केस सामने नहीं आया है। 27 मार्च 2014 को भारत को पल्स पोलियो मुक्त प्रमाण पत्र मिल चुका है। प्रदेश में प्री मॉनसून गतिविधियों में फिर से कुछ कमी आई है। इस बीच तापमान में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। राजधानी जयपुर सहित कई जिलों में तेज गर्मी और उमस से जनजीवन प्रभावित है। उधर चूरू में दिनभर की तेज गर्मी के बाद आज शाम को बारिश हुई जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। वहीं सिरोही और आबूराज में दिनभर बादल छाए रहे। मौसम केंद्र जयपुर ने जुलाई के पहले सप्ताह में प्रदेश के कुछ स्थानों पर प्री मॉनसून की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना व्यक्त की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को साकार करने में गांवों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। सरिस्का में बाघ पुनर्स्थापना के 18 साल पूरे हुए। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, बाघ संरक्षण में राज्यों के अनुभवों का आदान प्रदान भविष्य की संरक्षण रणनीतियों को मजबूत करेगा। और प्रदेश में तीन दिवसीय राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के पहले दिन आज 59,000 से अधिक बूथों पर 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से दौसा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका लेख क्षेत्रीय समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। जिले भर में आज पल्स पोलियो राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत 5 साल तक के बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाई गई। 3 दिन के इस अभियान में सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों, आंगनबाड़ी केंद्रों के साथ ही बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन जैसी जगहों पर भी ट्रांजिट बूथ स्थापित किए गए। आज दवा पीने से छूटे बच्चों को अगले 2 दिन घर घर जाकर दवा पिलाई जाएगी। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जिले भर में उत्साहपूर्वक मनाया गया। जिला स्तरीय मुख्य आयोजन मान क्लब फुटबॉल मैदान में रखा गया, जहां प्रभारी सचिव पीसी किशन और जिला कलेक्टर सहित बड़ी संख्या में अधिकारियों, कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों और आमजन ने योगाभ्यास किया। जिला न्यायालय परिसर में आयोजित योगाभ्यास तथा ध्यान शिविर में न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं के साथ स्टेट बैंक के अधिकारी और कर्मचारियों ने योगासन किए। इसी तरह केंद्रीय कारागार श्यालावास में भी योगाभ्यास तथा ध्यान सत्र रखा गया, जिसमें बंदियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधा सुनिश्चित करने के लिए जिलों की स्वास्थ्य सेवाओं का 3 दिन तक मुख्यालय के प्रभारियों के दलों द्वारा सघन निरीक्षण किया गया। इस दौरान दवाइयों, उपकरणों की उपलब्धता और प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान जिले की स्वास्थ्य सेवाओं का फीडबैक लिया गया। नशा मुक्ति दिवस पर जिले में जागरूकता कार्यक्रम रखे गए। अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और पुनर्वास के जरिए नशा मुक्त समाज के निर्माण के लिए लोगों को प्रेरित किया गया। जिले भर में इन दिनों शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों के जरिए लोगों को विभिन्न योजनाओं तथा सेवाओं का लाभ दिया जा रहा है। शिविरों को लेकर आमजन में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। इन शिविरों में जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधि भी निगरानी और निरीक्षण कर रहे हैं। रामगढ़ पछवारा नगर पालिका में आयोजित शिविर में बरसों से मुख्य बाजार की समस्या का हाथों हाथ समाधान होने से लोगों ने राहत की सांस ली। इसी तरह बांदीकुई, बसवा, सिकराय, महवा, मंडावर और लालसोट ब्लॉक की ग्राम पंचायतों में भी शिविर आयोजित किए गए। कृषि विज्ञान केंद्र दौसा में पिछले दिनों जैविक खाद से समृद्ध मृदा, आय वृद्धि और पर्यावरण संतुलन विषय पर किसान गोष्ठी रखी गई। संगोष्ठी में कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को संरक्षित और उर्वरक खेती की जानकारी प्रदान की। किसानों को मृदा स्वास्थ्य सुधार, जैविक खेती और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। जिले में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना की पिछले दिनों लॉटरी निकाली गई। योजना के तहत दौसा जिले के 1300 वरिष्ठ नागरिक विभिन्न तीर्थ स्थलों की निःशुल्क यात्रा करेंगे। इनमें से 1150 से अधिक को रेल और 142 को हवाई यात्रा की सुविधा मिलेगी। जिला कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा ने कलेक्ट्रेट परिसर स्थित ईवीएम वेयर हाउस का निरीक्षण कर सुरक्षा तथा अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कार्मिकों से किसी भी आपात स्थिति में हर समय तैयार रहने को कहा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को ऋण स्वीकृति के चेक वितरित किए गए। रीनीट यूजी परीक्षा 21 जून को जिले के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। परीक्षा में 4,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल हुए। परीक्षा को सुचारू और सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा व्यापक इंतजाम किए गए। जिला कलेक्टर ने नीट परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिले में मुहर्रम पर मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में पारंपरिक आयोजन हुए। कई जगह जुलूस की शक्ल में ताजिए निकाले गए। शाम को मातमी माहौल के बीच ताजियों को करबला में सुपुर्द खाक किया गया। निर्जला एकादशी पर जिला मुख्यालय सहित जगह जगह धार्मिक गतिविधियां देखी गईं। दान पुण्य के आयोजन हुए। लोगों ने पानी, शरबत और पेय पदार्थों के साथ भंडारे लगाकर पुण्य कमाया। ज्येष्ठ महीने में जिले में मौसम ने कई रंग दिखाए। कभी बरसात तो कभी तेज गर्मी ने जिलेवासियों को प्रभावित किया। इस दौरान आंधी बारिश की गतिविधियों से कई जगह नुकसान भी देखा गया। इसी के साथ दौसा जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
3: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेरू पेश है सिंझा बगतरा प्रादेशिक समाचार।

0: पहले खास समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कयो स्वदेशी रक्षा उत्पाद माथे ध्यान देवता भारत बत्ती हिफाजती और आत्मनिर्भर बन रियो है। केंद्रीय गांवाय विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान विकसित भारत 2047 रा निजरिया ने साकार करण माय गांवारी भूमिका ने महत्व बताया है। सरिस्का माय भाग पुनर्स्थापना रा 18 साल पूरा विया। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव कयो बाघ संरक्षण माय राज्यां रे अनुभव ने साझा करणु भविष्य री संरक्षण रणनीतियां ने मजबूत करेला। और प्रदेश माय 3 दिन रा राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान रे पहले दिन आज 59,032 बूथा माथे 5 साल तयरा टाबरा ने पोलियो री खुराक पिलाई जी। समाचार रे साथे मैं शंभु सिंह और अबे समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कयो है कि स्वदेशी रक्षा उत्पाद माथे ध्यान देवता भारत समुद्रों लेर आकाश ताई बत्ती हिफाजती और आत्मनिर्भर बन रियो है। आज आकाशवाणी रा मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी कयो के जून महीना में स्वदेशी C-295 विमान री पहली उड़ान रे साथ ही भारत विमानन हल्का में एक मोटी कामयाबी हासिल करी है। वर्णा कयो के आज देश में रोजगार रा मौका बद रिया है और आत्मनिर्भर भारत रो संकल्प मजबूत वे रियो है।
1: C-295 ये विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
0: प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा करता कहो कि योग दिवस दुनिया भर में मनाई जो इस बार वो आयोजन 2,832 ठोड़ा माथे भी हो। भारत में करोड़ों लोग योग दिवस में भागीदारी करी। श्री मोदी लाडला दिना आथूणी एशिया में बनिया युद्ध रा हालात रे दौरान वारी अर्ज माथे देशवासियों रा समर्थन और सहयोग सारू आभारी जतायो।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: श्री मोदी हमारी सरकार का न्यू सरोग करी जी नवी सामाजिक हिफाजती योजना में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और PM जीवन ज्योति बीमा योजना रो जिक्रो करता योजना री प्रगति और इनरा फायदा री जानकारी दूजा लोगों तक साझा करने री अर्ज करी। श्री मोदी AI टूल्स ने देश री संस्कृति और भारतीय ज्ञान और भाषाओं रा संरक्षण रा काम में लिया जावण माथे न्यारी नारी शैक्षणिक संस्थावां ने शुभकामनावां दी। प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान रे तहत देश रा कई हल्का माए गांवां ने साफ सुथरा बनाया राखण सारू करी जा रही कोशिशां रो जिक्रो करियो। वणा आवता महीना माए गणेश उत्सव री तैयारियां माए लाग्या मूर्तिकारों माटियों बनी मूर्तियां बनावण और खरीदारों प्लास्टरों पेरिसों बनी मूर्तियां नी खरीदण री अरज करी। मन की बात कार्यक्रम सुनण ने लेर प्रदेश माए लोगां माए खासो उमाव नजर आयो। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जयपुर माए आपरा रहवास माते सिविल सेवा परीक्षा और भारतीय वन सेवा परीक्षा में चुनी जा उम्मीदवारों रे साथे ओ कार्यक्रम सुनियो। श्री शर्मा कहो कि प्रधानमंत्री रा संबोधन आम जन ने देश में वेरिया सामाजिक सरोकारों जुड़िया नवाचारों की जानकारी और उनने अपनावण की सीख मिले है। पाली बाड़मेर जैसलमेर समेत न्यारा न्यारा ठोड़ा माथे मन की बात कार्यक्रम ने भीड़ा सुनी जा इस दौरान जन नुमाइंदा और आम लोग मौजूद रिया। गांवाई विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान विकसित भारत 2047 रा नजरिया ने साकार करण माए गांवारी महत्व भूमिका बताई है। वे आज नई दिल्ली में VR राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में बोल रहा। श्री चौहान कहो कि गांवाई विकास में तेजी लावण सारू विकसित भारत ग्रामीण योजना के तहत राज्यों का योगदान समेत 1,51,000 करोड़ रुपयों बत्ती रो बंदोबस्त

0: करी जो है।
1: गांव केवल भारत का भूगोल नहीं है, भारत की आत्मा है, भारत की अर्थव्यवस्था है, भारत की अस्मिता है। गांव केवल बसाहट नहीं है, वे भारत की सभ्यता है, संस्कृति है, जीवन मूल्य है, परंपराएं हैं और समृद्धि के केंद्र रहे हैं। हमारी ताकत भी गांव है और हमारी संभावना भी गांव में। गांव हमारे लोकतंत्र की सबसे मजबूत इकाई भी है और ये आज का सम्मेलन ग्रामीण समृद्धि का मंथन है।
0: मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज बालोतरा रहा पचपदरा माए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात तय दौरा ने लेर रिफाइनरी ने देखा। श्री शर्मा कार्यक्रम की तैयारियां ने लेर एहलकारा ने लेर मीटिंग कर रिया है। इनो पहला मुख्यमंत्री जोधपुर एयरपोर्ट रा नुआ टर्मिनल भवन रोई जाए जो लियो। ई दौरान वना मीडिया साथे बतलमाए कहो कि प्रधानमंत्री आवता 4 जुलाई ने ई नुआ टर्मिनल रो लोकार्पण करेला। मुख्यमंत्री रे साथे ही ई दौरान जन नुमाइंदा और जिला प्रशासन रा एहलकार मौजूद रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा 4 जुलाई ने तय बालोतरा दौरा री तैयारियां ने तहत जिला माए 7 दिन रो खास स्वच्छता अभियान शुरू हुई हो। अभियान रा पहला दिन आज प्रभारी मंत्री जोरा राम कुमावत और विधायक अरुण चौधरी समेत जन नुमाइंदा और महकमाई एहलकारा झाड़ू लगार सफाई रे प्रति जाग जगाउन रो संदेश दियो। समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर प्रसारित किया जा रहा है। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव कहो है कि सरिस्का बाग परियोजना आज दुनिया री कामयाब बाघ पुनर्स्थापना कार्यक्रम में गिनी जावे है। अबार माए अठे बाघां री तादाद बदने 56 वेगी है। आज अलवर रा सरिस्का माए बाघ पुनर्स्थापना अवसर और चुनौतियां मुद्दा माथे राष्ट्रीय कार्यशाला माए बोलता श्री यादव कहो कि आ कार्यशाला उन भगत भी है जदे सरिस्का माए बाघ पुनर्स्थापना रा 18 साल पूरा कर लिया है। श्री यादव कहो कि बाघ संरक्षण माए राज्य रा अनुभवारी अदला बदली भविष्य री संरक्षण रणनीतियां ने मजबूत करेला। कार्यशाला माए वन मंत्री संजय शर्मा और देश भर रा बाघ संरक्षण विशेषज्ञ वैज्ञानिक वन अहलकार और न्यारा न्यारा राज्य रा प्रधान वन जीव प्रतिपालक मौजूद रिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कहो है कि पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता रो लगा सरकारी कोशिशों रे साथे जन भागीदारी में पूरो वह सके है। श्री बिरला आज कोटा रा दादाबाड़ी हलकारा रेंडल पार्क माए विया पौधरोपण कार्यक्रम माए बोल रहा है। उन्होंने कहो कि जे हर रहवासी आपरा घर गली बगीचा और मोहल्ला ने साफ रखण रे साथे ही पौधरोपण और उनरा संरक्षण रो संकल्प लेवे तो कोटा सबू साफ और हरिया भरिया शहरा माए आपरी न्यारी पहचान बना सके है। वना लोगों पर्यावरण मुजब जीवन चर्या अपनावण और पौधरोपण ने जन आंदोलन बनावण री अरजी करी।
2: पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली लोगों की हो और इसको हम जन आंदोलन बनाएं। मुझे आशा है कि कोटा बूंदी की जनता अपनी दिनचर्या के अंदर भी पर्यावरण के अनुकूल दिनचर्या करेगी और सभी लोग एक पेड़ माँ के नाम लगाकर उस पेड़ को संरक्षण भी करेंगे, उसको बड़ा भी करेंगे और अपने शहर गली गांव को स्वच्छ रखने के लिए संकल्प भी करेंगे।
0: लोकसभा अध्यक्ष रेंडल पार्क माए मुहैया खेल सुविधाओं रोई जाए जो लियो। वना कहो के आवन वाला भगत माए कोटा माए आधुनिक खेल सुविधाओं रो पसारो करियो जाएला। राजस्थान समेत देश भर में आज 3 दिन रा राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान री शुरुआत हुई। इन रे तहत देश ने पोलियो मुक्त बनाया राखण सारू 5 साल तई रा सगड़ा टाबरा ने पोलियो रोधी खुराक पिलाई जावे। प्रदेश में 1 करोड़ 32 टाबरा ने दवा पिलाउन रो लगस राखी जो है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज आपरा रहवास माते टाबरा ने पोलियो री खुराक पिलार अभियान री शुरुआत करी। प्रदेश में 59,032 बूथा माते पहले दिन आ दवा पिलाई जी। आवता 2 दिन अभय स्वास्थ्य कर्मी पोलियो री दवा पीवणु बछोड़ा टाबरा ने घर घर जा आ दवा पिलावेला। ध्यान जोग है कि भारत माए साल 1995 माए पल्स पोलियो अभियान री शुरुआत करी जी ही। लाडला 15 साल माए देश भर माए कोई पोलियो रो नू के सामी नहीं आयो है। 27 मार्च 2014 ने भारत ने पल्स पोलियो मुक्त प्रमाण पानो मिल चुक्यो है। प्रदेश माए पर्यावरण संरक्षण और हरियाली ने बधावो देवण सारू नौजवान माए जाग बदरी है। ई कड़ी माए पाली जिला सुमेरपुर माए मानसून आवणु पहला नौजवान घनी तादाद माए सीड बॉल्स तैयार कर रिया है। और ब्यूरो मारा खबर नवीसू।
3: इन सीड बॉल्स को मानसून के दौरान अरावली की पहाड़ियों और जंगलों में डाला जाएगा। बारिश के बाद सीड पौधों का रूप लेंगे। सीड बॉल्स में अरावली क्षेत्र में पाई जाने वाली देशी प्रजातियों जामुन अमलातस उमटा खेर देसी बबुल गुंदा और जाल के बीजों का उपयोग किया गया है। साथ ही उपजाऊ मिट्टी और देसी खाद के मिश्रण का उपयोग किया गया है, जिससे बीजों को बेहतर वातावरण मिल सकेगा। युवाओं की यह पहल जंगलों के विस्तार के साथ साथ पक्षियों, वन्य जीवियों और जैव विविधता के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। विशारद जोशी, आकाशवाणी समाचार, पाली।
0: और अब मौसम। प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां में फिर कुछ कमी आई है। इस बीच तापमान में उतार चढ़ाव रो सिलसिलो चाले। राजधानी जयपुर समेत कई जिला में कड़ी गर्मी और उमस जिंदगी माथे असर पड़ियो है। उठीने चूरू में आखे दिन कड़ी गर्मी रे पछे आज संजा बिरखावी, जिणु लोगों ने थोड़ो आराम मिलियो। वठे सिरोई और आबूराज में आखे दिन बादल छाए जा रिया। मौसम केंद्र जयपुर जुलाई रा पहला हफ्ता में प्रदेश रा कुछ थोड़ा प्री मानसूनरी गतिविधियां में बढ़ोतरी री घनी आस जताई है। पहली रा प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव री जयंती माथे राष्ट्र आज वाने श्रद्धांजलि अर्पण करे। नरसिम्हा राव 90 रा दशक में दुनिया में ये संकट और मंदिरा दौर में सारू कुशल प्रशासक रा तौर माथे याद करिया जावे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया रा संदेश माए कहो है कि देश रा एक महताऊ दौर माए श्री राव भारतरी प्रगति माए अमोल योगदान दियो। मैं अबे आखिर माए खास समाचार आप एक कर फेरों सुन दे रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो स्वदेशी रक्षा उत्पाद माथे ध्यान देवता भारत बत्ती हिफाजती और आत्मनिर्भर बन रियो है। केंद्रीय गांवाई विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान विकसित भारत 2047 रा निजरिया ने साकार करण माए गांवारी भूमिका ने महताऊ बताया है। सरिस्का माए बाघ पुनर्स्थापना रा 18 साल पूरा विया। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव कहो बाघ संरक्षण माए राज्यों रा अनुभव ने साझा करणु भविष्य री संरक्षण रणनीतियां ने मजबूत करेला। और प्रदेश माए 3 दिन रा राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान रे पहले दिन आज 59,032 बूथा माथे 5 साल तई रा टावरा ने पोलियो री खुराक पिलाई जी। इन साथ ही प्रादेशिक समाचार और बुलेटिन अठी पूरो यो। मारो आगलो समाचार बुलेटिन काले सवारा 9 बजा हिंदी माए प्रसारित करो जायेला। नमस्कार।

0: FM बैंड 103.7 MHz पर ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले ICC वेमेन
1: भारतीय राष्ट्रीय सेवा विशेष जयमाला कार्यक्रम। आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

अमेरिका की बेड़ियों में जकड़े भारत की ऐसी ही फिजाओं में बिशन सिंह की उम्र धीरे धीरे परवान चढ़ती रही। माता पिता का प्यार और परिवार का दुलार भरपूर था। स्वतंत्रता के लिए हर तरफ से उठती आवाजें गाहे बगाहे नन्हे बिशन सिंह को भी सुनाई पड़ती और देश के लिए उनकी आंखों में भी सपने पला करते थे। देखते ही देखते उम्र के साथ बिशन सिंह के ये सपने भी जवान हो चले। पढ़ने लिखने के साथ खेल प्रतियोगिताओं में भी बिशन सिंह अक्सर भाग लिया करते। धीरे धीरे उनके दिल में पलता वतन का प्यार और अपनी मिट्टी से उनका जुड़ाव, देश के लिए कुछ करने का जज्बा उनके दिल में धड़कने लगा।

हर एक रंग के फूल है खिलते, हर मजहब के लोग हैं मिलते, इस बगिया में इस महफिल में हो हे, हम सारे हैं भारतवासी, सब है

बिशन सिंह औरों से जरा हटकर थे, जितने खुश मिजाज उतने ही संजीदा। उनका कर्तव्य बोध, उनकी देश के प्रति निष्ठा और उनकी मेहनत रंग लाई। फौज में उनके जाने का सपना साकार हुआ और महज 16 साल की उम्र में सन 1933 में उन्होंने सिख रेजिमेंट ज्वाइन की। बिशन सिंह इसे अपनी खुशकिस्मती मानते थे कि उन्हें देश सेवा का अवसर मिला। अपने कॉल के पक्के, दिल में देशभक्ति का जज्बा और जुनून, अनवरत आगे बढ़ने की चाह, वक्त के पाबंद, फरमाबरदार और जुनून की हद तक देश सेवा की भावना ने उन्हें फौज का एक जाना माना चेहरा बना दिया। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में देश विदेश में होते बदलाव का असर सभी पर व्यापक था। इस समय काल में जंगें भी बहुत लड़ी गईं, जिनमें भारतीय सेना ने बरतानिया हुकूमत के ध्वज तले कई युद्ध लड़े, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध भी था। इस युद्ध में बिशन सिंह हर उस मोर्चे पर भी सफल रहे जिसकी अगुवाई उन्होंने की और कभी शिकस्त न खाई। उन्हें सरदार बहादुर और कई और खिताबों से तत्कालीन अंग्रेज हुकूमत ने नवाजा। फिर वो घड़ी भी आई जब देश आजाद हुआ। आनंद के एहसास से दिल भर भी न पाया था कि युगों युगों से एक संग रहती भारत भूमि के मानचित्र पर लकीर खींचकर इसके दो भाग कर दिए गए। ये दर्द ऐसा था कि जिसकी टीस हर एक ने महसूस की। घर उजड़े, मकान छूटे, दिल टूटे, परिवार बिखरे, वतन छूटा और यहाँ तक कि मवेशी भी अपनी पनाहगाह तलाशने लगे।

1947 में देश के विभाजन के साथ ही हमारे देश से अलग हुए मुल्क ने सीमा पार से कबायली हमले तेज किए। छुप छुप कर होते इन हमलों ने देश की उत्तर पश्चिमी सीमाओं को बेहद संवेदनशील बना दिया। इन हमलों को रोकने और दुश्मनों को सबक सिखाने के मद्देनजर बिशन सिंह के नेतृत्व में दिसंबर 1947 को जम्मू कश्मीर में पहले सिख यूनिट को तत्काल प्रभाव से रवाना किया गया, क्योंकि देश के बंटवारे के बाद बिशन सिंह ने भारतीय सेना को चुना और यहीं अपने वतन की सेवा करना चाहा। सिख रेजिमेंट के इस जाबाज अफसर को युद्ध का खासा अनुभव भी था और जम्मू कश्मीर की भौगोलिक स्थिति से भी वो भली भांति परिचित थे। हालांकि इस सरहदी इलाके में युद्ध का खतरा पहले से ही मंडरा रहा था। फौजी साथियों, विशेष जयमाला कार्यक्रम का बाकी हिस्सा आपको सुनवाएंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।

अक्टूबर माह 1947 से ही भारतीय सेना की सरगर्मियां यहां देखी जा सकती थीं। बंकर में छिपी शत्रु सेना के रह रहकर होते हमले दिन ब दिन बढ़ते ही जाते थे। सीमा पार से कबाइलियों की घुसपैठ और तेज हुई और भारत के सीमावर्ती इलाकों को निशाना बनाया जाने लगा। सूबेदार बिशन सिंह की सेना के कूच करने से पहले ही दुश्मन फौज ने भारतीय सैनिकों की पहले भेजी गई टुकड़ी पर हथगोले और धारदार हथियारों से हमले किए और आगे बढ़ती भारतीय सेना के लगभग 10 जवानों को अपना निशाना बनाया। हमारी सेना के कुछ जवान इस हमले में घायल भी हुए। आगे बढ़ते इन जवानों को बिना वक्त गवाए बिशन सिंह की सेना ने कवर दिया और मोर्चे पर सबसे आगे खुद सूबेदार बिशन सिंह थे।

मशीन गन से भारी तादाद में निकलती गोलियों ने कश्मीर की फिजाओं में बारूद घोल दिया। उधर से दुश्मन सेना के तेज होते कबायली हमले और इधर सिख रेजिमेंट की डी कंपनी के धाकड़ जवान जिनके कदमों की आहट ने उरी की वादियों में हलचल मचा दी। शत्रु लगातार भारतीय सेना का निशाना बनते रहे और उनके कई बंकरों, असलाहों, राइफल्स, मशीन गन्स और गोला बारूद पर भारतीय सैनिकों ने कब्जा कर लिया। भारतीय सेना के हमले की जद में आ रहे कई दुश्मन सैनिक अपनी जान बचाकर युद्ध क्षेत्र से भाग खड़े हुए। दोनों ओर से होती घमासान जंग में दुश्मनों के हौसले पस्त थे क्योंकि बिशन सिंह ने अपनी सैनिक टुकड़ी को हर दिशा से धावा बोलने का एक अचूक मंत्र दिया। वो स्वयं बाईं तरफ से हमला बोलते हुए दुश्मनों पर गोलियां बरसाने लगे और इस अफरा तफरी के माहौल का पूरा फायदा उठाते हुए अपनी मशीन गन और फिर अपनी संगीन से दुश्मनों को मौत की घाट उतारा। इस गुत्थम गुत्था में उनके शरीर में भी बहुत चोटें आईं और शरीर से बहुत सारा खून बह गया। घायल अवस्था में भी उन्होंने दुश्मन के पांच और सैनिकों को मौत की नींद सुला दिया। उनकी इस वीरता को प्रत्यक्ष देखकर उनके साथी सिपाहियों के हौसलों का ठिकाना न था। अपने सेना नायक की भांति बाकी सैनिक भी शत्रुओं पर कहर बन के टूटे। हताश और बदहवास दुश्मन सैनिकों ने अपने हथियार वहीं फेंक दिए और भागना ही मुनासिब समझा। लक्ष्य अपने मकाम तक पहुंच चुका था, जीत पक्की थी। शत्रु के इलाके को घेरते हुए उनके बंकरों पर भी बिशन सिंह और उनके फौजी साथियों ने कब्जा कर लिया। इस बीच एक बंकर की ऊंचाई पर हालात का जायजा लेने के मद्देनजर बिशन सिंह तेजी से चढ़े, जहां घात लगाकर बैठे शत्रु ने अपनी LMG बंदूक से बिशन सिंह पर निशाना साधा और इस लाइट मशीन गन से निकली गोलियां सूबेदार बिशन सिंह के सीने में पैबस्त हो गईं। उनकी सांसें थमने लगी। अब भी अपनी बंदूक को थामे लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़े बिशन सिंह और गोलियां बरसाते रहे। धुंधली आंखों में अब भी फतेह का तिरंगा लहरा रहा था कि उखड़ती सांसों ने जिस्म को निढाल कर दिया और सरजमीन हिंद का ये बांका सिपाही मां भारती और अपने वतन को आखिरी सलाम कर चल दिया उस अनंत पथ पर जहां से फिर शायद कोई कभी लौट कर नहीं आता। आती है तो बस उनकी यादें।

फौजी साथियों, विशेष जयमाला कार्यक्रम का बाकी हिस्सा आपको सुनवाएंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।

0: जी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं महावीर चक्र से सम्मानित सूबेदार बिशन सिंह की शौर्य गाथा। दिसंबर 1947 में भारत से अलग हुए मुल्क के साथ लड़ी गई ये जंग देश के इतिहास में एक ऐसी जंग थी जिस पर हौसलों से फतह पाई गई। पहली सिख रेजिमेंट के शेर दिल सिपाही सूबेदार बिशन सिंह के नेतृत्व में सिख रेजिमेंट के सफल संचालन से भारतीय सेना को इस मोर्चे पर फतह हासिल हुई और दुश्मनों को शिकस्त। कबाइलियों और दुश्मन सेना को इस कदर पीछे धकेल दिया गया कि इस जंग से आज भी शत्रु खौफ खाता है। जिस मरने ते जग डरे मेरे मनी अनंत, मरने ही ते पाइये पूर्ण परमानंद। जिन भारत माता के सपूतों के ऐसे हौसले हों उन्हें भला दुश्मन कब मार सकता है।
1: देश मेरे, देश मेरे, मेरी जान।

जी साथियों, भारत से अलग हुए पड़ोसी देश के साथ सन 1947 में लड़ी गई इस जंग में पहले सिख रेजिमेंट के होनहार और बहादुर सिपाही सूबेदार बिशन सिंह को सेना के सफल संचालन, उनकी सूझबूझ, कर्तव्य निष्ठा और असाधारण पराक्रम, उनके बलिदान, वीरता, अदम्य साहस के लिए इस जंग में शत्रुओं को निस्त नाबूद करने और फतेह का तिरंगा लहराने के लिए भारत सरकार ने सूबेदार बिशन सिंह को महावीर चक्र से सम्मानित किया। हम सूबेदार बिशन सिंह को सलाम करते हैं।

चक्र से सम्मानित सूबेदार बिशन सिंह की शौर्य गाथा। शोध आलेख और स्वर था संगीता श्रीवास्तव का। प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। अब दीजिए इजाजत। जय हिंद।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए अब सुनते हैं इंद्रधनुष में साज और आवाज। इसमें आज आप सुनेंगे वैन शिपले का इलेक्ट्रिक गिटार। आज की फिल्में हैं हावड़ा ब्रिज और अजनबी।

0: अभी आप सुन रहे थे हावड़ा ब्रिज फिल्म का गाना आशा भोसले की आवाज में। गीत कंवर जलालाबादी का था, संगीत ओपी नैयर का।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर के गाए अजनबी फिल्म के इस गाने के साथ ही इंद्रधनुष के अंतर्गत साज और आवाज कार्यक्रम समाप्त होता है।

दोस्तों हवामहल कार्यक्रम में आइए सुनते हैं राजेश भदौरिया की लिखी झलकी लड़ी नजरिया लड़ी। निर्देशक हैं गुरुमीत रामलमीत।

0: नजरिया लड़ी, अरे लड़ी नजरिया लड़ी, अरे लड़ी नजरिया लड़ी।
1: हाँ, आज तो बड़े बाबू भाई, वाह क्या कहने। अरे किसका कत्ल करके चले आ रहे हैं?
2: देखो चौबे, औकात में रहो।
1: क्या बात है, आज आपके होठों पर आशिकी नगमा।
2: गुनगुना क्या दिया, लग गया सबको चरपरा। और जब पिद्दी से लौंडे आजकल तरह तरह के गाने गाते फिरते हैं, तो हमने जरा सा गुनगुना दिया, इसमें कौन सा धधकता हुआ ज्वालामुखी ब्लास्ट हो गया।
1: आप तो खामखा आग बबूला हो गए बड़े बाबू।
2: और नहीं तो क्या, गुलगुला हो जाऊं।
1: देखिए बड़े बाबू, मैंने ऐसा कुछ नहीं कह दिया कि आप राशन पानी लेकर ऊपर चढ़ बैठे।
2: और कैसे कहा जाता है, जो कहना था वो सब तो कह दिया, बहुत है इज्जतदार के लिए इतना।
1: भाई क्या कह दिया, जरा मैं भी तो सुनूं।
2: आशिकी नगमा, कत्ल करके आए हो। अरे मैं कहता हूं, और क्या कह सकते हो।
1: भाई बड़े बाबू, रोज आपके मुंह में पान और होठों पर महंगाई का रोना, या तो फिर दूसरों को कोसना, या इसकी शिकायत उसकी शिकायत, लेकिन आज वाह वाह क्या बात है, किसकी तरफ से आने वाले हैं गर्मा गर्म समोसे।
2: लो एक और आ गए। चाहे सवेरे घर में चाय तक ना नसीब हुई हो, लेकिन कार्यालय में बात करेंगे तो गर्मा गर्म समोसे से नीचे नहीं, जैसे नवाबजादे समोसे खाते खाते ही पैदा हुए थे।
1: हाँ ये बात तो है। नहीं खजूरी साहब, ये बात नहीं, आज तो बड़े बाबू।

0: अच्छा, आज तो बड़े बाबू की तरफ से है। बधाई हो बड़े बाबू, बधाई हो।
1: अरे कौन सी ढोलक बजी है हमारे घर में, किस बात की बधाई?
0: बात बाद में, पहले तो हो जाए। हाँ
1: हो जाए। हाँ यहाँ मुफ्त में बंट रही है, जब जी चाहे हो जाए। हाँ
0: खजूरी, बात दरअसल ये है कि आज बड़े बाबू पर किसी हसीना का चक्कर चल गया है।
1: चक्कर? हसीना का चक्कर?
0: तो ये बात है अमा भाई, आप तो छिपे रुस्तम निकले, आखिर खिजाब ने कमाल दिखा ही दिया।
1: ओफो,
0: इसीलिए मैं सोच रहा था कि इंटीमेट कहाँ महक रहा है।
1: अरे अरे, तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है। इंटीमेट किस भकुए ने लगाया है? यहाँ तो मिट्टी के तेल की खुशबू के अलावा दूसरी कोई सुगंध ही नहीं पहचानते।
0: मजाक छोड़िए बड़े बाबू, बता भी दीजिए कब बज रही है ढोलक।
1: अरे खजूरी, तुम ही बताओ, जब कोई बात हो तभी तो बताए, है कि नहीं भला?
0: थोड़ा सा बड़े बाबू, लंच करवाना पड़ेगा। हाँ
1: देखो देखो, दूर से बात करो। हाँ दूर से बात करो, मुझे गुदगुदी बहुत लगती है। हाँ गुदगुदी लगाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गए?
0: अरे हम किसी से कहने थोड़े ही जा रहे हैं, आपकी कसम हम ही तो आपके चाहने वाले हैं।
1: क्यों नहीं क्यों नहीं, आपकी चाहत की वजह से ही तो ये हो रहा है।
0: छोड़ो यार खजूरी, नहीं बताना चाहते हैं बड़े बाबू तो न बताएं, जब पेट में दर्द होगा तो खुद ही कहेंगे। सुन लो आकर मेरी बात, देख लेना हम भी नहीं सुनेंगे तब।
1: हाँ, हाँ, जब दर्द होगा तब देखेंगे।
0: अच्छा चोबे, ये तो बताओ तुम्हें कैसे पता चला चक्कर का?
2: आज सवेरे सवेरे बड़े बाबू गाना गा रहे थे, लड़ी नजरिया लड़ी।
0: अच्छा तो ये बात है, बता दीजिए बड़े बाबू, भगवान कसम अब नहीं रहा जाता।
1: अब तुम ही सोचो खजूरी, हमें तुमसे कोई पर्दा है क्या?
0: नहीं तो?
1: और फिर पर्दा ही करना होता तो मैडम सरिता से करते।
0: हाँ हाँ और क्या,
1: मैं भला तुमसे क्यों छुपाऊंगा? अगर कोई बात होती तो मैं तुम्हें ना बताता।
0: लेकिन लड़ी नजरिया लड़ी वाली खबर?
1: अरे ये सब चोंचले हैं चौबे के, मैंने तो बस यूं ही गुनगुना दिया था जरा।
0: जब आप गाना गा रहे थे?
1: गा नहीं, गुनगुना रहे थे।
0: हाँ हाँ वही, जब आप गुनगुना रहे थे तो आपके दिल में कुछ ऐसा कुछ वैसा, मेरा मतलब कुछ कुछ
1: कुछ नहीं हो रहा था खजूरी, मैं सच कहता हूँ कुछ नहीं हो रहा था।
0: सोच लीजिए बड़े बाबू, ऐसे वैसे गाने कोई यूं ही नहीं गाता, जब भीतर कुछ कुछ होता है तभी ऐसे गाने मुंह पर आते हैं।
1: ओफो, गाना ना हुआ पानी हो गया, जो जब मन हुआ मुंह में आ गया। मैं कह रहा हूं कुछ भी नहीं हो रहा था मेरे अंदर।
0: तो फिर आपने देशभक्ति का गीत क्यों नहीं गाया, जबकि जरूरत है आजकल देशभक्ति के गानों की?
1: ओफो,
0: देखिए देखिए, परेशान मत होइए, चोबे गया है बाहर, तब तक मुझे बता डालिए।
1: तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है।
0: मान लिया, लेकिन अपना भी ये दावा है कि देखकर जान लेते हैं भीतर का हाल, उठ रहा है कहां कितना उबाल।
3: मारे गए बेमौत, अब साहब क्यों बुला रहे हैं, इसी वक्त बुलाना था इनको भी।
0: कहीं साहब तक तो बात नहीं पहुंच गई, संभल कर बड़े बाबू।
3: आपने मुझे बुलाया साहब?
4: हाँ बुलाया है, बैठो बैठो, डोंट वरी, तुम्हारे जैसे मेहनती और चरित्रवान आदमी पर ऑफिस को गर्व है।
3: धन्यवाद साहब।
4: इधर तुम्हारा काम धंधा, मेरा मतलब ऑफिस का काम कैसा चल रहा है?
3: ठीक ही चल रहा है आपकी मेहरबानी से।
4: तुम्हारी उम्र कितनी है बड़े बाबू?
3: साहब मैं समझा नहीं, आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं?
4: यू ही फॉर जनरल नॉलेज।
3: साहब बस ये समझ लीजिए, पुराना खाया पिया है, इसलिए अब की फागुन में 48 वर्ष।
4: आपके बच्चे भी काफी बड़े बड़े होंगे।
3: जी आपकी मेहरबानी से।
4: इस उम्र में आपके इश्क के चर्चे बहुत खराब बात है, बहुत खराब बात है।
3: जी मैं कुछ समझा नहीं।
4: देखो बड़े बाबू, आज

0: ऑफिस में सवेरे से आपके इश्क की चर्चा है, जिधर देखिए उधर बस एक ही खबर। माजरा क्या है, जरा मुझे भी तो बताइए।
1: साहब ये आप क्या कह रहे हैं, भला सोचिए मैं इश्क कैसे कर सकता हूं। आज तक साहब मैंने किसी लड़की की तरफ तो क्या बीवी की तरफ भी आंख उठाकर नहीं देखा है।
0: होता है, अक्सर ऐसा होता है, लोग नहीं देखते हैं आंख उठाकर, लेकिन इंसान का काबू अपने जज्बात पर नहीं होता, कब क्या हो जाए किसी को खबर नहीं होती। डोंट वरी, बताओ भी।
1: अब तो कुछ ना कुछ बताना ही पड़ेगा। अब साहब आपसे क्या छिपाना, यूं ही पता नहीं क्यों मन में आज पुरानी यादें किलोले करने लगी।
0: फिर क्या हुआ,
1: फिर मन में उमंगे
0: पतंगे,
1: नहीं साहब उमंगे उमंगे उठने लगी, गिरने लगी, अंगड़ाइयां लेने लगी।
0: फिर
1: कुछ नहीं साहब।
0: ओहो नॉनसेंस, वेयर इज क्लाइमेक्स, आगे क्या हुआ।
1: साहब फिर मुझे लगा मेरी रगों में सपरेटा नहीं प्योर खून बह रहा है, मुझे भी अपने सांसों में बदबू नहीं खुशबू महसूस होने लगी।
0: क्या हुआ बड़े बाबू, फिर क्या हुआ, ठीक से बैठिए ना।
1: हाँ हाँ ठीक है।
0: नहीं, पैर कुर्सी के नीचे।
1: सॉरी सर, बाबू हूं ना, इसी से आदत है।
0: कैरी ऑन।
1: फिर मुझे ऐसा लगा मैं आकाश में किसी
0: ओहो बताइए ना,
1: किसी परी के साथ उड़ रहा हूं, सारी दुनिया से बेखबर उससे बातें कर रहा हूं।
0: क्या बातें कर रहे हो।
1: मैं उसे कल की सब्जी के भाव बता रहा था, परमल 8 रुपए किलो, कद्दू 4 रुपए, लौकी।
0: ओहो आप भी किस मौके पर कहां की बात ले बैठे, कहां गया है आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड।
1: साहब अब की वो मुझे मिल गई तो मैं उससे कहूंगा प्रिय हम तुम इसी अवस्था में सदियों तक विचरण करते रहे।
0: बड़े बाबू मेरा हाथ छोड़िए।
1: ओह सॉरी सर।
0: और वो गाना।
1: साहब वही गाना मैं गुनगुनाता हुआ चला आ रहा था, लड़ी नजरिया लड़ी, लड़ी नजरिया लड़ी।
2: अरे उठो भी, क्या सोते में लड़ी नजरिया लड़ी गाते जा रहे हो, 4 लौंडों के बाप हो गए, नजरियों की लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हुई। अरे मैं कहती हूँ दुनिया में लड़ाइयों के खत्म होने के ऐलान हो रहे हैं, एक आप हैं, नजरियों की लड़ाई लड़े जा रहे हैं।
1: बात यह है मुन्ने की अम्मा, मैं सोते में एक बहुत प्यारा चटपटा सपना देख रहा था।
2: सोते में सपने तो देखोगे ही, जागते में तो मैं भूतनी बनी खड़ी रहती हूँ तुम्हारे आगे, जरा मैं भी तो सुनू किससे नजरिया लड़ा रहे थे?
1: तुम तो जानती ही हो मैं भला किससे नजरिया लड़ा सकता हूँ।
2: हाँ हाँ मैं जानती हूँ तुम्हारे चोंचले।
1: मेरा विश्वास करो भाग्यवान, मैंने किसी से नजरें नहीं लड़ाई।
2: तो फिर लड़ी नजरिया लड़ी?
1: वो तो सपने में जवानी की पुरानी यादें तरोताजा करने के लिए, कसम से।

लड़ी नजरिया लड़ी। अभी आप सुन रहे थे राजेश भदौरिया की लिखी ये झलकी। निर्देशक थे गुरुमीत रामल मीत। ये थी आकाशवाणी शिमला की प्रस्तुति।

0: बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में

0: जानी-मानी अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा,
2: रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी
1: हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
0: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

चित्रलोक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी दोस्त प्रीति शर्मा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पहला गाना हमने लिया है फिल्म हेट स्टोरी 4 से। इसे गाया है जुबिन नौटियाल और नीति मोहन ने। गीत मनोज मुंतशिर और संजय गुप्ता का है, संगीत आरको का।

अगला गाना फिल्म एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी से है। इसे गाया है पलक मुछाल ने, गीत मनोज मुंतशिर ने लिखा, संगीत अमाल मलिक का।

अंतराल के बाद कार्यक्रम चित्रलोक में आपका फिर से स्वागत है। आइए अब सुनते हैं बागी 2 फिल्म का गाना। अंकित तिवारी और श्रुति पाठक की आवाजों में, गीत कुमार का है, संगीत गौरव रोशन का।

अब सुनते हैं राघव चैतन्य और प्रीतम की आवाज में एनिमल फिल्म का गाना। गीत मनोज मुंतशिर ने लिखा है, संगीत जैम 8 का है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत का लक्ष्य हिंद महासागर को अवसरों का सागर बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी भारत की सबसे बड़ी ताकत है। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को खारिज किया। यूरोप में भीषण गर्मी का कहर जारी, फ्रांस में 1000 से अधिक लोगों की मौत। और महिला T20 विश्व कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत को आयरलैंड से 155 रन का लक्ष्य मिला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो और जहां साझेदारी आकार पर नहीं बल्कि परस्पर सम्मान और विश्वास पर आधारित हो। श्री मोदी विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत का दृष्टिकोण हिंद महासागर को संभावनाओं का सागर बनाना है।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
0: बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में अपने अनुभव को सेशल्स के साथ साझा करेगा। उन्होंने कहा कि दोनों देश अपने उद्योगों के लिए नई संभावनाओं की तलाश जारी रखेंगे। दोनों पक्षों ने कृषि, वित्त, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
1: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल्स के साथ साझा करेंगे और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल्स में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
0: सेशल्स के राष्ट्रपति हर्मिनी ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण बनी हुई है। दोनों देशों ने समुद्री डकैती, मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध

0: मछली पकड़ने और सीमा पार अपराध का मुकाबला करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मनी ने प्रधानमंत्री मोदी को ये प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया। ये पहली बार है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री को ये सम्मान प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री ने ये सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से संघर्षरत देशों को समर्पित किया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि दक्षिण विश्व विशेष रूप से द्वीपीय राष्ट्र जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित हैं। उन्होंने निष्पक्षता, उत्तरदायित्व और समानता के साथ जलवायु कार्रवाई का आह्वान किया। श्री मोदी ने कहा कि यही जलवायु न्याय का मूल तत्व है। श्री मोदी ने डिजिटल नवाचार के क्षेत्रों में भारत सेशल्स सहयोग को मजबूत करने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत छोटे द्वीपीय विकासशील देशों की चिंताओं पर सेशल्स के साथ काम करना जारी रखेगा।
1: सेशल एंड इंडिया बोथ सीक अ वर्ल्ड वेयर डेवलपमेंट इज मोर इंक्लूसिव। वी बोथ सीक अ वर्ल्ड वेयर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस रिफ्लेक्ट कंटेम्पररी रियलिटीज। वी बिलीव दैट अवर शेयर्ड फ्यूचर मस्ट बी शेप कलेक्टिवली, इंक्लूसिवली एंड फेयरली।
0: प्रधानमंत्री मोदी पूर्वी अफ्रीकी द्वीप राष्ट्र सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा पर कल वहां की राजधानी विक्टोरिया पहुंचे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। श्री बिरला ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मान प्रधानमंत्री के जलवायु कार्रवाई, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के दृष्टिकोण को परिलक्षित करता है। गृहमंत्री ने कहा कि ये सम्मान दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव को दिखाता है। श्री जयशंकर ने कहा कि ये सम्मान जलवायु परिवर्तन और सतत विकास को बढ़ाने में श्री मोदी की नेतृत्वकारी भूमिका को दर्शाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मनी के बीच हुई वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई है। श्री मिश्री ने विक्टोरिया में संवाददाताओं को आज बताया कि दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, क्षमता निर्माण, डिजिटल परिवर्तन, सतत विकास, सामाजिक अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की शक्ति भारत की सबसे बड़ी ताकत है। श्री मोदी ने आज आकाशवाणी से कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि ये भावना उस समय एक बार फिर दिखाई दी जब उन्होंने पश्चिम एशिया में युद्ध जैसी स्थिति को देखते हुए नागरिकों से कुछ निश्चित उपाय अपनाने को कहा।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में मानवीय रचनात्मकता का संरक्षण करने के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे हासिल करने का समाधान खोज लिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना के संबंध में पाकिस्तान के लगाए आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया है। मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपने क्षेत्र में मौजूद आतंकी ढांचे के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद को अपनी राज्य

0: नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति से छुटकारा पाना चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार योजनाएं बनाने के साथ साथ ये सुनिश्चित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है कि उनका लाभ प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचे। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने में गांव की केंद्रीय भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि ग्रामीण श्रमिकों की आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के हिस्से सहित 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है।
1: इस साल बजट प्रावधान है 1,51,282 करोड़ रुपया केंद्र और राज्य का मिला के, ये 1,50,000 करोड़ से ज्यादा रुपया मजदूरों को मजदूरी देने में तो काम आएगा ही। इससे आप गांव की हालत पूरी तरह से बदल सकते हैं। 5 साल में 7,50,000 करोड़ लगभग लगे, 2,86,000 पंचायत है, एक पंचायत किस्से में कितना पैसा आएगा आप कल्पना कीजिए।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत देश को स्वस्थ और नशा मुक्त बनाने का आह्वान किया है। वे आज बेंगलुरु में राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह और नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार 3 दिन की जम्मू कश्मीर यात्रा पर आज श्रीनगर पहुंचे। अपनी यात्रा के दौरान वे कश्मीर घाटी में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त चुनाव प्रक्रिया की जमीनी स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा भी करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का कहर जारी है। फ्रांस, जर्मनी और चेक गणराज्य सहित कई देशों ने सप्ताहांत में तापमान के नए रिकॉर्ड दर्ज किए हैं। फ्रांस के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि बुधवार से अब तक भीषण गर्मी के कारण लगभग 1,000 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 85% बुजुर्ग थे।
2: फ्रांस के स्वास्थ्य विभाग ने आज एक बयान में कहा कि सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में इले डी फ्रांस, नोवेल एक्विटाइन, ब्रिटनी, सेंटर वॉल डे लोइरे, नॉर्मैंडी और पेस डे ला लोइरे शामिल हैं। फ्रांस के कुछ हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। पेरिस में भीषण गर्मी के कारण एफिल टावर और लूवर संग्रहालय को भी शाम को जल्द ही बंद कर दिया जा रहा है। जर्मनी और चेक गणराज्य में भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। भीषण गर्मी के कारण कुछ हिस्सों के जंगल में आग लगने से आपातकालीन सेवाओं पर दबाव बढ़ा है। हंगरी में डेन्यूब नदी में बढ़ते तापमान से एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रभावित हुआ है, जिससे कुछ रिएक्टरों के संचालन पर असर पड़ा। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: फ्रांस के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आज एक विमान दुर्घटना में 11 लोगों की मौत हो गई। आपात सेवाएं घटनास्थल पर पहुंच गई हैं और दुर्घटना के कारणों की जांच जारी है। सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको से संबंधित एक हेलीकॉप्टर आज हॉर्मूज जल डमरू मध्य के पश्चिम में स्थित रास तनूरा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में 14 लोगों की मौत हो गई। असम के धेमाजी जिले में लगातार कई दिनों से हो रही तेज बारिश और अरुणाचल प्रदेश में हुई मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और अधिक गंभीर हो गई है। सिमेन नदी में आए उफान के कारण लगभग 60 परिवार बेघर हो गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: असम के धेमाजी जिले में सीमेन नदी की उफनती धारा ने एक महत्वपूर्ण रेलवे पुल के हिस्से को बहा दिया है, जिसे क्षेत्र की रेलवे संपर्क व्यवस्था पूरी तरह बाधित हो गई है और रेल सेवाएं ठप हो गई है। राज्य आपदा मोचन बल SDRF की टीमें दिमो पंचायत के अंतर्गत उज्जवलपुर गांव में राहत और बचाव अभियान चला रही है, जहां फंसे 60 परिवारों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। अब तक किसी के हताहत होने या जानहानि की सूचना नहीं है, हालांकि बाढ़ से संपत्ति और पशुधन को भारी नुकसान

0: जा है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने एक ओवर पर 9 रन बना लिए हैं। उधर बेलफास्ट में आयरलैंड के साथ दूसरे T20 क्रिकेट मैच में जीत के लिए 155 रन के जवाब में भारत ने बारिश के कारण खेल रोके जाने तक 8 ओवर में 4 विकेट पर 54 रन बना लिए थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत का लक्ष्य हिंद महासागर को अवसरों का सागर बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी भारत की सबसे बड़ी ताकत है। यूरोप में भीषण गर्मी का कहर जारी, फ्रांस में 1000 से अधिक लोगों की मौत। और महिला T20 विश्व कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं किशोर कुमार, मोहम्मद रफी और आशा भोसले के गाए कस्मे वादे फिल्म के इस गाने से। गीत गुलशन बावरा ने लिखा है, संगीत आर डी बर्मन का है।

आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाजों में प्यासा सावन फिल्म का गाना, गीत संतोष आनंद का है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: जिनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आइए अब सुनते हैं काश फिल्म का गाना। किशोर कुमार और अनुपमा देशपांडे की आवाजों में, गीत फारूक कैसर का है, संगीत राजेश रोशन का।

0: कितनी सुनाए कह देना
1: अपनी वफाएं कितनी जताएं।

अब सुनते हैं कुदरत का कानून फिल्म का गाना, लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में। गीत लिखा है समीर ने, संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

इस गाने के साथ ही आपके लिए कार्यक्रम समाप्त करने की प्रीति शर्मा को दीजिए अनुमति और आप सुनते रहिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

सुनने वालों को शेफाली कपूर का नमस्कार। साथियों, फिल्मों में निर्देशक ही वो सूत्रधार होता है जो कैमरे के पीछे रहकर पूरी टीम का मार्गदर्शन करता है, कलाकारों के अभिनय को आकार देता है। निर्देशक की सोच, दृष्टि और सृजनात्मकता ही किसी भी फिल्म की आत्मा होती है। आज हम ऐसे ही प्रतिभाशाली निर्माता निर्देशक के जीवन कार्य और योगदान पर बातें करेंगे, जिन्होंने अपने अनोखे दृष्टिकोण और सृजनात्मकता से सिनेमा की दुनिया में अपना एक विशेष स्थान बनाया है। साथियों, हिंदी सिनेमा में जहां एक ओर बड़े बजट की भव्य फिल्में दर्शकों को आकर्षित करती हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ निर्देशक अपनी सादगी भरी कहानियों और मानवीय भावनाओं को बड़ी खूबसूरती से प्रस्तुत करके दर्शकों का दिल जीत लेते हैं।

0: जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज के फनकार, वेरी टैलेंटेड निर्माता निर्देशक आनंद एल राय की, जिन्होंने साधारण मिडिल क्लास लोगों की कहानियों को रुपहले पर्दे पर नया नजरिया दिया है।
1: आया

काला गर्दा उड़ा दिया। अरे गर्दा उड़ा दिए। बेटा गर्दा उड़ा दिए।

जून साल 1971 दिल्ली में जन्मे आनंद एल राय, इनका परिवार भारत पाक विभाजन के दौरान सीमा पर खिंची दीवार के बाद सिंध छोड़कर देहरादून चला आया और कुछ समय बाद आनंद राय के पिता ने दिल्ली में अपना आशियाना बना लिया। आनंद राय का पालन पोषण दिल्ली में हुआ। वहां से उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा के बाद महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर से कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और फिर वे नौकरी करने लगे। साथियों, यूं तो आनंद की लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ कमी सी महसूस होती रही। दरअसल उनका झुकाव तो रचनात्मक क्षेत्र की ओर था।

आनंद अपनी नौकरी छोड़कर मुंबई आ गए। श्रोताओं, बॉलीवुड में ऐसे कई स्टार हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग का फील्ड छोड़कर फिल्मी दुनिया में करियर बनाया है। आनंद एल राय भी उनमें से एक हैं। मुंबई आकर आनंद राय ने अपने बड़े भाई रवि राय, जो कि उस समय टीवी धारावाहिकों का निर्देशन कर रहे थे, उन्हें असिस्ट करना शुरू कर दिया। पर्याप्त अनुभव प्राप्त करने के बाद आनंद ने अपने निर्देशन की शुरुआत की। ये यूं कहिए कि आनंद ने बतौर निर्देशक अपना डेब्यू किया साल 2007 में साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म स्ट्रेंजर्स के साथ। यहां आपको बताते चलें कि फिल्म स्ट्रेंजर्स अल्फ्रेड हिचकॉक की स्ट्रेंजर्स ऑन अ ट्रेन पर बेस्ड थी, लेकिन आनंद राय की यह डेब्यू फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह लुढ़क गई, जिसमें जिमी शेरगिल, के मेनन, नंदना सेन, सोनाली कुलकर्णी जैसे कलाकार

साल 2008 में जैकी श्रॉफ और परमीत सेठी अभिनीत आनंद राय की अगली फिल्म आई थोड़ी लाइफ थोड़ा मैजिक। ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर अपना जादू नहीं चला पाई और दर्शकों ने भी इस फिल्म को नकार दिया।

बैक टू बैक फ्लॉप फिल्म देने वाले आनंद एल राय, इनके साथ अब कोई निर्माता काम करने को तैयार नहीं था। लगातार फेलियर होने पर आनंद राय ने हार तो नहीं मानी, लेकिन हाँ, 3 साल का ब्रेक जरूर ले लिया। इन 3 सालों के ब्रेक के बाद आनंद राय के करियर का टर्निंग पॉइंट आया साल 2011 में, जब उन्होंने तनु वेड्स मनु फिल्म के निर्देशन के साथ अपनी ग्रैंड वापसी की और हर किसी को अपने डायरेक्शन का दीवाना बना दिया।

आर माधवन और कंगना रनौत अभिनीत ये फिल्म आनंद राय की पहली कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्म थी, जिसने दुनिया भर में जबरदस्त कमाई की। दर्शकों ने इस फिल्म को बहुत पसंद किया।

आनंद राय बॉलीवुड के उन गिने चुने डायरेक्टर्स में से हैं जो रीमेक के दौर में नई और असल कहानियों पर काम करना ज्यादा पसंद करते हैं। वो खुद भी बड़े सिंपल अंदाज में जीवन जीते हैं। साथियों, उनका कहना है कि अगर वो साधारण जिंदगी नहीं जिएंगे तो अपने अंदाज में फिल्में नहीं बना पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं साल 2013 की। इस साल आनंद राय ने अपने निर्देशन में दूसरी कमर्शियली हिट फिल्म दी रांझणा, जिसने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। इस फिल्म के साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर के ऑपोजिट साउथ की फिल्मों के सुपरस्टार धनुष ने बॉलीवुड में अपनी एंट्री की, जिन्हें दर्शकों ने तहे दिल से स्वीकार किया और इस फिल्म में अभिनेता धनुष के अभिनय की भूरी भूरी प्रशंसा हुई।

आपको बता दें कि फिल्म रांझणा दुनिया भर में करोड़ों की कमाई करने वाली साल की 10वीं सबसे ज्यादा कमाऊ हिंदी फिल्म थी। इस फिल्म के लेखन और निर्देशन की बहुत सराहना हुई और फिल्म रांझणा ने फिल्म फेयर अवार्ड के लिए आनंद एल राय को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए अपना पहला नामांकन दिलाया।

संगीत सुनने के शौकीन बॉलीवुड प्रोड्यूसर डायरेक्टर आनंद एल राय हिंदी सिनेमा में अपनी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म्स के लिए जाने जाते हैं। साल 2015 में आपने रोमांटिक कॉमेडी फिल्म तनु वेड्स मनु रिटर्न्स का निर्देशन किया, जो फिल्म तनु वेड्स मनु का सीक्वल था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट रही। दर्शकों से इस फिल्म को भरपूर प्यार और सराहना मिली। ये फिल्म साल की 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म थी, जिसने दुनिया भर में करोड़ों में जबरदस्त कमाई की। खास बात ये रही साथियों कि अपनी रिलीज के समय भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली ये महिला प्रधान फिल्म थी। आनंद राय की इस तीसरी जबरदस्त सफल फिल्म ने उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड के लिए बेस्ट डायरेक्टर की कैटेगरी में अपना दूसरा नामांकन दिलाया।

डेल राय को सफलता काफी उतार चढ़ाव के बाद मिली। भारतीय सिनेमा में कई निर्देशक हैं, लेकिन चर्चा में कुछ ही रहते हैं, जिनमें आनंद एल राय का नाम भी शामिल है। तनु वेट्स मनु, रांझणा, तनु वेट्स मनु रिटर्न्स जैसी हिट फिल्म्स के निर्देशक आनंद एल राय बॉलीवुड के मशहूर निर्देशकों में से एक हैं।

आपने साल 2018 में शाहरुख खान, अनुष्का शर्मा और कैटरीना कैफ जैसे ए लिस्ट स्टार कास्ट के साथ फिल्म बनाई जीरो। और साथियों, आनंद राय की पिछली सफल फिल्मों के कारण रिलीज से पहले हाई प्रमोशन के बावजूद आनंद राय की ये फिल्म कुछ खास नहीं चल सकी।

श्रोताओ, आनंद राय न केवल निर्देशक हैं, बल्कि वो एक सफल निर्माता भी हैं। उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस कलर येलो प्रोडक्शंस के बैनर तले नील बटे सन्नाटा, हैप्पी भाग जाएगी, मन मर्जियां, तुम बाट, अतरंगी रे, रक्षाबंधन, शुभ मंगल सावधान जैसी कई फिल्मों का निर्माण किया है। फिल्म अतरंगी रे की बात की जाए तो ये फिल्म साल 2021 में आई, जो एक रोमांटिक फैंटेसी कॉमेडी थी। आनंद राय निर्देशित इस फिल्म में धनुष, सारा अली खान और अक्षय कुमार मुख्य भूमिकाओं में थे। इस फिल्म को कोविड के दौरान लॉकडाउन के कारण सिनेमाघरों में रिलीज किए बिना डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज किया गया, जिसे दर्शकों की, आलोचकों की मिलीजुली प्रतिक्रिया और समीक्षा मिली।

साल 2022 में अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर को लेकर आनंद एल राय ने फैमिली कॉमेडी फिल्म रक्षाबंधन निर्देशित की।

और अब साल 2025 में आने वाली फिल्म तेरे इश्क में, जो सीक्वल है फिल्म रांझणा का और जिसके निर्माण और निर्देशन का दारोमदार है आनंद एल राय पर, देखना ये होगा कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितना धमाल मचाती है। तो हमें इंतजार है आनंद एल राय की आने वाली फिल्मों का। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था हिंदी सिनेमा के जाने माने निर्माता निर्देशक आनंद एल राय पर। शोध, आलेख और स्वर शेफाली कपूर। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामले। आज के फनकार।

छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। पंचम के गानों का अपना एक संसार है, कुछ चुलबुले गाने, कुछ उदास जो आंसुओं की नमी से भीगे हैं, कुछ ऐसे गाने जिनमें जोश छलक छलक पड़ता है, कुछ ऐसे गाने जिनके कंधों पर सर रखकर आप अपने डूबे हुए दिल को सहारा दे सकते हैं। पंचम गानों के जादूगर थे। आज के छाया गीत में पंचम के कुछ ऐसे गाने जिन्हें सुनकर आप पंचम को खूब मिस करेंगे, बेकरार होकर याद करेंगे और नमन करेंगे, धन्यवाद करेंगे ईश्वर का जिसने हमें दिया ऐसा विरला संगीतकार, जिसके हैं ऐसे महकते नगमे।

तो बीतते जाते हैं पल, कैलेंडर के पन्ने बदलते चले जाते हैं। जाने क्यों कुछ पल कभी बीतते नहीं, वो मन के आकाश पर ठहर जाते हैं, बर्फ बन जाते हैं कुछ लम्हे। वो न कभी अतीत बनते हैं, न कभी यादों में तब्दील होते हैं। वो लम्हे बस मन के कैनवस पर धड़कते चले जाते हैं।

आंखों में सपने भी होते हैं और आंसू भी। दुनिया भर के दुख, धोखे, तकलीफें, अफसोस जमा होते रहते हैं मन के किसी कोने में। समझ में नहीं आता कि कब कैसे ये सारा दुख घुलेगा। फिर किसी दिन बहता है जीवन का सारा दुख आंखों से। आंखों में सपने भी होते हैं और जीवन का ये खारापन आंखों में ही छिपा होता है।

हमेशा यह गीत जारी रहेगा इस अंतराल के बाद, और अंतराल के बाद जब हम आएंगे आपके लिए लाएंगे ये नगमा। हम अभी हाजिर हुए

इंतजार का दायरा बढ़ता चला जाता है, इंतजार की परछाई बड़ी होती चली जाती है। कभी कभी ये इंतजार खत्म ही नहीं होता। दिन बोझिल होते चले जाते हैं, शामें उदास हो जाती हैं और रातें एकदम सुनसान। जिसका है इंतजार, जब वो मिल जाए तो खिल उठता है दिल, चमक जाते हैं लम्हे और महक उठते हैं।

गानों का अपना नशा होता है। जरूरी नहीं है कि ये गाने हमें बार बार सुनाई ही पड़ें। कई गाने सुने बरसों हो जाते हैं, फिर अचानक किसी गाने की कोई लाइन कहीं सुनाई पड़ जाती है और अटक जाता है मन। गानों के साथ जाने कैसा रिश्ता होता है हमारा, जैसे कोई भूला हुआ ठिकाना, जैसे भूली बिसरी कोई खुशबू, जैसे कोई भूली बिसरी याद।

जब निकले अपने घर से तो एक अलग ही तरंग होती है मन की। घर से निकलते ही मन सारी उलझनों से बाहर निकल आता है। फिर हम गुनगुनाना शुरू करते हैं। सफर में हों तो अलग ही गाने जुबां पर आते हैं।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार

शिकार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले आईसीसी वीमेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल। आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। रात्रि के 10:48 हुए हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब यहीं समाप्त होती है। कल प्रातः 8:51 पर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। शुभ रात्रि। जय हिंद।